0: हमारे सौभाग्य उदय हुए जो आप कृपा करके दर्शन दिए। सौभाग्य जब दीन दयालु प्रभु द्रवित होते हैं तो अपने लाडलों का संग प्रदान करते हैं। प्रभु की सबसे बड़ी विशिष्ट कृपा यही होती है, भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन संभाषण, यह हमारे ऊपर विशिष्ट कृपा है। जैसे हम जैसे अधम कहीं जा नहीं सकते, रोग ग्रसित शरीर है, तो ये गुरुजन ये महापुरुष जन, जैसे माँ अपने बच्चे के पास दौड़ के आती है, ऐसे आप सब गुरुजन आकर के दुलार करते हैं, कृपा करते हैं। ये प्रियाजू की कृपा से है, यही हमारे आराध्य देव की हम पर यही कृपा है कि आप सब जन कृपा करके द्रवित होकर दर्शन। भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है, जैसे कहा जाता है भगवत साक्षात्कार अत्यंत दुर्लभ है, भगवत प्रेमी महात्मा का साक्षात्कार दुर्लभ, महत्संगस्तु सुदुर्लभ हो। अगर सेवन करते बन जाए तो अमोघस्त है। भगवान के समीप रहते हुए भी उद्धव जी को श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप का परिचय नहीं मिला। ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, अनंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभु का नित्य निरंतर उनको सानिध्य है, पर इनका एक प्रेम स्वरूप भी है ये परिचय नहीं हो उद्धव को, संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी। इसलिए भगवान ने ब्रज गोपियों की चरण धूल में भेजा, और जब ऐसे महाप्रेमी जनों का दर्शन संभाषण चरण रज का स्पर्श, फिर तो निहाल हो गए। फिर ये नहीं कहा कि मुझे मथुरा में श्री कृष्ण के पास रहना है, मुझे यही ब्रज में घास बना दो, लता बना दो, औषधि बना दो, द्रुम बन, क्योंकि प्रेमियों का सानिध्य। इससे पता चला श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी श्री कृष्ण से वो प्रेम नहीं होता जो उनके प्रेमियों के संग से उनसे प्रेम होता है। उद्धव जी से ये परिचय मिला कि भगवत प्रेमियों के संग के बिना हमारे प्रभु के प्रेम स्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये तो अत्यंत कृपा श्री प्रियालाल जी की होती है, जब नाम जापक श्री चरणारविंद का अनुरागी हृदय ऐसा कोई दर्शन करने को मिले, ऐसे कोई दर्शन देने पधारे, ये तो अत्यंत कृपा होती है, अत्यंत कृपा।
1: उद्धव फंगसे जी महाराष्ट्र से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर सृष्टि में ईश्वर ही सभी रूपों में खेल रहे हैं तो फिर संसार और परमार्थ में भिन्नता क्या है?
0: तो भिन्नता रही नहीं जाती, आप अंतिम श्रेणी पर पहुंचो तो भिन्नता कहाँ है? भिन्नता तो प्रारंभ और बीच में है, अंत में तो भिन्नता है ही नहीं। अभी तो बच्चे हो ना, इसलिए तुम केवल बातें सुन रहे हो, विचलित थोड़ी हो। भिन्नता जो दिखाई दे रही वो हमारी दृष्टि दोष है, त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव को ही हम देख रहे हैं, गुणातीत दृष्टि तो हुई नहीं ना। तो प्रभु है गुणातीत, और वो गुणातीत सब में, सब रूपों में, सब खेलों में, स्वयं में, अपने आप से अपने आप में खेल रहे। अब हमारी गुणमय दृष्टि है तो कहीं सात्विक वृत्ति का दर्शन करते हैं, कहीं राजसिक का, कहीं तामसिक का, तो बड़ी भिन्नता दिखाई दे रही। ये भिन्नता तीन गुणों के दर्शन के कारण है, और गुणातीत प्रभु तो सब जगह विराजमान है, उनके देखने के लिए दृष्टि गुणातीत दृष्टि चाहिए। गुणातीत है नाम, गुणातीत है रूप, गुणातीत है लीला, गुणातीत है धाम। आप नाम जप करो, धाम का आश्रय लो, लीलाओं का गायन श्रवण करो, आपकी दृष्टि बदल जाएगी तो आप भी देख पाओगे। अभी दृष्टि भिन्न का दर्शन कर रही है, क्यों? अभी आप भिन्न में हो, आप अपने को प्रभु का मानो, आप प्रभु का मान रहे हो, देह भाव से हो, विषयों के गुलाम हो, संसार के शरीरों के संबंधी सने ही हो, तो प्रभु से भिन्न भाव लेकर विचरोगे तो भिन्न ही दिखाई देगा, और प्रभु से अभिन्न भाव ले हो, तो अभिन्न दर्शन होने लगेगा। प्रभु और प्रभु के जनों में अभिन्नता है, ये तब समझ में आएगी जब आप अभिन्न हो जाओगे। अच्छा, सृष्टि में तो कुम्हार और मिट्टी और चाक, इसका भेद है, यहां तो वही कुमार बला हुआ, वही चाक बला हुआ, वही बनने वाला है, वही बनाने वाला है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। अगर ये रहस्य जान गए तो अभी तो आनंदित हो जाओगे। इस रहस्य को जानने वाला सम आत्मा से दुर्लभा, बहु नाम जन्म नामते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति, सब आत्मा से दुर्लभ। छोटी मोटी स्थिति थोड़ी है, हर उपनिषद ग्रंथ सब इसी बात का संबोधन कर रहे हैं। ईशावास्मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, एक कण भी ईश्वर से बिलक कोई जगत नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, सर्वम खलमिदम ब्रह्म सी राम में सब जग जानी, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। कितना हर सूत्र हर शास्त्र प्रभु, और हमको भिन्न दिखाई दे रहा है, तो हम भिन्न चश्मा लगाए इसलिए दिखाई दे रहा है। भिन्न चश्मा हटे। देखो नरहरदास स्वामी जी ने एक पद में कहा,

परे, जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, ब्यूहल विकल सम

श्याम खड़े। अगर हमारी दृष्टि भिन्न है तो हमें भिन्न दिखाई दे। जड़ चेतन जग जीव जत, मान के नहीं कह रहे हैं, जान के कह रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सी राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भिन्नता हमारी गुणमयी बुद्धि की है, गुणमयी दृष्टि की है, यही तो संत और गुरुजनों के प्रताप से हट जाती है। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन, वो दृष्टि कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की कि कणकण में झाकी भगवान की, बस हो गया। ये प्रश्न का समाधान हुआ कि सब मेरे प्रभु, फिर वो प्रेम राज्य में प्रवेश पाता है। यहां से शांत रस है, यहां तक शांत रस है, मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है, अब समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो गया। अब दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, गोपी भाव से, सहचर्य जैसे चाहो आराध्य देव के साथ खेलो, दुलार करो, उसके सिवा कुछ है नहीं। तो अभी खूब नाम जप करो, तब प्रेम का अंकुरण उत्पन्न हो, तब तो समझ में आए। अभी तो काम ही, क्रोध ही, लोभ मोह मद मत्सर, ये अपना डंका बजा रहे हैं अंतःकरण में, तो कैसे हम जाने कि हमारे हृदय में राम राज्य भी है। अभी तो काम का राज्य है, जब कामनाओं का शमन हो भगवत कृपा से और नाम विराजमान हो, तब अनुभव होगा कि बाहर और भीतर वही, दूसरा कोई भेद नहीं। तो महापुरुषों ने साधन बताए, अगर ये साधन हो जाए तो अभी तुम्हें साक्षात्कार हो जाए कि प्रभु हैं। शांति रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। इतने लक्षण अपने हृदय में लाओ। शांति, कोई गाली दे हम पलट के गाली नहीं दिया उसे कहते शांति, लेकिन शांति, कोई गाली दे और हम उसका अपने आराध्य देव से मंगल मनावे, कोई हमें मारे और हम मंगल मनाए कि प्रभु इसको कभी कोई दंड न मिले, ये स्वस्थ रहे, ये सुखी रहे, आपका ये कृपा पात्र बने, इसे कहते शांति। ये शांति से भी बढ़कर है। अव्यर्थ कालत्वम, एक भी सेकंड भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का विस्मरण नहीं करता, वही भागवत है, वही महाभागवत है। वो हम घंटों विस्मरण करते, कैसे जान पाएंगे इस रहस्य को। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी समय हमारा प्रभु से व्यर्थ न जाए, प्रभु से बिलग न जाए। मान शून्यता, तनिक भी मान की आकांक्षा हृदय में ना रह जाए। अमानिना मान देन सब ही मान प्रद आप अमानी, मान न रह जाए। विरक्तिर, समस्त भोगों से जो सुख बुद्धि का भाव है ये हट जाए। पहला होता है त्याग, हमारी भोग इच्छा है पर हमारा सिद्धांत मना करता है इसलिए हम भोग नहीं भोगते, पर अंदर राग है भोग की इच्छा, इसे कहते त्याग। फिर कहते वैराग्य, भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा नहीं। तीसरा कहते उपरति, त्याग वैराग्य उपरति, भोग सामग्री है ऐसा बोध ही नहीं रह गया, ये स्थिति। अब हमारी लोगों की स्थिति तो भोगों में ही है, तो भिन्नता ही तो नजर आएगी, भोक्ता और कर्ता भाव ही तो भिन्नता का दर्शन करा रहा है। विरक्तिर, हृदय वैराग्य, जगते भयो फिरे वैरागी, तब प्रियालाल का अनुरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। आशा बंधा, ये दृढ़ आशा हो जाए कि मुझे भगवत साक्षात्कार होगा ही, अब कोई नहीं रोक सकता, मैं अविनाशी प्रभु का अविनाशी बच्चा हूं, आज शरीर भले छूट जाए पर मैं आप विश्राम वहीं पाऊंगा, बिन देखे रघुनाथ पद जी की जननी न जाए। हृदय व्याकुलता से युक्त, आशा बंधा, निश्चित प्रभु मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, क्योंकि वो आपके हैं और वो आपके हैं इसमें थोड़ा अंतराय नजर आता है, वो ही है। वो तो दर्पण रखा है तो दो नजर आ रहे हैं, बिंब और स्वरूप, प्रतिबिंब और स्वरूप, दर्पण हटा दो तो बचा कौन। बस अंतःकरण धर्म में ममत्व करने के कारण आप प्रभु को नहीं पहचान रहे। अंतःकरण धर्म भागवतिक स्वरूप में लीन हो, वही वो है, दूसरा कुछ है, आप है ही नहीं। जो प्रभु को खोजने गया और जब प्रभु मिले तो वो खुद खो गया, यही खास बात रही। जब कोई प्रभु को खोजने गया तो खोजने से जब प्रभु मिले तो खोजने वाला खो गया।
ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं, काल अपनी उस दिना रही, एक रहो न, केवल आराध्य देव ही आराध्य देव रह गए। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक मानो हम अपने प्रभु को विनय पूर्वक पुकार है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सियाराम सियाराम। मानो अपने प्रभु, नाम जप का मतलब क्या होता है, हम प्रभु को प्रति श्वास पुकार रहे हैं, आर्त भाव से पुकार रहे हैं, मालिक को अपने हम याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति में हृदय को, मानो जिसे कोई पीड़ा हो रही है ऐसे, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, नाम में रुचि हो जाए। और आसक्ति तद गुणाख्याने, जैसे दो कामी पुरुष हो तो वो बिना चर्चा किए कामनी की नहीं रह सकते, ऐसे बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति ते रमंति च, अपने आराध्य देव की चर्चा करने का दशा होना चाहिए, कोई छेड़ भर दे वो ऊब के भाग जाए, प्रबंध ना हो। हाँ, भिक्षा मांग ले, जैसे अपने लोग भिक्षा मांग ले जा रहे, और अगर छेड़ दिए तो दो बज गए तीन बज गए धूप में खड़े बस प्रियालाल की बात। आसक्ति तद गुणाख्याने, अपने प्रभु की चर्चा करने में आसक्ति होनी चाहिए, सुनने वाला बचे, कि अगर बाबा को छेड़ा तो मुश्किल है निकल पाना हो तो सुनो और सुनो, मतलब हमारे अंदर ऐसी प्रभु की चर्चा करने की आग होनी चाहिए कि कोई मिले, अगर कोई ना मिले तो अपने आराध्य देव को ही सुनाते, ठाकुर जी को बैठ के सुनाते, सुनो उन्हीं की चर्चा। आसक्ति तद गुणा खाने और प्रीति तद वसति स्थले, अपने आराध्य देव का जो प्राकट स्थल है, लीला स्थली, वो प्राणों से भी अधिक प्यारी होनी चाहिए। हमारे प्राण आराध्य देव की लीला स्थली में समर्पित हो जाए, जहां वो खेले हैं जाओ वही हमारे प्राण समाप्त हो, हमारी देह धूल दूसरी उसी में हो, जहां हमारे प्रीतम हमारे आराध्य देव क्रीड़ा किए हैं। आसक्ति वहां की आसक्ति, भले आप नहीं रह पा रहे हो पर आपका आंतरिक भाव, जैसी भट्ट धूल धूसर तन, ये आशा उद्धार, मेरा शरीर इसी वृंदावन की रज में धूल बन करके मिल जाए, क्योंकि मेरे आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली। ऐसे ही अपने कभी भी अपने आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली से बढ़कर कोई क्रीड़ा स्थली है ऐसा नहीं मानना चाहिए, अपने आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली अपने लिए सर्वोपरि है, ऐसा भाव रखना चाहिए। हमारे ही आराध्य देव की विविध लीला था, पर मेरे लिए मेरे आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली, ये हमारी आसक्ति का विषय है, ये ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं होता। उसमें आसक्ति ऐसी प्रीति हो कि लाख महिमा अन्यत्र की है, बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरंते बने, ताबन बेपे। हाँ ये बात है, अब देख लो तुम्हें क्या दिखाई देता है, ये आचरण धारण करो फिर हमें बताओ। तो हमारी दृष्टि कोई प्रमाण वाली दृष्टि थोड़ी है कि हमें जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है। जब आंख में माड़ा पर जाता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, मोतियाबिंद, तो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, धुंधला दिखाई दे, एक आदमी दो दिखाई देने लगते हैं, तो दृष्टि दोष है। अंजन लगाओ, गुरु चरण रज का अंजन लगाओ, दृष्टि दोष भंग होगा, आपको खुले नेत्रों में दिखाई देगा, प्रभु के सिवा कोई नहीं, सारा नाटक चल रहा है माया का, और नाटक के अंदर जो नाट्य करने वाला है वो साक्षात प्रभु ही है, सब प्रभु ही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, तो ये बात है भैया, भजन करो तो अच्छा, ये बातों से तो समझ में आता नहीं, तो भजन से ही मार्ग समझ, खूब नाम जप करो, अपने आप ज्ञान विज्ञान का उदय, बिना पढ़े लिखे, भगवान नाम में इतनी सामर्थ है कि बिना पढ़े लिखे तुम ऐसे देहाती भाषा में बोलोगे, और कोई संस्कृत का ज्ञानी हो तो उसे देख ले, वेदों में लिखा होगा, वही ऋचाओं के रूप में सूत्रों के रूप में मिलेगा। अनपढ़ मान लो, ऐसे भी महात्मा हुए हैं, व्याकरण पढ़े न ककारा पढ़े, राम राम राम राम राम, अब उनकी बाणी बोली वही ले लो, और आप शास्त्रों में जाकर के छाट लो।

0: ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वही है दूसरा नहीं है। फिर होली का अवसर, गुलाल लाओ, हमारे श्री जी का गुलाल संतों को लगाओ, थोड़ा खड़े होने का। अब क्या है, उठले बैठले हमारी एकदम किडनी फेल है, डायलिसिस होता है। ये हमारा दुर्भाग्य कि आप संतों का हम स्वागत नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए, पर क्या करें। जय हो मेरी लाडली, ये हमारी श्री जी का प्रसादी गुलाल है आज। की तीन चुनरिया लाओ और संत भगवान तीनों। जब पहली जांच हुई थी दिल्ली में किडनी की, तो आप साथ गए थे। हम तो भिक्षा से जीवित थे, भिक्षा अन्न से जीते थे। इन्होंने चित्तरंजन,
1: आपकी कृपा हुई,
0: चित्तरंजन जी को साथ लेकर आप ही तो दिल्ली गए थे। हमारी लाडली जी की प्रसादी चुनरी महाराज जी की, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज। डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं, तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्रपतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710 3992 या 9765065।

के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों, तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी किंतु केवट नाव नहीं लाता। कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोज ही मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामनावतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता। कहता है, नाथ आज मैं कह न पावा।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03 6200-42-34-03।
9: उत्तर बिहार का गौरव
10: सारण प्रमंडल की शान
9: गोपालगंज की धड़कन
10: और अपने भाषा की पहचान
9: रेडियो रिंजिम 90.4 FM
10: सुनो दिल से।

0: का फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोर्ट,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
6: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9924

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नदी में डूबने से बाप बेटे की मौत, परिजनों में मचा चित्कार। एक ट्रक से पकड़ी गई हजारों लीटर शराब, आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। शराब पीने से मना करने पर नाराज होकर एक व्यक्ति ने खाया सल्फास की गोली। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने अपनाया सख्त रुख। जैव विविधता को लेकर शुरू हुआ किसानों का प्रशिक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव के पास खनुआ नदी में स्नान करने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें एक 6 वर्षीय मासूम की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसके पिता लापता हो गए थे। बताया जा रहा है कि घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, परिवार में शोक की लहर दौड़ गई, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में चौमुखा टोला भाठे गाँव के रहने वाले फुलेना सहनी अपने 6 वर्षीय पुत्र के साथ स्नान करने गए थे। उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए दोनों नदी में उतरे, लेकिन काफी देर तक घर वापस नहीं लौटे। जब पति और पुत्र काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो फुलेना सहनी की पत्नी शैला देवी उनकी तलाश में नदी के किनारे पहुंची, जहां उन्हें दोनों के कपड़े और मोबाइल फोन पड़े हुए मिले, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अनहोनी की आशंका से उन्होंने शोर मचाया। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, खोजबीन शुरू की गई तो ग्रामीणों ने नदी से मासूम के शव को कई घंटों के मशक्कत के बाद बाहर निकाला और तत्काल विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिता की तलाश भी देर रात तक जारी रही। बताया जा रहा है कि काफी समय बाद फुलेना सहनी के शव को भी पुलिस ने बरामद किया है। दोनों की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया और इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पत्नी ने शराब पीने से मना किया तो एक व्यक्ति ने सल्फास की गोली खा ली। मामला बरौली बाजार का बताया जा रहा है, जहां दक्षिण टोला निवासी 38 वर्षीय रंजीत कुमार अपने घर पर शराब पी रहा था। इसी दौरान इसकी पत्नी ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए शराब पीने से मना किया। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच रंजीत कुमार ने गुस्से में आकर सल्फास की 2 गोलियां खा ली। जहरीले पदार्थ का असर होते उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गया। परिजनों ने आनन फानन में उसे सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार स्थिति गंभीर बनी हुई है और लगातार डॉक्टर इसकी निगरानी कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर उचका गांव थाना की पुलिस ने संत मोड़ के पास राज चिमनी ईट भट्टा के नजदीक छापेमारी करते हुए एक DCM ट्रक को पकड़ा। इस गाड़ी के अंदर से 7182 लीटर देशी शराब और 1107 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस ट्रक से कुल 8289 लीटर से भी अधिक देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि इस शराब तस्करी में प्रयुक्त DCM गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम दिनेश शाह, जो उत्तर प्रदेश तरया सुजान के शिवराजपुर चौपटिया गाँव के पटिया शाह का पुत्र है। पुलिस ने गाड़ी के साथ ही इसको गिरफ्तार कर इससे आवश्यक पूछताछ शुरू कर दिया है। साथ ही इतने बड़े शराब के इस कंसाइनमेंट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी पुलिस खंगाल रही है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद सहित तमाम संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि सभी प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायक सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य संबंधित पदाधिकारी भी इस बैठक में पहुंचे। बैठक में मई 2026 माह के स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रगति की विस्तृत समीक्षा हुई। इसमें जिला पदाधिकारी ने नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, NCD सहित स्वास्थ्य विभाग की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य है, दोषी पाए जाने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन अस्पताल

0: अस्पतालों की व्यवस्थाओं में कमियां पाई गईं, उन्हें कड़ा फटकार भी लगाया गया। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस पर 2024 में मामला दर्ज था और तभी से यह फरार चल रहा था। पकड़ा गया आरोपी हरिशंकर प्रसाद, पिता स्वर्गीय नगीना प्रसाद, यह बसडीला खास थाना नगर जिला गोपालगंज का निवासी है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिला कृषि कार्यालय स्थित प्रशिक्षण केंद्र में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों और प्रशिक्षणार्थियों ने जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन तथा पर्यावरण संतुलन के महत्व में आवश्यक जानकारी देते हुए उन्हें प्रशिक्षित करना बताया जा रहा है। इधर नगर परिषद के चंद्रवंश गिरी उर्फ टूना गिरी सभागार में बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें एलईडी लाइट की कमी को मुद्दा बनाया गया। सभी क्षेत्रों में एलईडी लाइट लगाने के लिए मांग की गई। इसमें सभापति ने आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के भीतर लाइट लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। शहर की गली मोहल्लों में लगभग 6400 से अधिक एलईडी लाइट लगाने का टेंडर हो चुका है, उसका वर्क ऑर्डर भी बन चुका है। संबंधित एजेंसी को लगाने का कार्य करना है। शहर को दूधिया रोशनी से रोशन करने की बात कही गई। किसी भी गली मोहल्ला में अंधेरा ना रह सके, इसका पूरा ख्याल रखने का आश्वासन दिया गया। बैठक में सभापति ने बताया कि 9 करोड़ रुपए के नाला एवं पथ निर्माण योजनाओं के लिए भी निविदा निकाली जा रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से नगर में जल जमाव की समस्या भी दूर हो जाएगी। इस दौरान बताया जा रहा है कि शहर में कच्ची सड़कों का भी पक्कीकरण किया जाएगा और सौंदर्यीकरण के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा, इसकी भी मंजूरी बैठक में दी गई है। माझागढ़ थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी बीरेश यादव, पिता राजकुमार यादव उर्फ अमित यादव, जो मधु सरिया थाना माझागढ़ जिला गोपालगंज का निवासी है। पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद विधिवत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भोरे थाना की पुलिस ने भी चोरी के एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी मोहम्मद साहबू को गिरफ्तार किया। यह माझागढ़ के सिकमी निवासी नसरुद्दीन शाह का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी तिवारी टोला पहाड़पुर ओवर ब्रिज के नीचे थाना कुचायकोट में छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को 45 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी अबू बकेर अंसारी है, जो रामपुर जीवधर थाना विशंभरपुर का निवासी बताया जा रहा है। इसकी मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बरौली थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी सूरज मांझी पिता पप्पू मांझी और दूसरा छोटन मांझी पिता बिंदा मांझी, ये दोनों फतेहपुर बरौली के निवासी हैं। इनके घर से ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा उत्पाद विभाग की पुलिस ने अमरजीत यादव को भी शराब के साथ पकड़ा है। यह विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सीसवा का रहने वाला है। इसकी भी मोटरसाइकिल से 27 लीटर लगभग शराब पकड़ी गई है। इसको भी आज उत्पाद पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नदी में डूबने से बाप बेटे की मौत, परिजनों में मचा चित्कार। एक ट्रक से पकड़ी गई हजारों लीटर शराब, आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। शराब पीने से मना करने पर नाराज होकर एक व्यक्ति ने खाया सल्फास की गोली। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने अपनाया सख्त रुख। जैव विविधता को लेकर शुरू हुआ किसानों का प्रशिक्षण। स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सीवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: एक रंग इश्क का।
8: पिछले पन्नों में आपने जाना कि किस तरह मीनल एक सीधी सी बात को इनकार करने गई थी और डेविड के सामने आते ही उसका इनकार इकरार में तब्दील हो गया। पेंटिंग का जो काम वो गाये बगाये किया करती थी उसमें पूरी शिद्दत से कामयाब होने को मचल उठी थी। क्या इस पेंटिंग कंपटीशन में कोई और तस्वीर भी उभरने वाली है? ये तो तभी मालूम होगा जब पढ़ेंगे अगला पन्ना इश्क का। हाय, आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का। पेंटिंग कंपटीशन का नया बखेड़ा जो खड़ा हुआ था उससे मीनल परेशान थी। तो अमिया का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान को पार कर चुका था। मीनल की बातों से वो इतनी ज्यादा जज्बे में आ गई थी कि आज वो कई पेंटिंग आर्टिस्ट को पीछे छोड़ सकती थी। आज अमिया के मन में उसके जैसा कलाकार दुनिया में था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मीनल इस उलझन में थी कि अगर पेंटिंग कॉम्पिटिशन में कुछ बनाना हुआ तो वो क्या बनाएगी। पूरा पेंटिंग डिपार्टमेंट होगा, आर्ट्स के अलग अलग सेक्शन वाले स्टूडेंट्स होंगे, कुछ इतिहास और अर्थशास्त्र के भी होंगे जिन्हें शायद कोई इंटरेस्ट नहीं होगा पेंटिंग्स में, पर देखने वाले तो कई सेक्शन से आएंगे। कुछ उसके हिंदी सेक्शन वाले भी होंगे। उस शिवानी से भी तो अच्छी पेंटिंग बनानी होगी। ये स्कूल का कंपटीशन तो है नहीं कि जहाँ आम, केला, अमरूद बनाया और टीचर ने कहा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बनाई हो। यहाँ तो कई दिग्गज होंगे। हफ्ता भर यही सब उधेड़बुन में रही कि क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कुछ अच्छा बनेगा या नहीं। बीच बीच में आंखों में रखी हुई मीनल और शिवानी की जलन भी एक दूसरे से टकरा जाती थी। पर अब शिवानी पहले की तरह मीनल से बदतमीजी से बात नहीं करती थी, थोड़ी शांत सी हो गई थी। पर क्या ये किसी आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा था? क्योंकि शिवानी इतनी जल्दी सुधर जाए, अपने ऊपर हुए अपमान को भूल जाए, ऐसी तो लड़की नहीं थी। रही बात मीनल की, तो वो बस वर्तमान में जीना पसंद करती थी। उसके लिए शिवानी अभी कुछ कर नहीं रही थी तो सब सही था। इस हफ्ते के दौरान मीनल जब डेविड के सामने आती तो एकदम शांत दिखने की कोशिश करती और उसके जाते ही कुछ अलग से ख्यालों में खोई सी रहती थी। डेविड ने भी कुछ कुछ बातें महसूस की थी कि मीनल आजकल कुछ खामोश सी है। इस तरह वक्त गुजरा और वो कंपटीशन की सुबह आ गई। सारे प्रतिभागी अपने अपने रंगों के साथ मैदान में पहुंच चुके थे। पूरे कैंपस के गार्डन साइड पे जहां तहां लोग अपने बोर्ड और पेंट के साथ थे। जहां मीना की दुविधा क्या बनाए इस बात की थी, वहीं अमिया इस बात से परेशान थी कि कहीं उसकी पेंटिंग की कोई कॉपी ना कर ले। अमिया ने बड़ी ही मेहनत के साथ बारीकी से अपने लिए कोना ढूंढ लिया था, पर आज उसका जज्बा किसी भी जंग को जीतने के लिए काफी था। पेंटिंग कंपटीशन को जज करने के लिए कई सुप्रसिद्ध पेंटर भी आए हुए थे। डेविड, जो खुद भी पेंटिंग की दुनिया का उभरता हुआ सितारा था, आज जजेस के साथ ही बैठा था। शिवानी ने पर्वत, नदियाँ वगैरह बनाने का सोचा, जो काफी अच्छे से उसे आता था। वहीं मीनल ने सोचा कि वो दुनिया की तस्वीर बनाएगी, उसमें अपने रंग भरने की कोशिश करेगी। उसने पहले पेपर को अपने पसंदीदा लाल रंग से कवर किया, रंग हल्का ही रखा ताकि रंग चुभने से ज्यादा निखारने का काम करे, और फिर ग्लोब बनाने लगी। उसने ब्रश की जगह अपनी उंगलियों को तरजीह दी। उंगलियों के सहारे ही हल्का और गाढ़ा रंग भरी जा रही थी। माहौल वहां का पूरा शांत था। सब अपनी अपनी चित्रकारी में लगे हुए थे। जजेस भी अपनी बातों के बताशे आपस में ही घोल रहे थे। रह रहकर डेविड की तारीफें चल रही थी कि उसने ये जो आर्ट को मॉडर्न रंग देने की कोशिश की है, ये बहुत ही सुंदर है। डेविड खुश था। उसने जजेस को अपने साथ उसके केबिन में चलने की गुजारिश की। उधर शिवानी ने अपनी पेंटिंग को कम्प्लीट किया और फिर अपनी सहेलियों के साथ बाकियों की कलाकारी देखने में मसरूफ हो गई। बड़ी ही अद्भुत थी सबकी चित्रकारी, पर शिवानी का निशाना कुछ और ही था। उसने देखा कि मीनल अपनी पेंटिंग को छोड़कर अमिया के पास खड़ी होकर उसकी पेंटिंग देख रही है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए मीनल की पेंटिंग के पास पहुँच के उसी के ब्रश से इधर उधर रंग छिड़क दिया और फिर कपट भरी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चली गई। और दूसरी तरफ मीनल अमिया से बात करने में मसरूफ थी। अमिया बड़ी खुश थी और उसने मीनल को बताया कि वो किसी पुराने बादशाह की तस्वीर बना रही है अंगूर खाते हुए। हालांकि उसकी पेंटिंग अभी अधूरी थी, पर उसकी अधूरी तस्वीर को देख के भी कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल था। मीनल ने अमिया के हौसले की तारीफ की और अपनी पेंटिंग के पास आ गई। यहाँ आते ही उसके होश फाख्ता हो गए थे।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
13: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
14: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
15: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
16: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
17: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
16: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
15: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
16: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
15: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
16: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
15: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
18: सुनिए सुनिए सुनिए,
19: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
18: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
19: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
18: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
8: ये क्या हुआ, किसने किया ये?
20: उसका मन अब रुआसा सा था, पर जो हार जाए वो मीनल नहीं थी। मीनल ने सोचा कि वो नई पेंटिंग बना लेगी, पर तभी उसकी नजर उन तमाम रंगों पर पड़ी जिसकी टेढ़ी टेढ़ी लकीरें कुछ अलग सा ही बना रही थी। उसने तमाम लकीरों को अपनी उंगलियों के सहारे एक अलग रंग दिया और कुछ ना बनते हुए भी रगों की एक खूबसूरत लकीर बन गई। तमाम जजेस अपनी नजर से सबकी तारीफ करने लगे। सभी की तस्वीरों को देखा। अमिया ने अपनी पेंटिंग बहुत ही उत्साहित होकर जजेस को दिखाई और जजेस से तारीफें सुनकर वो खुश से ज्यादा हैरान थी, क्योंकि अंगूर खाते हुए बादशाह की जो तस्वीर अमिया ने बनाई थी उस पर जज साहब ने कहा, बहुत खूब, ये जो आसमान से लटके हुए गुब्बारे आपने बनाए हैं ना, ये कुछ खूब ही है। बेशक आप पेंटर नहीं है पता चलता है, लेकिन आपका ये जो ख्याल है दुनिया के नजरियों को उल्टा करने का, ये काबिले तारीफ है। अमिया सदमे में थी और मन ही मन सोच रही थी कि मैंने तो अंगूर खाने वाले बादशाह बनाए थे। ये बात सुनते ही मीनल की तो हंसी छूट गई, पर उसने खुद पर काबू करते हुए अमिया को शाबाशी दी। फिर सबकी तस्वीरों पर दो दो बात करते हुए जजेस चले गए और उन्होंने विनर्स की घोषणा कर दी। मीनल को उसके रंगों के अद्भुत इस्तेमाल के लिए कॉन्सोलेशन प्राइज मिला और बाकी तीनों पुरस्कार पेंटिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के ही हाथ लगे। मीनल को आज के हुए हादसे ने एक अलग ही जोश दिया था। आज की बात ने उसे जिंदगी का एक गहरा सबक सिखा दिया था कि जब परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों तो भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। इन सब में डेविड का साथ उसके लिए खास रहा। इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन ने मीनल में एक नया जोश और जज्बा भर दिया था। मीनल बहुत खुश थी। हल्की सी शाम थी जब डेविड मीनल के पास आया। उसने मीनल को शाबाशी दी और उसे कैंटीन में ट्रीट देने की बात भी की। मीनल उसकी दोस्त जैसी थी, हालांकि दोनों की उम्र में फर्क अच्छा खासा था, पर फिर भी ये दोस्ती खास थी। मीनल ने भी इनकार नहीं किया और डेविड ने उसे कहा कि वो अमी और शिवानी को भी लेकर आए। शिवानी? मीनल ने मन ही मन सोचा, खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। फिर वो शिवानी के पास गई और जाकर बोली कि डेविड सर ने आपको भी बुलाया है कैंटीन में ट्रीट के लिए। शिवानी बड़े ही दिल से मीनल का हाथ पकड़कर बोली, मीनल मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने हमेशा तुमसे नफरत की जबकि तुमने कभी भी मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। मैंने आज भी तुम्हारी पेंटिंग पर बात करने की कोशिश की। ये सुनते ही मीनल थोड़ा चौंकी, पर खुद को संभालते हुए वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, पुराना सब भूल जाते हैं एंड लेट्स बी फ्रेंड्स। पीछे से अमिया ने मीनल के कान में बोला, बच के रहना, नागिन है ये, डसेगी जरूर। फिर शिवानी ने अमिया की तरफ देखकर बोला कि अमिया तुम भी मुझे माफ कर दो ना, हम सब साथ में दोस्ती रखेंगे। इस पे अमिया तबाक से बोली, देखा मीनल, मैं ना कहती थी कि शिवानी उतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम सोचा करती थी। फिर तीनों कैंटीन की तरफ चल दी। वहां कैंटीन में बातों बातों में शिवानी ने कहा कि डेविड सर, मेरी आज तारीफ हुई है और मीनल से दोस्ती भी, तो इस बात पे मेरे घर पे एक अच्छी सी हाउस पार्टी बनती है ना। मैं मीनल, अमिया और बाकी फ्रेंड्स को तो इनवाइट कर ही रही हूँ, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? तुषार सर और कपिल सर भी आ रहे हैं। डेविड ने भी ये सुनकर हामी भर दी। क्या ये कोई षड्यंत्र था या शिवानी सच में सुधर चुकी थी, ये तो अगले कुछ पन्नों में पता चल ही जाएगा। पर फिलहाल जो पन्ना मीनल की डायरी में उस दिन का था वो कुछ ऐसा था। तमाम रंग हसरत का मैंने लुटा दिया, एक रंग लाल ने मुझको बना दिया। क्यों कैद हो कोई हसरत किसी मुकाम पे, क्यों कैद हो कोई हसरत किसी मुकाम पे, क्यों खुद में हमने खुद की दुनिया बना लिया। डेविड से मीनल के कुछ धड़कते जज्बों की बातें अभी बाकी हैं और ये पन्ना भी पलटा जाएगा तब जब पढ़ेंगे और रंगेंगे एक रंग इश्क का।
7: एक रंग इश्क का।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अंबेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710 30 92 या 90765-65750।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती अकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक

0: बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
2: We signed this year a free trade agreement with Europe.
3: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उपमंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
5: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
4: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए तीन दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9555

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
10: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
7: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
10: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
10: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी,
2: हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
10: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
11: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
11: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
9: और 90971602।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 18,000 करोड़ रुपए समेत कई परियोजनाओं की मांग की। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में पुलिस ने 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, 10 की हुई गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। और किशनगंज समेत प्रदेश के 6 जिलों में मॉनसून की दस्तक। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए 18,000 करोड़ रुपए की मांग की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में श्री चौधरी ने यह आग्रह किया। उन्होंने हर घर नल का जल योजना के मद में खर्च की गई राशि के केंद्रांश के रूप में 13,000 करोड़ रुपए और वर्तमान में चल रही योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके साथ ही प्रदेश के लिए निफ्टम सहित शैक्षणिक और प्रबंधन संस्थानों की स्थापना, 10 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क आवंटित करने और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए भी आग्रह किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2028 में नेशनल यूथ गेम्स, वर्ष 2030 में हॉकी विश्व कप और 2031 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की भी अपेक्षा की है। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,365 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने पटना में कहा कि इस निधि से अपूर्ण आवासों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर गरीब का अपना घर हो। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की बहाली की जाएगी। उन्होंने पटना में कहा कि विभाग ने ऑनलाइन राजस्व सेवाओं को प्रभावी ढंग से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि विभाग द्वारा 8,054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली और अवैध लाभ पहुंचाने के खिलाफ पुलिस ने पटना के सचिवालय थाने में 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में मुंगेर और अरवल से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय थाना की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक अनु कुमारी ने बताया कि धांधली और साइबर गैंग की संलिप्तता की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि 88 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
1: कुल 10 अभ्यर्थी को अरवल एवं मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें उपस्थापित किया जा रहा है। अभी तक इस कांड में कुल 88 अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ जो है वो स्कॉलर है, कुछ जो है वो अभ्यर्थी है, उन सबका सत्यापन किया जा रहा है।
0: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति संवाद का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति संवाद आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कुलाधिपति के समक्ष विद्यार्थी और शिक्षक अपने विचार रखेंगे। संवाद में आए विचारों पर लोक भवन नीतिगत निर्णय लेगा। वहीं राज्यपाल ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि स्नातक स्तर पर अंग्रेजी के साथ साथ कम से कम एक विदेशी भाषा के अध्ययन अध्यापन की भी व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों में की जाए। देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार किसान 40245981800 नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कर सकते हैं। इस नंबर पर मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ICAR के हैदराबाद स्थित भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने बताया कि यह पहल सामूहिक तिलहन अनुसंधान का पहला ऐसा प्रयास है जो देश के प्रत्येक किसान तक पहुंचाया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून के समय से पहले दस्तक देने के साथ ही लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिले में पहुंच चुका है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 6 दिन पहले बिहार पहुंचा है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है।
1: पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। सारण एवं सिवान जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून के प्रभाव से किशनगंज जिले में सबसे अधिक 148 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सरायगढ़ भपटियाही में 106 मिलीमीटर और सुपौल के बलतारा में 70.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में देर रात 4-पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने से यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार और नीरज कुमार तथा ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक थाना प्रभारी सागर पासवान की बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को खत्म करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है बाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के नागरिकों से बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण बचपन को और अधिक सशक्त बनाने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी लोगों से बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहने की अपील की है। वहीं श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रम मुक्त बिहार अभियान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाला यह टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगवानी वाली भारतीय टीम इतिहास रचने का प्रयास करेगी और अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 12 टीमें हिस्सा

0: उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन तक रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में यह 70.39 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि फल, सब्जियां, फूल और सुगंधित एवं औषधीय फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। दूसरे अग्रिम अनुमानों में केले, आम, पपीता, सेब और अमरूद के उत्पादन में वृद्धि से फल उत्पादन 1,214 लाख टन से अधिक रहने की संभावना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मौसम की खबर पर लिखा है, राज्य में समय से पूर्व मानसून की दस्तक, 7 जिलों में हुई झमाझम बारिश। दैनिक जागरण ने ईओयू की कार्रवाई को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लेखापाल का वेतन 50,000, 8 भूखंड समेत बनाई 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति। दैनिक भास्कर ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मांग का शीर्षक लगाया है, सम्राट ने केंद्र से मांगे 20,250 करोड़ और कई बड़े प्रोजेक्ट। प्रभात खबर लिखता है, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में 7.5 CGPA वालों को ही मिलेगा 4th वर्ष में प्रवेश। राष्ट्रीय सागर की प्रमुख खबर है, निशांत और पवन सिंह सहित 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। आज अखबार की सुर्खी है, सरकारी शिक्षकों को ट्यूशन कोचिंग पर प्रतिबंध। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 18,000 करोड़ रुपए समेत कई परियोजनाओं की मांग की। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में पुलिस ने 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, 10 की हुई गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। और किशनगंज समेत प्रदेश के 6 जिलों में मानसून की दस्तक, मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलोग तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
5: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैडम, नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: ओके, मैं अनान बोल रहा हूँ कपूरा से। बहुत दो टाइम के बाद आ रही है। आप कहाँ, घर चली गई थी क्या?
2: नहीं, मैं भी यही थी।
1: आज कौन सा गाना सुनाइएगा मैडम?
2: बता दीजिए अपनी पसंद, मैं सुनाऊंगी वही।
1: अरे आपने, आपके पसंद से सुन लेना है गाना, कोई सुनाइए गाना को जाने वाले। हम लोग पुराने किस्म के आदमी है, तो वही टाइप से कोई गाना सुनाइए अपने पसंद, कोई फिल्मी गाना
2: जी
1: सुना दीजिएगा, बोलिए।
2: मैं तो सुनाऊंगी, मैं तो हमेशा सुनाते रहती हूँ, मेरा तो हमेशा बजती रहता है।
1: हमारे पास से सुनाती है ना आप?
2: अच्छा ठीक है, सुना दूंगी, बता दीजिए।
1: मूवी तो बताएंगे तो आपको गाना मिलेगा ना।
2: अच्छा,
1: एक है बहुत पुराना, एक है मूवी है हंटर वाली, एक है सज्जोर आदमी। तो दोनों में से कोई ढूंढ लीजिएगा।
2: ओके,
1: तो उसी का कोई गाना सुना दीजिएगा मैडम। और आपके सब काम काम कैसा चल रहा है रेडियो स्टेशन पे?
2: बहुत अच्छा चल रहा है।
1: मन उगता नहीं है ना?
2: नहीं, मन नहीं उगता है, अब दिन भर काम में लगे रहते हैं लोग, गाना सुनते रहते हैं लोग, तो नहीं।
1: गाना भी है, कितना फरमाइश है, कितना एडवर्टाइज है। आपका आवाज एडवर्टाइज जो आप करती है ना, उसमें आप तो डाली है कि शुक्रवार को फलाने टाइम पे फलाने टाइम पे, हाँ कितने नंबर पे आपको गाना है ये सुनना है, आप गाना रिक्वेस्ट करें, तो ये जो आपका एडवर्टाइज बहुत अच्छा लगता है, सोनी के जैसा एकदम
2: जी।
1: हाँ, बहुत अच्छा लगता है हमको, बीच बीच में आता है आपका एडवर्टाइज तो बहुत अच्छा लगता है हमको, आपको मतलब पूरा उसमें लगता है पूरा आप एक्सपीरियंस में है आप। हमको बहुत अच्छा लगा
2: जी जी, कोशिश कर रही हूँ अच्छा करने के लिए।
1: अरे हमको दुआ है मैडम आपके पास कि आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म दिखाएं, ठीक है मैडम?
2: और ये गाना किसको सुनाना चाहते हैं आप?
1: अब हम तो घर में ही बजाते हैं गाना, घर वालों को सुनाते हैं, रेडियो खोल देते हैं, सुनते रहता है लोग। अब बाकी जो हमारा रिमझिम का रेडियो प्रेमी है उन्हीं लोग को गाना सुनाएगा, सारे तो आप ही हैं
2: जी। बिल्कुल, मैं तो है।
1: आपको बोला हम कैसे छोड़ देंगे। तो आप ही सुना रहिए गाना, आप ही का नाम डेडिकेट रहेगा
2: जी। बिल्कुल
1: ठीक है मैडम, तो सुनाइए
2: गाना, करते हैं, सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते,
1: नेहा बोल रहे हैं भोरे से।
0: जी जी, क्या हाल है नेहा जी?
1: अच्छा, आपने बताया मैडम जी, कैसा है?
0: मेरा भी ठीक है। तो और सब ठीक है ना, घर परिवार में सब ठीक है ना?
1: सब ठीक है, आप लोग का दुआ से सब ठीक।
0: तो बताइए, खाना हो गया है आपका?
1: जी अपना हो गया मैडम जी, नाश्ता खाना।
0: मेरा भी हो गया है
1: जी।
0: बताइए, क्या फरमाइश है आपकी?
1: दिल वाला फिल्म थी।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: एक ऐसी लड़की थी उससे प्यार करता।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: आपको, जितना रेडियो रिमझिम आरजे है या दो सब सुनते हैं सबके साथ।
0: चलिए फिर, ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते मैडम जी।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, हेलो, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माइक में।
14: जी नमस्कार मैडम जी।
13: नमस्कार
14: जी मैडम, मैं सुनील साहू मधु सुधनगढ़ से बोल रहा हूँ।
13: जी क्या हाल है आपका?
14: बस प्रेम जी का आनंद ले रहा है।
13: जी भोजन हो गया?
14: हाँ हो गया ना।
13: अभी क्या कर रहे हैं?
14: जी अभी कुछ नहीं, बैठे हैं और रेडियो सुन रहे हैं।
13: चलिए बढ़िया है, बताइए क्या फरमाइश है आपकी।
14: जी बहन जी, भोजपुरी सॉन्ग सुना देंगे क्या आप?
13: जी बिल्कुल सुनाएंगे।
14: नाम है रघुआ हिंदुस्तानी और गाने बोले नई जुलनी के सैया बलम दोपहरिया बना ले हो।
13: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
14: जी जी जी, अपने गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा है और मांगीलाल धाकड़ है बड़ा गाँव से, और ये आपको भी डेडिकेट है बहन जी।
13: जी जी बिल्कुल, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
14: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम नमस्ते।
1: नमस्ते
0: जी मैम, मैं अंकित जैन मकसूदनगढ़ से बोल रहा हूँ।
1: जी क्या हाल है आपका?
0: जी मैम बस बढ़िया है, कहते हैं दुकान पर और आपका रेडियो एंजॉय कर रहे हैं। जी और आप कैसे हो?
1: मैं बढ़िया हूँ
0: जी। मुझे एक गाना सुनना था, खलनायक मूवी का है जी, वो टोली के पीछे क्या है।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: जी ये है, मेरा एक दोस्त है सुनील साहू जी, उसको डेडिकेट करना है और आपको भी।
1: ओके और तबीयत वगैरह ठीक है ना?
0: बस मैम बढ़िया है।
1: उधर का मौसम कैसा है?
0: बस कभी धूप निकल रही है तो कभी पानी।
1: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198869793।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: नमस्ते मैम।
11: नमस्ते,
12: कैसी हैं मैम?
11: मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए।
12: कहाँ पे हैं आप? आपकी आवाज बहुत कट-कट जा रही है, सुनाई तो दिया लेकिन कटने लगा फिर।
11: सुनाई दे?
12: हाँ दे रहा है। और खाना हो गया आपका?
11: हाँ हो गया।
12: तो सब घर परिवार में कैसे हैं?
11: सब ठीक है।
12: बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
11: कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए।
12: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहती हैं?
11: मैम नया नया वाला।
12: ओके, नया वाला सुनाऊंगी। और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
11: जी मैम, घर में सभी को और रेडियो रिंगिंग सुनने वाले सभी दोस्तों सभी यार।
12: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करती हूँ। सुनते रहे रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: और क्या हाल है भारती जी?
0: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
1: हमारा भी ठीक है, छुट्टी में है, आज छुट्टी रहता है। तो सोचा कि हाजिरी तो लगा ही ले।
0: जी बिल्कुल,
1: लगता है पहला कॉल लगी है।
0: हाँ हाँ, पहला ही कॉल है आपका।
1: अच्छा जी,
0: और बताइए क्या हाल है आपका?
1: ठीक है।
0: खाना हो गया है?
1: खाना तो नहीं हुआ है अभी। मैं सोचा कि अभी कॉल करके ही खाऊंगा।
0: बताइए, तब क्या फरमाई थी आपकी?
1: और सोनी जी का क्या हाल है?
0: सोनी जी भी अच्छी हैं।
1: यही मनोरंजन करने का है, और क्या। चलिए ठीक है। एक आज गाना है, जेपी तिवारी का गाना है
0: जी। बताइए कौन सा?
1: नून रोटी खोइयो बाकी करियो जनी कर्जा, जेपी तिवारी का है।
0: किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: डेडिकेटेड पहले नंबर भारती जी है, सोनी जी है, और भैया भाभी है, और रामा जी प्रसाद है थावे वाले
0: जी,
1: प्रमुख जी भी है, सन्यासी रंजन बाबा भी है, यहाँ जो है वो सुन लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: चलिए फिर मैम अगले बार बात होगा। और
0: जी जी बिल्कुल, ओके,
1: थैंक यू।
0: गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें रेडियो।
1: थैंक यू।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो जी, नमस्ते।
17: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम माई चॉइस में।
16: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार संग्राम कोना मरसिंह पंडित चंपारण बिहार से संजय कुमार शाह।
17: जी जी, क्या हाल है आपका?
16: हाँ, मेरा हाल खबर बढ़िया है। आपका विश्वास है कि आपको आपको हाल खबर ठीक होगा?
17: जी जी, मेरा भी बढ़िया है।
16: लेकिन फिर भी अपना आवाज सबसे हमको बताइए, क्या है उनका हाल खबर?
17: सारे लोगों का ठीक है।
16: चलिए, गर्मी है ज्यादा की क्यों ना है, गर्मी के मौसम बताइए।
17: मौसम गर्म है आपकी तरफ का?
16: जी जी, इधर भी गर्म है, इधर भी गर्मी है, लगभग 3-4 बजे गर्मी है।
17: इधर भी वैसे ही हाल है।
16: बारिश होता है तो उतने देर तक ठीक जाता है, उसके बाद फिर गर्मी बढ़ जाता है। खैर, मौसम है, आने जाना तो लगा जाएगा, किसी के मेहनत क्या कीजिएगा, तो कभी धूप कभी छांव तो पहना ही पड़ेगा। अपना अपना समय तो सब प्रकृति की मांग होता है।
17: अभी तो लास्ट चल रहा है, जून चल रहा है और गर्मी तो बढ़ेगा ही। और
16: ठीक है, प्रकृति है तो उसका आना जाना तो लगा रहेगा।
17: अभी नहीं, लेकिन गर्मी से बच के रहिए, धूप से बच के रहिए, पानी पीते रहिए।
16: इतना तो जरूरी है, इतना तो जरूरी करना है, पानी पीना है, प्यास लगे ना लगे थोड़ा थोड़ा पानी तो पीना ही पड़ेगा।
17: जी बिल्कुल,
16: धूप से बचना है, कहीं जाना है तो अपना पूरा कहिए ना सावधानी के साथ। हम लोग अमृत खाएंगे और लोग तो फरमाइश आज बजा दिए जिंदगी के राहों में जाने जो गम के मेले कहने को बोल दूंगा।
17: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
16: इस सॉन्ग तो पहले आपको आपको रिमी परिवार का संपूर्ण परिवार को सुना देंगे। और दोस्त में हो गया सिखाना तो मोहम्मद साबी जी, हमारे से उत्तम कुमार जी, इनाम सब कुछ आ लेकिन लगा से अर्जुन कुमार कला मलपुर नाम से, नरेश सोहनी, नसरुद्दीन खान, दीपक दास, भगवान ठाकरे, जुन्ना साहब, धर्मेंद्र यादव, धनराज प्रसाद कुशवाहा, हम मदन राम भैरवगंज जी भैरवगंज से, हमारे नाम से जन पहचाने तमाम दोस्त के विशेष करके शंकर प्रसाद कमोजी, पारसनाथ कुशवाहा, पारस शर्मा और रामचंद्र कुमार मुखिया, मोहम्मद तलाक अंसारी है मजवलिया को विशेष करके उनको सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।
17: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए।

0: सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कैसे हैं मैम? मैं अहमद अली सारे वार्ड नंबर एक।
1: जी जी मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
0: हम तो नक्का पानी करके आए हैं।
1: जी हम तो करके आए हैं, आपने किया है?
0: हम तो करके आए हैं मैम, हम तो कर नहीं करके आएंगे तो आपके तरह मेरा भी ड्यूटी है सुबह 9 बजे 5 बजे तक।
1: क्या करते हैं वैसे आप?
0: हम पेंटिंग का काम करते हैं।
1: हाँ याद आ गया,
0: काम वो कहीं है तो बताइए, आपका घर रंगना हो तो मौका दीजिए।
1: अभी तो नहीं रंगना है।

0: सब बढ़िया है मैम, अपना बताइए, तबीयत ठीक है ना?
1: हाँ हाँ तबीयत ठीक है।
0: अगर गर्मी बहुत है मैम, लोगों से बोलिए रेडियो पे कि बच के रहे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी थोड़ा नहीं
1: बच के रहे और पानी पीते रहे, ख्याल रखिए
0: अपना, नहीं तो चक्कर खाकर रोड पे गिर जाएंगे आदमी लोग,
1: जहाँ भी जाए एक पानी का बोतल अपने साथ रखे।
0: चलिए मैम सब ठीक है,
1: ठीक है फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे
0: मैम, सुनाने के लिए थैंक यू
1: जी।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत

0: रोगों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपको। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, पूर्वी चंपारण से।
7: जी जी, क्या हाल है आपका?
6: बहुत अच्छा है, अपना सुनाइए घर परिवार में, रेडियो रंजन पूरा परिवार कैसे है आप लोग?
7: हम सब बढ़िया है
6: जी। जी अच्छा रहिए, उससे स्वस्थ रहिए, चमना है।
7: तो
6: और मौसम कैसा है उधर?
7: इधर अभी मौसम बहुत गर्म है
6: जी, वैसा ही मौसम इधर भी बना हुआ है, बहुत गर्मी सुबह से लेकर शाम तक जी।
7: तो भोजन हो गया आपका?
6: जी जी हो गया है आपका?
7: मेरा भी हो गया है।
6: अच्छा है, समय से खाना खाइए, रही रहिएगा, पानी का सेवन अधिक कीजिए गर्मी में।
7: जी जी बिल्कुल, पानी तो गर्मी में बहुत चाहिए।
6: जी जी, पसीना जितना गिरता है पानी पूर्ति कर लेता है अपना। तो आज गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है नगीना और गाने का बोल है तूने बेटे ने इतना ज्यादा किया, मेरा हो गया मैंने वादा किया।
7: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
6: जी, सबसे पहले तो आप गाना जा रहा हूँ और दोनों के रंजय मराठी रामचंद्र मुखिया जी, कंसराज यादव जी, अंचल कुमार जी, पारस नाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनवंतर दुआ जी, राजा पापरिका और भाई कुमार, शीत कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, आदर्श कुमार, विकास कुमार, बबली प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी और गोपालगंज जी का शंकरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सुजमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जख्मी जी, राम कुमार पांडे जी, दीप राम जी और अभी रेडियो रिंगिन सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
7: ओके चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिंगिन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: जी धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय फ्रेंड।
1: आप सोनी नहीं बोल रहे हैं का?
0: नहीं।
1: अच्छा, वो हट गई का?
0: नहीं तो वो भी है।
1: अच्छा ठीक है। तब हम मोहम्मद यूसुफ सिपाया ढाला, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज सैनिक स्कूल है
0: जी,
1: इसी चौराहे से बोल रहा हूँ। दवा का दुकान है हमारा, पटना मेडिकल हॉल
0: जी।
1: मैं गाना सुनना चाहता हूँ, दफली वाले दफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं।
0: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और कन्हैया प्रसाद जो गुमनिया के हैं, फौज से रिटायर किए हैं, वो आपका रेडियो रेडियो रखे हैं, बराबर सुनते हैं, उनको भी सुनवाना चाहता हूँ। ये तो 15 बार फोन लगाए हैं तब लगा है जाके
0: जी।
1: एक बार रिंग हुआ मगर आप उठाई नहीं।
0: अच्छा,
1: सुनवा दीजिएगा।
0: बिल्कुल, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे। मेरा नाम भारती है।
1: भारती?
0: हाँ।
1: सोनी जी नहीं आ रही है, अब क्या करते हो?
0: आती है, रोज आती है।
1: हाँ, तो वही उन्हीं से बात होता था पहले। हाँ, तो आपसे पहली बार हम तुमको बात हो रहा है। हम बराबर सुन करते हैं आपके
0: जी,
1: हम आपके रेगुलर श्रोता है।
0: आप ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है, दुकाने पर है, दवाई की दुकान है।
0: ठीक है, फिर गाना प्ले करती हूँ।
1: ठीक है, ठीक, धन्यवाद
0: जी। सुनते रहे रेडियो 94.4 FM।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 8784।
12: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
13: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
12: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा।
13: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
14: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
15: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
16: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
17: Now pick your phone up. Hello? Pick it up, pick it up. Hello? Now pick your phone up.
18: Break के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो,
20: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम तो इसमें। नमस्ते,
19: क्या हो रहा है?
20: कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं। आप बताइए क्या कर रहे
19: हैं? फोन तो लगाते लगाते हम थक गए हैं आज, बहुत ज्यादा फोन लगाए हैं
20: जी। कॉल आते रह रहा है ना, इसीलिए थोड़ा। और सब बढ़िया है?
19: हाँ, हमारा तो बढ़िया है, अपना बताइए।
21: नाम भी पूछ लीजिए करिए, नाम पूछे जा रहे।
20: रवि नाम है आपका?
19: हाँ, पहचान गए क्या? और सब बताइए।
20: मेरा बढ़िया है, क्या है अभी?
19: अभी तो हम सोए हैं।
20: हाँ, चलिए बढ़िया है, मौसम भी खराब है, घर में रहिए, आराम कीजिए। और बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
19: निकेश सवाई का प्रेम के रोग।
20: और ये किसी को डेडिकेटेड भी है?
19: पहले नंबर आपको और सोनी मैम को और जीजा को। और बहुत सारे हैं सुनने वाले
20: जी। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत रेडियो रेंजर 90.4 FM में।
1: जी मैम धन्यवाद। जी मैम मेरा नाम सोनू वर्मा है, बेलाव जौनपुर से बात कर रहा हूँ मैं।
0: अच्छा क्या हाल है आपका?
1: सब बढ़िया है मैम, यही गर्मी ज्यादा पड़ रही है।
0: इधर भी गर्मी बहुत सी ज्यादा है।
1: काम ही है मेरा, वैसे मजदूरी वाला काम करता हूँ मैं।
0: धूप तो बहुत लगती होगी।
1: हाँ धूप तो बहुत लगती।
0: कोई नहीं, फिर भी धूप से बच के रहिएगा
1: जी।
0: और पानी
1: सुबह ही निकल जाते हैं।
0: पानी सब पीते रहिएगा।
1: मैम मुझे एक गाना सुनना है।
0: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है?
1: कसूर मूवी का है। वो है ना मोहब्बत हो ना जाए।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: जी मैम हमारे रेडियो दोस्त हैं आरजे सागर जी और उदिता मैम हैं
0: जी,
1: जो यही सब हैं मतलब, और ऋषिकेश पंडित जी हैं।
0: ओके गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैम धन्यवाद।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
10: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
11: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
10: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
11: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
11: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
12: Now pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
15: Break के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
17: जी नमस्ते, बाल सुंदर।
16: नमस्ते, क्या हाल है आपका?
17: ठीक है, अपन बताइए।
16: मेरा भी बढ़िया है।
17: गाना सुना दो ना, ईमान डोल जाएंगे।
16: जी, और ये सॉन्ग किस डेडिकेटेड? ओके, तो और सब बढ़िया है ना?
17: हाँ, सब बढ़िया है।
16: उधर का मौसम
17: तो हवा चल रहा है।
16: अच्छा, बढ़िया है।
17: जी जी,
16: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
17: जी नमस्ते।
16: नमस्ते।

0: हेलो नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम, कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है जी। एक गाना सुनना है।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम पप्पू ठाकुर है। मैं थाना कटिया जिला गोपालगंज से बोलता
1: हूँ। गाने का नाम बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना?
0: गाने का बोल है तुम दिल की धड़कन में रहते हो, धड़कन फिल्म का गाना है का।
1: जी, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: हाँ, डेडिकेटेड है मैम, तो रेडियो रंजन के परिवार को और हमारे दो तीन दोस्त है उन लोगों के लिए।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रहते।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0-97-06-575।
5: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो, सलाम वालेकुम मैडम।
10: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
9: कैसे हैं मैडम?
10: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
9: बस अल्लाह करे हैं, कैसे हैं? और बहुत दिनों के बाद कॉल लगा है, लगभग 5-6 महीना हो गया बात करने में।
10: अच्छा,
9: आप सोनी मैडम बोल रहे क्या?
10: नहीं, भारती बोल रहे हूँ।
9: कब आए हैं इधर?
10: जी मैं तो यहीं पे थी, एक बार अपना नाम बता दें।
9: मेरा नाम हो गया मोहम्मद अलाउद्दीन।
10: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
9: सब ठीक है मैडम, मैं बताइए।
10: मेरा भी बढ़िया है।
9: ठीक है, अच्छी रहना चाहिए। लगभग 5-6 महीने बात हो गई थी उसमें सोनी मैडम से, लगभग जनवरी महीने में बात हुई थी। तो नाश्ता पानी हो गया मैडम?
10: जी मेरा हो गया, आपका हो गया?
9: जी मैडम हो गया।
10: बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
9: एक सॉन्ग है मैडम, अल्लाह रखा का, परवरदिगार आलम, मोहताज है तेरे हम, से ही वाला सॉन्ग।
10: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहते हैं?
9: हाँ, आप है सबसे पहले और जितने भी सुनने वाले हैं।
10: ओके,
9: तो ये सॉन्ग फिर कब चलेगा मैडम?
10: ये सॉन्ग कल बजेगा,
9: कल शाम 5 बजे से।
10: जी,
9: तो ये सॉन्ग पूरी सुनवाएगा मैडम, जितने पूरी सॉन्ग अच्छा रहेगा।
10: ओके,
9: पूरी सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है मैडम, मजा भी आता है।
10: जी
9: जी, ठीक है मैडम, सुनवाइएगा।
10: ओके, गाना प्ले करती हैं, सुनते रहिए रेडियो रेंज 90.4 FM।
9: ठीक है मैम। ओके मैडम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, क्या हाल है आपका?
0: ठीक है।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: भी नहीं,
1: भोजन हो गया?
0: हो गया।
1: अपना नाम बता दीजिएगा, सॉन्ग बता दीजिए, कौन सा सॉन्ग सुनना है आप?
0: करिए करिए कोई भी गाना बजा दीजिए।
1: नहीं,
0: भोजपुरी में
1: जी पसंद तो आपकी होनी चाहिए क्योंकि कॉल आपने किया है।
0: हैंडसम हीरो वाला
1: भोजपुरी सॉन्ग है। ओके, चलिए फिर गाना। और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है? बता दीजिए ना।
0: रेडियो रंजन।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन।

0: गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
7: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:19 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे SMS फरमाइश। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो बिल्कुल इस कार्यक्रम में आपकी हाजिरी लगेगी और साथ ही आपकी फरमाइश भी पूरी होगी। तो आप अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि पुराने गाने की फरमाइश करना है। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें, अपना मैसेज हमारे पास सेंड करने के लिए टाइप करने का। और यहाँ पे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सोनू भाई, 3 दिन से मैं मैसेज कर रहा हूँ और मेरी फरमाइश का गाना नहीं बजा रहे हैं। आज मेरा फरमाइश का गाना बजा दीजिएगा। और मैं परवेश नवादा से बोल रहा हूँ और गाने के फरमाइश करते हैं तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, और मुझे गाना सुनना है जिसका बोल है जुदाई जुदाई लंबी जुदाई। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अस्सलामुअलैकुम सुनो भैया, क्या हाल है। तो बिल्कुल बढ़िया है। और मैं मुस्कान गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है याद याद याद बस याद रह जाती है। तो बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि पवन सिंह का, तो कोशिश है आपकी फरमाइश हम प्ले करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि नमस्ते भाई, कैसे हैं, ठीक है, सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है, मुझे गाना सुनना है भाई बरसात के दिन आए। तो बिल्कुल बरसात के दिन तो आ ही गए हैं, गाने के फरमाइश है तो आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। सविता चौहान भोज छपरा से जुड़ी हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सोनू भैया कैसे हैं। तो बिल्कुल बढ़िया है। और नैना शर्मा वृंदावन से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे, दाग द फायर मूवी से गाने के फरमाइश करती हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो मुझे सॉन्ग सुनना है, बिल्कुल

सुनाने की कोशिश रहेगा और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम नहीं बताए हुए तो अपना नाम ज़रूर बताएं ताकि आपकी पहचान हो सके और पहचान के साथ साथ आपकी फरमाइश भी पूरी हो पाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। गुड इवनिंग सर, मैं अनीस यादव स्टूडेंट ऑफ KGS इंस्टीट्यूट पटना। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है, काफ़ी पहले मैसेज पहुंचा दिया गया है, मेरा नाम है और इस मैसेज को पहुंचाने वाले सुनम्थु दत्ता झारखंड से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अब गाने के फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले गाने प्ले करते हैं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रमजी 94 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने ओल्ड इज गोल्ड या 90s के गाने की फरमाइश करना है। और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो जी, गुड इवनिंग, आई एम मिथुंजय फ्रॉम पुणे, असिस्टेंट मैनेजर जे एफ रेन ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सॉन्ग रिक्वेस्ट पवन सिंह का कोई भी सॉन्ग। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। एक गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, गाने का बोल दिया गया है पवन सिंह के ही आवाज़ में, याद ही सहारा बा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है? तो बिल्कुल बढ़िया है। और कहते हैं कि मेरा भी वेलकम कीजिए, बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबीना खातू एंड जिसान बाबू फ्रॉम दुलुलिया से आप दोनों बने रहे हमारे साथ। और बादलों ने पूछा किसने याद कर रहे हो, बादलों ने पूछा किसे याद कर रहे हो, हमने मुस्कुरा कर कहा जिसे बारिश पसंद है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मेरा सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और मैसेज करती हैं सोनी गोपालगंज से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए और मुझे भी आज सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल बने रहे हमारे साथ। और इस मैसेज को करती हैं रोशनी मानिकपुर से, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर, तो आपका भी स्वागत है, फिलहाल आप कौन? आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो हाय सुनो भैया जी, कैसे हैं आप? और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूं, मैं रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल रोहित जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश ले करते हैं। और इस गाने की फरमाइश करते हैं दिलीप जी, गाने का बोल देते हैं जुदाई जुदाई। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो 94 एफएम पे।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और समय 9:42 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में। आगे कई मैसेज भी हमारे पास पहुंच रहे हैं और कई पहुंचे हुए गाने के फरमाइशों के लिए। और यहाँ पे आज हम फिर से आप सभी के बीच एक थोड़ा सा सुझाव साझा करेंगे सेहत सही लाभ कही के अंतर्गत। और आज हम जानेंगे दस्त यानी डायरिया के बारे में। डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बार बार पतला या पानी जैसा मल त्याग होता है। यह गर्मी के मौसम में दूषित भोजन और गंदे पानी के सेवन से अधिक फैलती है। यदि समय पर उपचार ना किया जाए तो शरीर में पानी और लवणों की कमी डिहाइड्रेशन हो सकती है। कारण यह है कि दूषित या बासी भोजन खाना, गंदा या संक्रमित पानी पीना, बैक्टीरिया, वायरल या परजीवियों का संक्रमण और भोजन से एलर्जी, स्वच्छता की कमी रहती है तो ये सारी बीमारी हो सकती है। और लक्षण है बार बार पतला मल आना और पेट में दर्द या मरोड़ होना, मतली और उल्टी और कमजोरी, थकान, बुखार आना, अधिक प्यास लगना, शरीर में पानी की कमी होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। और उपचार है इसका ORS का घोल का सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पिए, हल्का और सुपाच्य भोजन करें जैसे खिचड़ी, दही, चावल, केला आदि, तेलीय और मसालेदार भोजन से बचें, आराम करें। यदि दस्त लंबे समय तक रहे या मल में खून आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसका बचाव के साथ साथ और भी सारे उपाय हैं, हमेशा स्वच्छ और ताज़ा भोजन करें, उबला या शुद्ध पानी पिए, भोजन से पहले और स्वच्छ के बाद हाथ धोएं, बासी भोजन का सेवन न करें, आसपास की साफ सफाई बनाए रखें ताकि आपको ऐसे समस्या से जूझना ना पड़े। यदि ऐसी कोई भी गतिविधियां आप सभी के बीच होती है तो आप इसमें थोड़ा सा कोताही ना बरतें, आप अपने को ख्याल रखें, ध्यान रखें कि हम स्वस्थ रहें। और यदि आपके साथ साथ अगल बगल आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को ऐसा लक्षण दिखाई देता है या आपकी जानकारी हो तो उससे भी अपना जानकारी साझा करें और उसे सहयोग करें अस्पताल ले जाने में, या अपने द्वारा जो भी हो सके मदद उसे मदद करें। ये सारे रेडियो रिमझिम हर रोज़ एक एक छोटी छोटी जानकारियाँ साझा करेगा आप सभी से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ मैसेज भी पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने के फरमाइश किया गया है पवन सिंह की आवाज़ में, बस याद ही सहारा बा। और पवन सिंह के गाने का फरमाइश दो श्रोतागण की तरफ से पहुँची है। एक श्रोतागण कहे हैं कि कोई भी सॉन्ग सुना दीजिएगा, और एक श्रोतागण की फरमाइश में नाम दिया गया है बस याद ही सहारा बा। तो आप दोनों की फरमाइश हम पूरी करेंगे। और पूरी करने से पहले कई मैसेज पहुँचे हुए और मैसेज में लिखा गया है कि जल्दी भाई, तो बिल्कुल जल्दी तो नहीं हो सकता है, एक एक करके ही फरमाइश हम पूरी कर सकते हैं। और सबिता चौहान, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बिल्कुल यही प्यार है, काफ़ी प्यारा सॉन्ग, मुझे एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना, मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है वेरी नाइस सॉन्ग, मैसेज करते हैं शिव सागर दीवाना जी। और आगे भी मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वेरी नाइस सॉन्ग, और इस मैसेज को करती हैं शबीना खातून। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और सोनू जी मैं भी जुड़ गई हूँ, मुझे भी गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले रेखा पांडे सरिया वार्ड नंबर 5 से, तो बिल्कुल आप भी बन रहे हमारे साथ, गाने का फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि जब भी कभी मन उदास होता है तेरा चेहरा आसपास होता है, तू दूर है तो क्या तेरे करीब होने का मुझे हर घड़ी एहसास होता है। सोना भाई नमस्कार, गाना सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया, दिलीप राम सियोरवा से। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए और बने रहे हमारे साथ। और आगे बढ़ते हैं और पवन सिंह की आवाज़ में गाने की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं और इंजॉय करते हैं हम सभी।

रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे पवन सिंह की आवाज़ में गाने सुन रहे हैं आप सब। कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सोना बाबू कैसे हैं, हम भी जुड़ गए हैं और सुनकर अच्छा लगा। रेडियो एमसीएम के द्वारा जीवन रक्षक जानकारी जनहित में जारी बहुत है, सराहनीय है, इसके लिए थैंक्स। एक मैडम जी का सॉन्ग था पर कल नंबर में रखेंगे क्योंकि बहुत सुल्तान नंबर में है और हम लेट, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश कल पूरी करने की कोशिश रहेगा। आप थोड़े समझते हुए कल की आपने नंबर बुकिंग कराई है, तो बिल्कुल आप बन रहे हमारे साथ फिलहाल और सुनते रहें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भैया, तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है, और शिव सागर जी बने रहे हमारे साथ, आप भी इंजॉय करते रहें रेडियो रेमछिम। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और आगे गाने के फरमाइश, एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, सर मेरा सॉन्ग प्ले हो गया है क्या? और इस मैसेज को अनीस जी पहुंचाते हैं, तो बिल्कुल अभी तो प्ले नहीं हुआ है और प्ले करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, हो जाए मोहब्बत तो फिर सूरत नहीं देखी जाती, पसंद हो जाए कोई चीज़ तो फिर कीमत नहीं देखी जाती। मुझे गाना सुनना है, और गाने के फरमाइश से तो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, क्योंकि बहुत सारे मैसेज पहले से भी पहुंचे हुए हैं, और हाँ जगह बनता है तो पूरा करने की भी कोशिश रहता है मेरा, ये नहीं है कि जगह रहते हुए भी आपकी फरमाइश हम रोक दें, ऐसा नहीं है। गुलाम हुसैन, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। गाने के फरमाइश करती हैं सोनी, और गाने का बोल देती हैं, ओल्ड सॉन्ग है तुझे संग प्रीत लगाई सजना, और किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, तो सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को। रेडियो रेमछिम 94.4 एफएम पे इंजॉय करते हैं हम सभी।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99393 65 930।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
11: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल कमला राय कॉलेज रोड इंडियन गैस एजेंसी के बगल में गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
12: टॉप भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नू सारा मार्केट देख लेनी नू सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
12: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में
13: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
14: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
15: कभी प्यारा सॉन्ग सुनने हम सभी रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे और सोशल एसएमएस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई भी मैसेज पहुँचे हुए और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे से प्रीत लगाए हैं इसके लिए आपको थैंक्स। पर हाँ ईमानदारी से मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया कि शुक्रिया दिल से मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए सोनी सरियावर नंबर 1 गोपालगंज से। आगे मैसेज और अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा भी एक फरमाइश है और गाने के फरमाइश करते हैं चंदन कुमार जी शीतलपुर एकमा से कहते हैं कि मैं हूँ। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। गाने का बोल देते हैं और साथ ही रे तेरे बिना भी क्या जीना हिंदी ओल्ड सॉन्ग। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170-8565-87।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4

वाकई के अंतर्गत सेहत से ही लाभ कई अभियान से के अभियान के अंतर्गत HPV टीका के बारे में। तो दोस्तों, सरकार द्वारा HPV टीकाकरण की शुरुआत की गई है और इसके बारे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल और जिज्ञासाएं हैं, खास करके सोशल मीडिया और मोबाइल पर मिलने वाली अलग अलग जानकारियों के कारण कई बार भ्रम की स्थिति भी बन जाती है। ऐसे में आज हम आप सभी के द्वारा भेजे गए कुछ सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में हम उनकी जवाब भी साझा करेंगे। तो अगर आपके मन में भी है कोई सवाल और HPV टीका को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। और अगर आप भी शो से जुड़ना चाहते हैं, शो में अपनी गाने सुनना चाहते हैं, और जो भी हमारे पुराने लिसनर है, अगर आपका एक सप्ताह हो चुका है तो आप अपने गाने की फरमाइश के साथ भी शो में जुड़ सकते हैं। शो में जुड़ने के लिए माध्यम है हमारा व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527-88-291। जी हाँ, 98527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। और जो भी हमारे लिसनर व्हाट्सएप इंस्टा नहीं यूज़ करते हैं, आपके लिए कॉल का माध्यम है, कॉल कर सकते हैं हमें 72-77-16-65-96 पे। तो चलिए बिना देरी किए आज की शो की शुरुआत करते हैं, आज की सफर की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गाने के साथ, क्योंकि शो है आपका अपना कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जब तक आपकी मैसेज आती है तब तक हम इंजॉय करते हैं उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 FM रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। अरे अभी हम सब ने गाना एंजॉय किया, उदित नारायण की आवाज में काफी बेहतरीन सॉन्ग, और बढ़ेंगे आगे आज की व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि आज हम HPV टीके से जुड़े आपके साथ कई सवालों के जवाब भी साझा करने वाले हैं, तो आप अपने दोस्त मित्र बंधु जो भी हैं, जो शो से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आज आपके पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में HPV टीका के बारे में भी बात होने वाली है और कुछ सवालों के जवाब भी साझा करने वाले हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं शो में। और बढ़ेंगे आगे आपके मैसेज की तरफ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है। दीनानाथ यादव जुड़ चुके हैं कुवैत से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्ते सोनी जी, आप कैसी हैं? और मैं भी जुड़ गया हूँ शो से, हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए कि गम की हर बात पुरानी हो जाए, हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए कि गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ ये नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। क्या बात है अनिल जी। और अनिल जी है छोटपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। यहाँ गणेश कुमार जुड़ चुके हैं पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि हेलो है दी, गुड आफ्टरनून। और पहले हाल पूछते हैं सोनी दी का, हाल बा? तो बिल्कुल बढ़िया बा, आप बताइए आप कैसे हैं गणेश जी, और बने रहिए हमारे साथ में। और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, वॉइस मैसेज है, और सत्येंद्र कुमार जुड़े हुए हैं इराक से, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ आगे और भी सारे मैसेज है। और संजय यादव हैं दुबई से, लिख रहे हैं क्या हाल है मैम, नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरा हाल बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं, आपके उधर का मौसम का हाल चाल बताइए कैसा है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ मैसेज है, और दिलीप राम जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाने की फरमाइश के साथ है, वॉइस सेंड की है, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बनी रही है हमारे साथ में। और यहाँ आगे राम कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं लंदन से, और लिख रहे हैं कि अभी अभी मैं भी शो में जुड़ा हूँ, नमस्कार सोनी मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। यहाँ दिनेश मिश्रा है दिल्ली से, लिख रहे हैं कि लड़कियों से क्या दोस्ती करते हो जो पल भर में साथ छोड़ देती हैं, दोस्ती तो लड़कों से करो जो मरने के बाद भी कंधा देने आते हैं। और सोनी मैम नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मज़ा आ गया, लाजवाब ओपनिंग सॉन्ग, और मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल हाजिरी लग चुकी है। लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं मैडम जी? और मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और पहली फरमाइश की तरफ, और पहली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है इराक से, और फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका सत्येंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं और वॉइस पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: मैं मुझे गाना सुनना है कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे नजर छोड़ जाऊंगा, प्लीज मैं गाना सुनवा दीजिए आपको, जितने रिमझिम सुनने वाले दर्शक है सभी को सुनवाना चाहता हूँ, प्लीज मैं गाना हमको सुनवा दीजिए। जिनका नाम और भी लेना चाहता हूँ, संजीव कुमार पांडे, सुग्रीव कुमार, शैलेश कुमार, प्लीज मैम गाना सुनवा दीजिए। हम सलेमगढ़ बाजार के रहने वाले हैं और इराक में हम लोग हैं।
0: और यहाँ सत्येंद्र जी की तरफ से भी काफी बेहतरीन गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे सत्येंद्र जी की फरमाइश को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं। और यहाँ मैसेज है, गणेश कुमार है पिपरा नारायण से लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग भाई। और आगे यहाँ संजय यादव जी हैं दुबई से लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मैम। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरा भी गाना सुनवा दीजिएगा, जानवर मूवी का गाना है अंगूरी अंगूरी। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। अपना नाम ज़रूर मेंशन करिए, कौन है कहाँ से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ मुस्तफ़ा जी जुड़ चुके हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ अनिश यादव हैं ब्लेस दुमरा सिवान से, बहुत बहुत स्वागत। प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ अमनीश रिजाक जी हैं फाजिल नगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना है, फरमाइश कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपका एक सप्ताह नहीं हुआ है, आपकी फरमाइश जो है कल ही हम प्ले किए थे। और आगे बढ़ेंगे, आगे और भी सारे मैसेज हैं शामिल करेंगे, लेकिन अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है दिल्ली से, दिलीप राम जी की तरफ से। और दिलीप राम जी को सुनना है गाना खाई के जहरिया। तो चलिए प्ले कर दिए आपकी गाने की फरमाइश को, एंजॉय करिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

रेडियो रिमझिम 90.4 सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, दिलीप राम जी की फरमाइश थी दिल्ली से, और इनकी तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं कि ऐसा क्या बोलो कि तेरे दिल को छू जाए, ऐसा क्या बोलो कि तेरे दिल को छू जाए, ऐसी किससे दुआ मांगू कि तू मेरी हो जाए, तुझे पा नहीं तुझे पाना नहीं तेरा हो जाना है तमन्ना मेरी, ऐसा क्या कर दूं कि ये तमन्ना पूरी हो जाए। सोनी जी नमस्कार, गाना सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया आपको। और आप कैसी हैं दिलीप राम अपने गांव से, और शायद आपका गांव सिहोरवा है, ज़रूर कन्फर्म करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शो में जुड़े। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ आगे मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिलीप भाई का गाना में बहुत ही दर्द बाटे। जी हाँ, और दिलीप जी की तरफ से सैड सॉन्ग की फरमाइश है। और मैसेज करने वाले हैं राम कुमार पांडे जी लंदन से। और आगे यहाँ मैसेज है वेस्ट मुंबई से, गुलाम हुसैन जी जुड़ चुके हैं गाने की फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि बेवफाओं की गलियों में वफा कहाँ मिलती है, वहाँ तो दर्द मिलता है दवा कहाँ मिलती है। और दुर्गेश जी है आजमगढ़ से, लिख रहे गुड आफ्टरनून सोनी मैम, और सॉन्ग है राम लखन मूवी का कोई भी चला दीजिएगा। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। आपके गाने की फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने शो की शुरुआत में ही बात की थी कि आज हम एचपीवीटी से जुड़ी आपके से बात करने वाले हैं, सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत। तो सवाल यहाँ हमारे पास पहुँच चुका है, और पहला सवाल हमारे पास है एचपीवी टीका आखिर किस लिए लगाया जाता है। तो एचपीवी टीका यानी ह्यूमन पेप्लिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो आगे चलकर कुछ गंभीर बीमारियों और खास तौर पर सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो एचपीवी टीका शरीर को इस वायरस से सुरक्षा देने में मदद करता है, इसलिए ये टीका भविष्य में होने वाले खतरे को कम करने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगाया जाता है। और उम्मीद है कि आप सभी को सवाल का जवाब आपको आसानी में समझ आ गया होगा आसानी से। तो अगर आप भी शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए कई सारे माध्यम हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कॉल है, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और बातें तो होती रहेंगी, सवालों के जवाब हम देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है कि जी हाँ सिहोरवा से हैं, और दिलीप राम जी है दिल्ली से। बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो है मुस्तफ़ा का सऊदी से, और लिख रहे हैं कि क्या हाल चाल है, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं, और गाने की फरमाइश है। तो चलिए अगली फरमाइश जो आपका प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM को।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।
6: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रंजन 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और अगर शो से आप भी जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए कई माध्यम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कॉल है, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और मैसेज है यहाँ जुड़ चुके हैं, गुड लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, और मैसेज करने वाले हैं कैफ मोबाइल गोंडा से जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फरमाइश के साथ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ और भी मैसेज है। इंदर देव जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि सोनी जी नमस्ते, नाइस सॉन्ग। और यूपी जौनपुर से जुड़े हुए हैं, गाने की फरमाइश के साथ बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी से, लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बस बहुत ही बढ़िया है सब कुछ। और चलिए अच्छी की बात है कि सब बढ़िया है, अच्छा ही है। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो है वेस्ट मुंबई से गुलाम हुसैन जी के, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। और लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेस्ट मुंबई से गुलाम हुसैन जी, और मुझे गाना सुनना है हाले दिल, और साथ में इनके हैं मौसम, कौसर, जुनेद, कमरान भाई, अरमान भाई, समीर भाई, नौशाद भाई, जयदीप, आयुष, प्रिंस, लकी, रुवीना, ब्यूटी, हीना, गुड़िया, साजदा और गुलशन, सबीना, यास्मीन, हीना, सभी के साथ गाने सुनना चाहते हैं। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है हाले दिल प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे गुलाम हुसैन जी वेस्ट मुंबई से। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज की बात है तो इन्होंने गाना सुन लिया और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही व्यस्त रहती हैं गोंडा एफएम में नहीं आती है। हाँ, और बढ़ेंगे आगे, यहाँ क्या मोबाइल गोंडा से है जी। हाँ, मैं थोड़ी आजकल बिजी हूँ इसलिए नहीं आ पा रही हूँ कहीं और पे। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज ये सोनी है बड़ी निराली, बातों में उनकी मिठास है प्याली, सब्जी वाले से मोल भाव करे जोरदार, सुनकर हंस पड़े पूरा बाजार, माइक मिले तो बातें बरसाए, चुप रहे रहने को कोई कहे तो मुस्कुराए, हंसी ठिठोली से महफिल सजाए, आज सोनी जहाँ जाए रंग जमाए। और इस मैसेज के साथ है प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से। और आप हमें ये बताइए कि आप मुझे मोल भाव करते हुए कब देखे हैं और कहाँ देखे हैं, जो आपने अपनी कविता में इस लाइन को शामिल किया है, और ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आज कॉल वाले लोग हैं वो लोग, आप लोग भैया हैं कहाँ, आप लोगों की कॉल आ नहीं रही है। कभी कभी आप लोग ऐसे गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और दुर्गेश जी है आजमगढ़ से और इनको सुनना है गाना राम लखन मूवी से, कोई भी गाना। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

और यहाँ दुर्गेश जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया, लिखा है मेरा गाना चलाने के धन्यवाद मैडम जी और सोनी मैम जी, आपकी आवाज बेस्ट है मैडम जी। और आगे यहाँ काफी सारे मैसेज है, लिखे है प्रमुख भैया का जबरदस्त कविता लिखे हो आपने और बहुत ही जबरदस्त मजा आ गया सुन करके, और इन्होंने भी गाने को काफी इंजॉय करे ये भी। और आगे यहाँ प्रमुख जी भी गाने को काफी इंजॉय करे, तो इंजॉय करिए गाने को, गाने की समाई से दुर्गेश जी की तरफ।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604-48652 पे।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकोरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
9: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज हैं। विमल कुमारी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि हाय नमस्ते मैम, कल मेरा फरमाइश पूरा नहीं की थी, आज कर दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है आज प्ले करेंगे। गाने के नाम एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए। और आगे लिखते हैं कि काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाब में गुजरा हुआ कल मिल जाए। लिख रहे हैं कि ये शायरी सुना दीजिएगा मैम। बिल्कुल प्ले कर सुना दी है आपकी शायरी और गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, लेकिन अपना गाना कौन सा है एक बार कंफर्म करिए। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय मैम, और नीरज तरिया जुड़े हुए हैं छापरा से। लिख रहे हैं कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं कि मौसम कैसा है उधर का, और मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, मैं मेरी भाजी है कुन्नू और मिलके शो सुन रहे हैं आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत। लिख रहे हैं कि यहाँ तो आज बहुत धूप है, और हमारे यहाँ भी आज काफ़ी धूप निकला हुआ है, कड़ाके वाली धूप। बाहर ऐसा लग रहा है कि निकलने के बाद आदमी ज़्यादा देर नहीं लगेगा काला होने में, इतना भयानक वाला धूप है। और गाने की फरमाइश है तो कंफर्म करिए कौन सा गाना है आपका। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ संजय यादव जुड़ चुके हैं कोलकाता से, लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड आफ्टरनून मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ प्राप्ति जी जुड़ चुकी हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी मेरा गाना नहीं बजेगा। बिल्कुल बजेगा, सबकी फरमाइश से प्ले करेंगे। यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो अगली फरमाइश जो है हम कॉल के माध्यम से लेंगे। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम में।
1: हम खारा से बोल रहे हैं, रामाजी प्रसाद
0: जी, क्या हाल चाल बा रामा जी?
1: हाल चाल ठीक बात
0: बा, कल के हम अभी आई नहीं बाहर से ही
1: बोल रहे बात सही है बा।
0: हाँ तो ज्यादा दूर पे थोड़े बानी सा।
1: तो गाना सुनवा दी
0: जी? बिल्कुल बता दी, कौन गाना सुनवा दी?
1: बुरकी पतर की रे महे गुलालवा जियरा उड़ी उड़ी जाए
0: जी। चलिए गाना प्ले करता नहीं क्योंकि सुनाऊ के बाद।
1: हाँ सुना सकते हैं, हमारे आज तो ये स्टार के मेहरारू ये सुनी और हम सुने जितना गाना सुनता लुटे जी सब कुछ सुनी।
0: चलिए एक बात बताएं कि रोगा सो में कॉल कैसे लगा, नहीं कि एक ही बार में लग जाना है?
1: नहीं अकेले ना लगला भाई, माने कि हम अपन प्यार कर रहे कि दूगो मेहंदी के बाद जब लागी लेने बैठी करे तब हम
0: ट्राई कर लेंगे।
1: हाँ
0: कहीं कि अभी देखनी है कि हम कॉल कोई और के रिसीव करे वाला रहनी है।
1: हाँ
0: और कॉल रिसीव करते हैं कट के राहुल कॉल आ गई।
1: हाँ।
0: और ऐसा हर बार होला जब राहुल कॉल हम रिसीव करनी, रिसीव करे वाला कोई और के रहनी, राहुल कॉल मेन टाइम पे ही पहुंचे ला एकदम कैसे।
1: तो वे नो खाली ना कॉल ने कि कह दे कि दामा जी कॉल करे लाग देला, तो हमने पर ध्यान से सुनी तो मैं बाद में कॉल करे तो एकदम तुरंत लग जाए।
0: ये तो बात बड़ले बा, लेकिन एमे कोन औरो राज भी बा, रो बताए के नहीं चाहत।
1: और कोनो राज तो नहीं है लेकिन तकनीकी बवार बा।
0: अच्छा अच्छा चलिए ठीक बात, तो गाना प्ले कर दे ले बनी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल के।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी कॉल के माध्यम से थावे से रामाजी प्रसाद की। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो आए, नमस्ते, नमस्कार मैडम जी, क्या हाल चाल है, और वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत आपका, नाम ज़रूर मेंशन करिए आप कौन है कहाँ से, और पहले भी आप मैसेज किए हुए हैं, नाम मेंशन नहीं है तो नाम ज़रूर बताइए। और शायद आप सनी जी हैं गोपालगंज से। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि रामाजी प्रसाद जी का ओल्ड सॉन्ग सुनाने के लिए दिल से धन्यवाद है। और लिख रहे हैं जैसा आपके पास टैलेंट है वही सही, रामा जी के प्रसाद भी टैलेंट है। और धनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से। बढ़ेंगे आगे, यहाँ आगे एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि क्या आवाज़ है आपकी, इसलिए देखना चाहते हैं मैम मुझे देखना चाहते हैं तो हमारे रेडियो रिमझिम के फेसबुक पेज पे हमारा फ़ोटो है, आप जाके देख सकते हैं हमारा क्या, सभी आरजे लोग का वहाँ फ़ोटो है, जितने भी हमारे यहाँ काम करते हैं जो भी कार्यकर्ता है सभी के फ़ोटो है, आप वहाँ देख सकते हैं। और आगे यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि एक हफ्ता बाद फरमाइश किया हूँ, सुना दीजिएगा बिल्कुल, और तेरी वफाई का शिकवा करूँ तो। गाने की फरमाइश के साथ है डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी, छपरा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गानों की फरमाइश जो है वो तो हम सुनते रहेंगे। और यहाँ अमोद कुशवाहा जी की तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं कि अपने पास मौजूद 3 शक्तिशाली साधनों को कभी ना भूले, प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। सो यहाँ बिल्कुल, और अगली फरमाइश से पहले एक और यहाँ

मैसेज है, लिखे हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सिखाई देगा। मजबूरियों का मतलब कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और मैसेज के साथ हैं मुस्तफ़ा जी सऊदी से, और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कैफ मोबाइल गोंडा यूपी से, और इनको सुनना है गाना, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। और शो की शुरुआत में जैसा कि हमने बात की थी कि हम आज बात करने वाले हैं आपकी फरमाइशों के साथ साथ, HPV टीका के बारे में, तो हमारे पास अगला सवाल पहुंच चुका है। और अगला सवाल है हमारे पास कि क्या HPV टीका जो है वो सुरक्षित है। तो जी हाँ, HPV टीका जो है वो सुरक्षित है। इस टीके का उपयोग दुनिया के कई देशों में वर्षों से किया जा रहा है, और लाखों किशोरियों को ये टीका लगाया जा चुका है। भारत में भी विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग की सलाह के अनुसार इसे दिया जा रहा है। और टीका लगाने के बाद कुछ लोगों को इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द, सूजन या फिर हल्का बुखार हो सकता है जो सामान्य है, और कुछ समय में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो साथियों, किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम की बातों की बजाय सही जानकारी पर भरोसा रखिए, और भरोसा करना बहुत ही ज़रूरी है सही बातों पे, और सही जानकारी जो है उसे ही सुनिए, बाकी जो अफवाह है उसे साइड करिए। और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश है कैफ मोबाइल गोंडा की तरफ से, बलमा कदर न जाने। तो चलिए अगली फरमाइश प्ले कर दी है आपकी, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रंजीम को।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ बातें चल रही है मेरे को देखने की, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि फेसबुक पर कैसे देखें मैम जी, और फेसबुक का लिंक भेज दीजिए। तो आप रेडियो रिमझिम सर्च करिए, रेडियो रिमझिम के फेसबुक पे आपको मिल जाएगा सभी आरजे का फोटो। और यहाँ दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि सोनी मैम ये भी बताइए कि उसमें आपको आपके पिक्चर को कैसे पहचाने, कौन सा है आपका पिक्चर। तो कुछ चीज़ें अगर राज रहे तो ही अच्छा है, तो ये काम आप लोगों का है कि उसमें से पहचानना, ये मेरा काम नहीं है कि मैं बताऊँ। और यहाँ कैफ मोबाइल गोंडा से है, लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम देश तो देश विदेश में भी बिछ गया है। जी हाँ, और ये रेडियो रिमझिम का 17 साल का मेहनत है जो कि देश तो देश और विदेश में भी बिछ गया है, और आप सभी का प्यार और समर्थन है जिसके वजह से ऐसा हो पाया। और आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ मैसेज है, प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं कि कौन है भैया जो आरजे सोनी जी को देखना चाहते हैं, खोपड़िया तोड़ देंगे बाबू, ये ख्याल अपना दिल से निकाल दीजिए। और मैसेज के साथ है प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि इतना भीड़ में पहचाने कैसे। और हमें पहचानने के लिए धन्यवाद, और मैसेज करने वाले हैं सनी जी गोपाल गेट से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़े। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बेशक तुम्हारे चाहने वाले बहुत है ये माना हमने, पर कोई तुम्हारी नफरत से भी मोहब्बत करे तो ये कहना हमसे। और सोनू कुमार जी है गौसिया से, लिख रहे हैं कि हमारा एक फरमाइश है पूरा कर दीजिएगा, और गाना है कितना हसीनी चेहरा, और इस गाने के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गाने की फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बलमा कदर न जाने सॉन्ग बजवाने वाले भाई को दिल से धन्यवाद है। सन्यासी रंजन बाबा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ वॉइस पहुँचा हुआ है, बिमल कुमारी हैं थावे से, और इनको सुनना है गाना, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: मेरी फरमाइशी है घर ही मंदिर बनाए तीर्थ करे न जाए, और ये गाना मैं अपने पापा को सुनाना चाहती हूँ, और सभी लोग सुनेंगे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाली थी विमल जी थाली से और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि समय और साबुन के अलावा जो चीज़ हाथ से फिसलती है वो है आम की गुठली। आम का मौसम आ गया है और सोचा आपको बता दूँ। मैसेज के साथ है सन्यासी रंजन बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना है बजा दीजिए। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे, आगे और भी मैसेज है, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं HPV टीका के बारे में और उससे जुड़ी कई अफवाह है, सवाल है तो उसके बारे में। और यहाँ अगला सवाल है, क्या HPV टीके का कोई बड़ा दुर्भाव क्या HPV टीके का कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो विशेषज्ञों के अनुसार HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और इससे गंभीर दुष्प्रभाव होने की संभावना बहुत कम होती है। कुछ लोगों को टीका लगने के बाद इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द, सूजन, लालिमा, थकान या हल्का बुखार महसूस हो सकता है जो सामान्य है और आमतौर पर थोड़ा समय में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर टीका लगने के बाद कोई असामान्य या फिर गंभीर परेशानी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें और सही जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह पर भरोसा करना बेहतर जरूरी है, बेहद ही ज़रूरी है। तो इस बात का ख्याल रखिए। और बढ़ते हैं आगे, आगे यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि तुझे देखने को ये दिल तरसता है, तुझे देखने को ये दिल तरसता है, एक तेरे इंतजार में ये दिल तड़पता है, कैसे समझाऊँ अपने इस नादान दिल को जो मेरा होकर सिर्फ तेरे लिए धड़कता है। हेलो हाय मैम, रोहित है देहरादून से और लिख रहे हैं कि मैं भी शो से जुड़ गया हूँ। बहुत बहुत स्वागत रोहित जी आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ सन्नी जी है गोपालगंज से और इनका कहना है कि प्रमुख जी को आपका बड़ा फिक्र है। भैया प्रमुख जी को ही नहीं, बाकी और भी लिसनर को मेरा फिक्र है। और आगे यहाँ मैसेज है, उमा शंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश है हमारे पास गाने की, हो गाने की फरमाइश से अंगूरी अंगूरी और गाने की फरमाइश करने वाले हैं लाल बाबू कुमार जी और इनका सुनना है गाना जानवर फिल्म से। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश प्ले कर दी है, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।
1: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी।

0: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी।
1: थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। मैं भूल गया था नाम देने के लिए, मेरा घर गोपालगंज मौजे तिरविरवा है। थैंक यू।
2: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97644।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रंजन 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज हैं हमारे पास। और यहाँ मैसेज है, प्रमुख जी है लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं कि देखने दिखाने के चक्कर में मत पड़िए भाई साहब, दिल की शादी की सबसे बड़ा किताब है। चेहरे की चमक तो वक्त के साथ ढल जाती है, अच्छी सोच और अपना भनी पहचान बन जाती है। आरजे सोनी जी कहती हैं कि इंसानियत को दिल में बसाइए, दिखावे से नहीं अपने कर्मों से रिश्ते निभाइए। और अभी अभी लिखा है मैंने ये कविता उन भाई साहब के लिए जो आरजे महोदय जी को देखना चाहते हैं, उनसे कहना है कि इंस्टा पर भी आरजे सोनी जी का फ़ोटो है, देख सकते हैं, वो सिर्फ मजाक था, दिल पर मत लीजिएगा दोस्तों। और जी हाँ बिल्कुल, और हमारे लिसनर इतने समझदार तो हैं कि मजाक समझते हैं। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है और अगली फरमाइश है, तो चलिए अगली फरमाइश देखते हैं कौन है, कहाँ से कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है, सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है हमारे पास। हेलो,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में। जी जी, कैसे हैं विमलेश जी?
1: अच्छे हैं, अपना बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं।
1: तो बहुत दिनों बाद करने हो गया था।
0: काफी दिन बाद आपसे बात हो रही है।
1: जी, गाना भी पूरा नहीं बज गया था, हम जो फरवरी किए थे।
0: कब योर वॉइस में
1: समय कर के वक्त आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समय कर टाइम हो गया था।
0: अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनवाया आपको। वह तो है, आज रिकॉर्डिंग हेलो माय चॉइस का भारती जी की है।
1: मैंने कॉल लगा नहीं
0: लगा होगा, हो सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो हुई है आज। जी, तो गाना कौन सा
1: है?
0: जी,
1: देवी जी का जो गाया हुआ नहीं है, बहे के पुरवारा में बहे वाला पछुआ, देवी की आवाज में गाना। वही सुनवा दीजिए।
0: चलिए, तो प्ले कर दिए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुने कॉल किए।
1: जी, रामा जी प्रसाद है थाना से, और करौलिया से मनोज शर्मा है, और मेघमाला जी है, गुड़िया जी है, सबको सुनवाना है और आप तो मैंने सुनवा करेंगे।
0: हाँ, हम तो सुनवे करेंगे जी। चलिए, तो आप भी सुनिए अपने गाने को। नमस्कार।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, विमलेश जी की फरमाइश थी जीवना से, काफ़ी बढ़िया देवी की आवाज़ में गाने की फरमाइश थी। और आगे बढ़ेंगे, आगे मैसेज है लिख रहे हैं कि जब आरजे सोनी जी रेडियो पर गाने सुनाती हैं, हर धुन में अपनी मिठास मिलाती है, उनकी मुस्कान जैसे सुबह की पहली किरण सुनने वालों के दिल में खुशियाँ जगाती है, आवाज़ में अपनापन चेहरे पर नूर होता है, हर गीत के साथ एक नया सुरूर होता है, जब मुस्कुराकर वो गानों का पैगाम देती है, रेडियो का हर पल बेहद मशहूर होता है। और इस मैसेज के साथ है लुधियाना पंजाब से प्रमुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी पानी पी लीजिए, गला सूख गया होगा। जी हाँ, और अभी अभी पानी पी के ही आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सब इतना ख्याल रखते हैं मेरा। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ राम कुमार पांडे जी हैं लंदन से, पता नहीं किस बात पे हंसे हैं, तो साथ में अपना बात भी लिख दिया करिए क्योंकि मुझे पता चले कि आप किस बात पे हंस रहे हैं। और एक बार फिर से गुड आफ्टरनून सोनी जी का मैसेज पहुंचा हुआ है, उमा शंकर मिश्रा है दिल्ली से। और बढ़ेंगे आज के अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले हम बात कर रहे हैं HPV टीका के बारे में। और HPV टीका से जुड़ी कई अफवाह सवाले हैं जिनका जवाब मैं दे रही हूँ। और हमारे पास अगला सवाल है कि क्या HPV टीका बच्चियों को ही क्यों लगवाया जा रहा है? तो HPV टीका संक्रमण जो होता है, HPV संक्रमण को आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का प्रमुख कारण बन सकता है, जो केवल महिलाओं में होती है, इसलिए बच्चियों को ही कम उम्र में संक्रमण के संपर्क में आने से पहले ही यह टीका लगाने से भविष्य में कई बीमारियों के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यही कारण है कि ये HPV टीका कार्यक्रम में बच्चियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो टीकाकरण का उद्देश्य है भविष्य में गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना। तो इससे जुड़ी कई अफवाहें हैं, आप अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए। अपने पास जो भी है, अपने एरिया का सदर अस्पताल है या फिर जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, GNM है, आशा बहन है, आप उनसे सही जानकारी लीजिए और सही जानकारी पे ही आगे बढ़िए। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है जी छपरा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी को, और उनको सुनना है गाना तेरी वफाई का सिकवा करो। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: वाह अवतार साहब वाह, मजा आ गया, बड़े गजब का शेर था।
1: लेकिन अवतार साहब एक बात समझ में नहीं आई, जिससे इज्जत शोहरत और किस्मत सब नहीं वफादारी की हो, उसकी जबान पर यह बेवफाई भरा शेर।
0: किसने की है बेवफाई आपसे, जरा हमें भी तो बताएं।

0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम मेरा गाना बजाने के लिए।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसटी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसटी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
11: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
10: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
11: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
10: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
12: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी बढ़िया मैसेज पहुँचा हुआ है अमित कुशवाहा जी के लिए। और मैसेज है, लिख रहे हैं कि डॉक्टर अमित कुशवाहा जी, भूल जाइए उस बेवफा का नाम जो छोड़कर गई आपको, देकर दर्द और इजाम, जिंदगी में फिर नई खुशियों का सवेरा आएगा, सच्चा प्यार एक दिन खुद चलकर आपके पास आएगा। मन खुश हो गया ये गाना सुनकर। और मैसेज करने वाले हैं लुधियाना पंजाब से प्रमोद जी। और बढ़ेंगे आगे, हाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बेटा, पापा सरकार जो ये नए नए कदम उठाती है इतने सारे, आखिर में रखती कहाँ है। तो यहाँ पापा का जवाब है, लिख रहे हैं कि मिडिल क्लास वालों की छाती पर। जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। और चाहे सरकार किसी की भी हो और कदम कोई भी उठाए, और बीच में पिस्ता मिडिल क्लास फैमिली ही है। और ये मैसेज है, सोनू कुमार जी जुड़े हुए हैं गौसिया से गाने की फरमाइश के साथ है, कितना हसीन चेहरा। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, लेकिन यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो अगली फरमाइश जो है कॉल के माध्यम से लेते हैं, फिर बात करेंगे व्हाट्सएप मैसेज की। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते मैडम जी, तो नवर पर ध्यान दे,
0: ध्यान बहुत बहुत स्वागत। नेहा जी कैसन बानी?
1: अच्छा बानी, आप बताए कैसन बानी?
0: हम भी बढ़िया बानी, का होत रहे अभी?
1: अरे आपके पास फोन लगा तो अभी लग गए।
0: चलिए लाग गए नो
1: जी।
0: तो गाना कौन सुनवा दी बता दी?
1: फूल और कांटा।
0: फूल और कांटा से कौन गाना?
1: धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना हाथ से गुजारे जाना।
0: और सुनाए के भी
1: सबसे पहले आपको जितना रेडियो मार्जे जब सुनते हैं सब के साथ।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे बानी
1: जी। मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल पे।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सभी गाना सुन रहे थे, नेहा जी थी बोरे से, उनके तरफ से फरमाइश थी। और यहाँ बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और मैसेज ये लिख रहे हैं कि मेरे साथ घटना वाकई हुआ है और भाई, और वो आने वाली नहीं है। रेडियो रिमझिम सुनकर अपना दर्द कम कर रहा हूँ। और मैसेज करने वाले हैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा, जेई छपरा, कुशनगर, उत्तर प्रदेश से। और यहाँ बढ़ेंगे आगे और भी सारे मैसेज है। और यहाँ लिख रहे हैं कि मैडम जी कल मेरा मैसेज पता नहीं कब पढ़ी है और मैं 3 बजे तक सुनता पर मेरा नाम नहीं आया। और सबसे पहले आपको गुड आफ्टरनून। और मैसेज करने वाले हैं तारकेश्वर माझी जी दुबई से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे लिख रहे हैं कि दिल जब टूटता है तो आवाज़ नहीं आती, दिल जब टूटता है तो आवाज़ नहीं आती, किसी को ये मोहब्बत रास नहीं आती, ये तो अपने अपने नसीब की बात है, कोई बोलता नहीं और किसी को याद नहीं आती। और काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ है। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नेहा जी की पसंद बहुत ही लाजवाब है। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि गाना सुनना है तुझ संग प्रीत लगाई, सुनना और सुनवाना चाहते हैं आपको, सन्यासी बाबा जी को, भारती जी को, मनोरमा जी को और सोनू जी को और सभी सुनने वालों को। और गाने के फरमाइश के साथ है सनी जी गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे, अगली फरमाइश आपकी रहेगी, बनी रही हमारे साथ में। और यहाँ और भी सारे गाने की फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। इंद्रदेव जी जुड़े हुए हैं यूपी जौनपुर से और उनको सुनना है गाना, तो चलिए प्ले करते हैं आपकी वॉइस, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है आपकी तरफ से।
1: सोनी जी नमस्कार, बहुत बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं इस समय।

और इंद्रदेव जी ना, आपके वॉइस में गाने का नाम है और जो गाना आपने लिख के सेंड किए हैं, जो गाना, वो गाना सर्च करने पे गाने का नाम नहीं बल्कि सिर्फ रील आ रहा है। तो अगर आपको गाना जो सुनना है उसको, उसका नाम जो है क्लियर लिख के भेजिए कौन सा सुनना है, या फिर वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए, हम आपके गाने की फरमाइश ज़रूर प्ले करेंगे। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, मैसेज है, लिख रहे हैं कि

0: लिख रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं मैम, ये टीका लगाने से बच्चा नहीं होगा बाद में जा करके। तो ये सवाल भी है, हम आपकी सवाल के भी जवाब देंगे। और ये टीका लगाने से माँ बनने में कोई भी जो है दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और ये सवाल है। मुन्ना जी हैं मुंबई से, तो HPV टीका जो है लगवाने से भविष्य में माँ बनने पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, और HPV टीका जो है लगवाने से माँ बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। दुनिया भर में हुए वैज्ञानिक के अध्ययनों से ये स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस टीके का प्रजनन क्षमता या फिर गर्भधारण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है। यह टीका केवल शरीर को HPV संक्रमण से सुरक्षा देने में मदद करता है। तो अफवाह और गलत जानकारियों से बचिए। किसी भी शक की स्थिति में डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य कर्मी से सही जानकारी जरूर लीजिए, फिर कुछ भी करिए। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ मैसेजर लिख रहे हैं कि और एक प्यारा सा सॉन्ग सुनवा दीजिए, मैं सऊदी अरब से जुड़ा हूँ, मेरा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल आपकी हाजिर लग चुकी है। और गुड्डू कुमार है लाइन बाजार से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करेंगे, वॉइस पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हरे कृष्णा, नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार लाइन बाजार गोपालगंज, अभी मैं सऊदी अरब से आपको सुन रहा हूँ, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए और एक प्यारा सा सॉन्ग सुना दीजिए। और गाना डेडिकेट सबसे पहले आपको और पूरे जिले वासियों को।
0: तो गुड्डू जी, आपने गाने की फरमाइश तो बताई ही नहीं, प्यारा सा सॉन्ग तो बहुत सारे होते हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434 6200042434।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक।

0: पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी 2:11 हो चुकी है और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है। और संजय कुमार जी हैं, लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम मेरा गाना बजाने के लिए, मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, ये टीका लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, मेरे परिवार में भी बच्चियाँ हैं और सबको ये टीका लगाया गया है। ये टीका प्राइवेट में उपलब्ध नहीं है, अगर सरकार के तरफ से लगवाया जा रहा है तो लगवा लीजिए, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। और मैसेज करने वाले हैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी, छपरा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। और यहाँ सनी जी हैं गोपालगंज से, लिख रहे हैं कि ये HPV टीका क्या होता है और क्यों लगता है। तो ये HPV टीका है जो कि सिर्फ किशोरियों को लगाया जा रहा है, 14 साल के बाद की जो भी लड़कियां हैं उन्हें लगाया जा रहा है। और ये टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी में होने वाली कैंसर से बचाव के लिए लगाया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं गुड्डू कुमार जी लाइन बाजार से, और इनको सुनना है गाना। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिया, आवाज पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। और इसी गाने के पार चलेंगे हम दोपहर समाचार की तरफ। तो आप सभी से मिलते हैं दोपहर समाचार के बाद, तो आप सब कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। बातों और मैसेजों का सिलसिला जारी रहेगा और साथ में सेहत से जुड़ी और भी कुछ जानकारी जो कि हम आप सभी के साथ साझा करेंगे। फिलहाल गुरुजी की फरमाइश एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं। जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24,00,000 रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
4: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। 1 महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
5: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
13: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
12: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
13: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर।

0: X और एक्सट्रीम 125R अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम,
2: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
6: क्यों, क्या हुआ है?
5: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
6: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
5: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:46 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप भी शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल। आप जिस माध्यम से चाहे शो में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 72-77-16-65-96 पे या फिर रेडियो रिमझिम के इंस्टा पे जाइए और डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने गाने की फरमाइश को सुनिए। और उसी के साथ बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा, मैंने भी जिंदगी को करीब से देखा है मेरे दोस्त, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता आंसू के सिवा। और मैसेज के साथ है दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब को इतना समय है रेडियो सुनने के लिए, और गाना सुना दीजिएगा सोनी जी। बिल्कुल सुनवा देंगे। और मैसेज करने वाले हैं सनी जी गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और गाने की फरमाइश है, लिख रहे हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी इंतज़ार ख़त्म हो चुकी है और आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुनिधि मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, दोस्त हैं मंगरू यादव, बलराम यादव और हरिंदर जी, पप्पू जी और मैं राकेश भारती बक्सर से, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और हाजिर की बात है तो बिल्कुल लग चुकी है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मुझे भी सॉन्ग सुनना है, सुनवा दीजिए। और निजामुद्दीन जी हैं सीतामढ़ी जिला से, बहुत बहुत स्वागत आपका और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है। और आगे यहाँ सगीर आलम अंसारी जुड़ चुके हैं तेजपुर आसाम से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पहुँचा हुआ है, संतोष कुमार पटेल जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लिख रहे हैं कि गाना सुनना है आज का अर्जुन से और चले आना पान की दुकान पे 3:30 तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल हम एंजॉय करेंगे। गाने की फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे सनी जी गोपालगंज से, और इनके तरफ से मैसेज है लिख रहे हैं कि धन्यवाद। और पढ़ेंगे आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है। और मैसेज है यहाँ शमशेर आलम जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत लिख रहे हैं, का हलवा बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ प्रमुख जी है लुधियाना पंजाब से लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून वंस अगेन डियर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और यहाँ इंद्रदेव जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ शमशेर जी की तरफ से भी मैसेज आ गया, हम ठीक हैं तो सब बताइए अभी क्या हो रहा है और कहाँ हैं। और बढ़ेंगे आगे, और गाना सुनना है तो बिल्कुल हम आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है तेजपुर असम से शगीर आलम अंसारी जी की। और जैसा कि हम बात कर रहे थे एचपीवी टीका के बारे में, तो आगे और भी जानकारी लेंगे और भी सवाल है जिसका जवाब हम देंगे। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँच चुका है तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है हमारे पास। हेलो
1: हेलो मैडम जी, प्रणाम
0: जी। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत रेडियो रंसी में।
1: हम नगेंद्र माझी उर्फ दयमान जी या घर पकौली बोदो आ ब्लॉक फुलवरिया से बोलता नहीं
0: जी, का हाल चाल बा?
1: ठीक बात मैडम जी। एक बार कहनी है कि उसका कॉल वाला भाई लोग कहाँ बालू, तो कहनी है कि रुकी तो नहीं, हम चढ़ाई करत रहे।
0: जी जी बिल्कुल।
1: ट्राई करे नहीं है दीदी बता वाला, तो ना हम अस्थिर हो जानी सुनबे करे नहीं ढेर ना ऐसी करे नहीं कि लगबे करो।
0: जी जी, मैंने कोशिश करत नहीं, कबो तो लग जाए
1: ना वो तो ना, अब रोबे को हमी तो हम कमी से रुके तो ट्राई कमी तो ट्राई कमी तो लाग हो,
0: लेकिन गाना चलत रहु
1: है भाई का, लाग हो है रामाजी भाई के।
0: जी जी, और कॉल करते ही रामाजी भाई के कॉल आए बजे।
1: जी बिल्कुल।

0: दुख सुख है का फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, दुख सुख है का फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मैडम जी
1: जी
0: हाँ सुनी ना, सबसे पहले रहुआ के सुनवाओ के चाहतनी, जितना लोग सुनता सब लोग के जानी
1: जी,
0: हम सुनत नहीं है, परिवार बात है सब लोग के साथ हम सुनने के चाहतनी।
1: चले ठीक बा,
0: बजाओ खातिर थैंक यू हनु, हम सुनत नहीं ठीक बा
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के नहीं,
0: ठीक बा, प्रणाम
1: प्रणाम।

यहाँ संजय यादव है दुबई से, लिख रहे हैं कि अच्छा गाना बा मैम भाई के, हाँ बहुत ही अच्छा गाने की फरमाइश। और यहाँ लकी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लिख रहे हैं कि सोनी मैम कैसी हैं आप, मेरा भी नाम, मेरा नाम लकी है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। लकी जी बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला

0: चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 894 18744।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 3:06 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और यहाँ फरमाइशों का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मुझे भी ये सॉन्ग सुनना है, सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। और अभी अभी यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली सारिया वार्ड नंबर 1 से, और गुड आफ्टरनून मैम, जुमा मुबारक बोल दीजिएगा सभी को हमारे तरफ से। बिल्कुल बोल दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुनिधि मेरे हरेंद्र जी आपके आवाज़ के तारीफ कर रहे हैं, और कुछ बोल दीजिए हरेंद्र जी को, मेरे साले साहब हैं। तो मैं क्या बोलूँ उनको, और मेरी आवाज़ इतना ही पसंद है अगर उनको तो शो में रोज आया करें, मुझे अच्छा लगेगा। और कोई गाने की फरमाइश हो तो भेज सकते हैं, मैं ज़रूर प्ले करूँगी। और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है मोहम्मद शमशेर अली जुड़े हुए, और उनको सुनना है गाना। और गाने की फरमाइश जो है वो मेरे पसंद का गाना है, और गाना है तू जो नहीं है। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इंजॉय करिए शमशेर जी, और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे मोहम्मद शमशेर अली जी, और इन्होंने गाना सुन लिए हैं और मैसेज भी कर दिए, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मैसेज है लक्की जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैडम जी और नाइस सिंगिंग। धनेश मिश्रा है दिल्ली से, लिख रहे हैं कि बहुत ही धीरे गा रही हैं मैम, आज लंच नहीं किए हैं क्या? बिल्कुल लंच किए हैं और धीरे गाने का कारण है कि आज मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, कल धूप में जा कर के कोल्ड ड्रिंक पी लिए थे जिसके वजह से वो कोल्ड ड्रिंक मुझे हजम नहीं हुई। और आगे यहाँ जावेद जी जुड़ चुके हैं पुणे महाराष्ट्र से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि तेरी यादों की चादर उड़े गाने के साथ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ काफ़ी सारे फरमाइश है तो बढ़ेंगे फरमाइशों की तरफ, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे HPV टीका के बारे में और उससे जुड़ी कुछ सवालों के बारे में। तभी हमारे पास अगला सवाल है और सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही जो बातें हैं वो सही है? तो जरूरी नहीं है कि मोबाइल या सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर जानकारी सही हो, कई बार अधूरी या गलत जानकारी भी तेजी से फैल जाती है जिससे लोगों के मन में भ्रम और डर पैदा हो सकता है। इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले डॉक्टर या फिर स्वास्थ्यकर्मी या स्वास्थ्य विभाग जैसे विश्वसनीय स्रोतों से उसकी पुष्टि करना बहुत जरूरी है। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने में आपकी मदद करेगी। तो सुनी सुनाई बातों या अफवाहों की बजाय सही और विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करिए और भरोसे के साथ जो भी है भरोसा करिए। और HPV टीका जो है, अगर आपके घर में भी 14 साल के ऊपर की जो भी लड़की है बच्चिया है उन्हें ज़रूर लगवाइए। राय लीजिए अपने पास के स्वास्थ्यकर्मी से, जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाइए या फिर आपके गांव में जो भी आशा है या फिर GNM है उनसे राय लीजिए और वो बताएंगे कि कब और कैसे टीका लगवाना है। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश मेरे पास पहुँचा हुआ है। निजामुद्दीन जी है समस्तीपुर से और इनको सुनना है गाना, तो कॉल तो पहुंचा हुआ था लेकिन कॉल रिसीव करने से पहले ही कट गया। तो चलिए निजामुद्दीन जी की फरमाइश प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए आप सभी रेडियो रिमझिम पे।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
2: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हैं। और मैसेज करने वाले हैं अहमद अली सारे वार्ड नंबर 1 से, तो बिल्कुल आपके भी कॉल रिसीव करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और मुझे नंबर पहचान में नहीं आ रहा है कि मैं कॉल रिसीव करूं। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ मैसेज है और भी, लिख रहे हैं कि सोनी मैम साइड का कोई दूसरा साउंड आ रहा है। हेलो, कौन का? ओहो, तो शायद भारती जी आई हुई थी, उन्हीं का आवाज़ होगा। और पता नहीं, साइड में तो फिलहाल मेरे पास कोई नहीं है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गा रही हैं। और मैसेज करने वाले हैं राम कुमार पांडे जी लंदन से। और आगे यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं थैंक्स निजामुद्दीन जी हैं समस्तीपुर से। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि साइड से मैडम जी आवाज़ बहुत खूब भालो लाग से। और मैसेज करने वाले हैं संजय कुमार जी कोलकाता से। तो संजय जी, मेरा आवाज़ भालो लग रहा है या फिर रेडियो सिग्नल जो है वो भालो है, ज़रूर बताइएगा। और बढ़ेंगे आगे, अगली फरमाइश जो है हमारे पास कॉल के माध्यम से पहुंचा हुआ है। यहाँ रोशन चौहान जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और पुणे महाराष्ट्र से MD जावेद जी है, आपकी भी फरमाइश है, प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, और समीर आलम है जुड़े हुए हैं, इनको भी सुनना है गाना, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। थोड़ा इंतज़ार करिए, यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है, तो चलिए अगली फरमाइश जो है कॉल के माध्यम से लेते हैं। कौन है, कहाँ से जानते हैं? हेलो, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: क्या हाल चाल है मैम?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम तो खिसियाई वाली काम रहते
0: हैं। मैं जी का है खिसियाई, बताए कौन दुश्मनी बा?
1: काहे न की कॉल कितना हम काल से परेशान बनी।
0: अरे राहुल, कॉल आवत अटे, हम भी देखा था नहीं कि कॉल पहुंचा था, लेकिन रिसीव करे के टाइम में रहे के चाहिए ना कॉल। अब क्या करे, प्रचार के टाइम हो गए रहे इसे, वो तो जरूरी बैठे हैं।
1: खाना वाना खाई नहीं है कि
0: ना? ना, खाना पीना हो गए।
1: हो गए ना? नहीं, हमारा परी से बात करी।
0: वालेकुम सलाम, नाम बता दी अपन? अच्छा, तब का हाल चल रहा अच्छा।
2: तो
0: अब बताए, शादी ब्याह हो जाए तो जहाँ शादी ब्याह हो गुजारा होला?
2: हाँ, तो गुजारा तो बनी तीन दिन के छुट्टी भेजा।
0: अच्छा, तो छुट्टी बात तो छुट्टी मनावे गए बनी लोग ना।
2: हमारे सिस्टर लोग आई बना तो
0: वालेकुम सलाम, का हाल चल बा? कभी हमनियों के याद करी शो में आके?
2: पहले आवत रहनी, अब नहीं की आवत।
0: का है?
2: अब मोबाइल फूट गई बा, अब दूसरा का मोबाइल से सुन लेनी।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक बा, जब मोबाइल हो जाए अपन तो फिर कॉल करें।
2: हाँ,
0: वैसे नाम बता दी?
2: हमारा नाम अनवारी खातून है।
0: अच्छा, तो गाना कौन सुने का?
2: राम तेरी गंगा मेरी पापियों के पाप धो दे,
0: टाइटल सॉन्ग। तो चलिए गाना प्ले कर दे ले बनी।
2: हाँ, ठीक
0: ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद रुबल बनी के समय कॉल के लिए।
2: ओके
0: ओके।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी अहमद अली जी की तरफ से और उनकी साली साहिबा थी, उनकी श्रीमती जी थी और इनके तरफ से मैसेज भी पहुंच गया। लिख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मैम गाना बजाए खातिर। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है और बाबा जी जुड़े हुए हैं सूरत से, नाम है इनका बाबा और गाना सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ और भी गाने की फरमाइश है हमारे पास और गाने की फरमाइश है तेरी यादों की चादर ओढ़े। एमडी जावेद जी हैं पुणे से और इनको सुनना है गाना, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। इन्जॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM को।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
2: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और संजय यादव है दुबई से लिख रहे हैं कि मैम आज बेस्ट वेट सॉन्ग बज रहा है जी हाँ, और अच्छे गाने बजने की क्रेडिट आप ही लोग को जाता है। और आप ही लोग अगर अच्छे गाने की फरमाइश करिएगा तभी अच्छे गाने बजेंगे, बाकी शो के बिना गाने बज रहे हैं वो अच्छे बजे या नहीं बजे, शो में अच्छे गाने बजे इसका क्रेडिट सिर्फ आप लोगों को जाता है। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास है समीर आलम जुड़े हुए और इनको सुनना है गाना, तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दें। नीलकमल की आवाज़ में है गाने की फरमाइश और लुट गई नी प्यार में, तो इन्जॉय करते हैं समीर जी की फरमाइश पे। नीलकमल की आवाज़ में ये काफ़ी बेहतरीन गाना है।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे समीर आलम जी की फरमाइश थी और सनी जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही गाना बांटे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैसेज है समीर जी की तरफ से, थैंक यू सो मच मैम गाना बजाने के लिए। और यहाँ संजय यादव जी हैं दुबई से लिख रहे हैं कि बाय बाय मैम। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं क्या बात है मैम गर्दा उड़ गया ऐसे ही गाते रहे बहुत ही अच्छा लगा। और आगे एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि प्यार ज्यादा होना बर्बादी का कारण है। उमा शंकर मिश्रा है दिल्ली से। और आगे यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि लुट गई नहीं बर्बाद हो गई नहीं रानी हो तोहरा प्यार में। नाइस सॉन्ग मैडम जी। और मैसेज करने वाले हैं नाम है इनका नाम मेंशन नहीं है। और दीपक जी जुड़े हुए हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत दीपक जी आपका। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ अगला सवाल हमारे पास पहुँचा हुआ है HPV के लिए और सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत हम बात कर रहे थे HPV टीका के बारे में। तो यहाँ अगला सवाल हमारे पास है और सवाल है कि HPV टीका कब और कहाँ लगेगा। तो भैया HPV टीकाकरण की व्यवस्था राज्य और जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय किया गया कार्यक्रम के अनुसार की जाती है। ये टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और कई स्थानों पर स्कूलों के माध्यम से भी लगाया जाता है। टीकाकरण की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए अपने नज़दीकी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका या फिर ANM या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। वो आपको सही समय पर और सही स्थान की जानकारी देंगे। तो ये रहे आज के HPV टीके से जुड़े आपके कई सवालों और उनके आसान जवाब। हमें उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से HPV टीके के बारे में आपकी शंकाएं कुछ हद तक दूर हो गई होगी और आपको सही जानकारी मिली होगी। तो याद रखिए सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए किसी भी तरह की भ्रम या अफवाहों से बचे और विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी और सही जानकारी पर ही भरोसा करिए। फिलहाल आज की जानकारी यहीं तक। सेहत सही लाभ कई के अभियान के अंतर्गत हम फिर मिलेंगे आप सभी से अगले एपिसोड में एक नए विषय पर नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी बने रहिए हमारे साथ योर वॉइस योर चॉइस शो में रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगला फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ मुस्तफ़ा जुड़ चुके हैं फिर से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और आइसक्रीम के साथ हैं तो भैया आज तो आइसक्रीम आप रहने ही दीजिए, क्योंकि कल का ही कोल्ड ड्रिंक मुझे ऐसा चढ़ा है कि सर्दी पकड़ लिया है, पता नहीं आइसक्रीम खाने के बाद क्या होगा। और यहाँ उमा शंकर मिश्रा जी हैं लिख रहे हैं कि गुड बाय मैडम जी नमस्कार। और आगे यहाँ मैसेज है एक और लिख रहे हैं कि और गाने की फरमाइश पहुंची हुई हमारे पास कॉल के माध्यम से। तो चलिए पहले बात करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से।
1: रागिनी। हाँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं रागिनी?
1: जादूपुर।
0: जी। क्या करती हैं रागिनी जी आप?
1: पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं?
1: एट
0: में। आपके बगल में रेडियो चल रहा है?
1: हाँ मैम।
0: उसको थोड़ा कम कर दीजिए।
1: बंद हो गया।
0: हो गया। तो गाना कौन सा सुनवा दे रागिनी जी आपको?
1: बानी गर्मी से तुम तुम मैं इतने याद है।
0: बानी गर्मी से
1: तुम तुम।
0: और गाना किसके आवाज में है?
1: मैं आवाज नहीं पता है।
0: आवाज नहीं पता है। गाना सुनिए आप।
1: हाँ मैम।
0: और गाना अच्छा है पूरा?
1: यस मैम।
0: चलिए तो गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: यस मैम, मेरे दीदी है निर्मला, लक्ष्मी, दीपरानी, अदिति।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दिए आपकी।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल की। एंजॉय करिए अपने गाने को।
2: तो कैसा होता हो बानी गर्मी से तंग तंग ना सूझे कोई ढंग ढंग बेना हकत बानी हो बेना हकत बानी।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी कॉल आया था हमारे पास रागनी जी का और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश थी मानी गर्मी से तंग तंग। और बढ़ेंगे आगे, गाने जो थे वो दो ही लाइन के थे और लेकिन गाने अच्छे थे। और यहाँ मैसेज है मुस्तफ़ा है सऊदी से लिख रहे हैं कि आज की जानकारी बहुत ही अच्छी थी और आप ऐसे ही जानकारी देते रहिए आगे भी। जी हाँ बिल्कुल। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि आज बहुत ही अच्छा सोच चल रहा है, ज़िंदगी की खूबसूरती इस बात से बात में नहीं है कि आप कितने खुश हैं बल्कि इसमें है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। जी हाँ बिल्कुल। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है हमने तुमको दिल ये दिया है गाने की फरमाइश के साथ है बाबा और इनको सुनना है गाना। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दें, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी ना पूछा कौन हो तुम। नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका रोहित जी है देहरादून से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ेंगे अगली गाना के, इंजॉय करते हैं रेडियो रिम सुनते हैं।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, फरमाइश पहुंची थी बाबा की और काफ़ी बढ़िया गाने की फरमाइश। बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ और समय इशारा कर रहा है शो से विदा लेने का समय हो चुका है। तो बिल्कुल और जाते जाते यहाँ प्राप्ति का फरमाइश पहुँचा हुआ है इंस्टाग्राम पे और इनको सुनना है गाना खेसारी लाल की आवाज़ में। तो चलिए आज की आखिरी फरमाइश प्ले कर रहे हैं और इसी फरमाइश के साथ आप सभी दीजिए आज के इस शो से मुझे जाने की इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल। और यहाँ कई सारे मैसेज पहुँचे हुए, लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि हमने भी ये गाना सुन लिया है पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन हूँ मैं। और मैं हूँ रेडियो रिमझिम फैन। और अनिल जी हैं छोटपुर से और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि किसको दिल दे दिया है। और सनी जी हैं गोपालगंज से, तो ये भी ना पूछो या अभी मत पूछिए कि कौन है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम कोल्ड ड्रिंक मत पीना, वो पीने की चीज़ नहीं और सर्दी हो जाए तो सब बेकार हो जाएगा। बाय बाय सोनी मैम। और कोल्ड ड्रिंक मैं पीती नहीं हूँ, मुझे कोई पैसा दे के पिलाए मैं तभी ना पीऊँ। लेकिन वहाँ बात ही ऐसी आ गई बात कि पीना पड़ा और ज़्यादा नहीं पिए थे, बस एक गिलास होता है वो डिस्पोजल होता है, बस उसमें एक गिलास पिए थे, वही मेरे को ले डूबा है, क्या करें। और यहाँ अनिल जी की तरफ से भी मैसेज है बाय बाय का। मुस्तफ़ा जी है सऊदी से, इनकी तरफ से भी पहुँच गया बाय बाय। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले कार्यक्रम में, तब तक लिए दीजिए इजाज़त और इंजॉय करिए प्राप्ति जी की फरमाइश रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। नमस्कार।

0: और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
2: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 9993965930।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
8: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
9: जानकारी के लिए कॉल करें 9955-94-94-53
7: और 9097-61-60-02।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: प्राणी यह सांसारिक जीवन में उलझ करके काम क्रोध मद लोभ अहंकार में पड़ के असली धन के गंवा देता और अंतिम समय में पछतावता। कैसे बड़ा ही सुंदर कल्पना बा
1: कि सब धन सियारा खाइले

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क 99393965930।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797186164।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
6: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
7: उत्तर बिहार का गौरव,
8: सारण प्रमंडल की शान,
7: गोपालगंज की धड़कन
8: और अपने भाषा की पहचान,
7: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: सुनो दे...

0: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0096-575।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।
11: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
8: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
7: और 9097160602।
10: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
11: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
10: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
12: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
13: Now pick your phone up.
14: Hello?
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello?
13: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी, हम सुनना चाहते हैं गाना।
2: जी, गाना सुनाएंगे, नाम बता दें अपना।
1: शिवधारी माझी, ग्राम चाणी, पोस्ट सिकंदरपुर, थाना जीवी नगर, तरवारा।
2: अच्छा, और सब बताइए, क्या हाल है आपका?
1: बहुत अच्छा है जी।
2: तो मौसम उधर का कैसा है?
1: मौसम तो थोड़ा मतलब खास नहीं है, फिर भी ठीक है
2: जी। भोजन हो गया है आपका?
1: जी, हम तो अभी थोड़ा मजदूर आदमी है तो कोटा वोटा जो कर आते हैं, और फिर यहाँ से दुकानदारी में लगेंगे, ब्रेड पकौड़ा, आलू चप, अंडा चप का, तो भोजन करके आए हैं। अभी यहाँ जो है थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं
2: जी।
1: तो हम कहे कि थोड़ा आप लोग मतलब जो है इतना रिक्वेस्ट है कि गाना सुना दीजिए अथी का, गंगा किनारे मोरा गाँव का। कहे के तो सब केहू अपन अपन कहा वाला के बा, तो बहुत मेहरबानी होगी आपका।
2: जी जी, गाना आपका बजाया जाएगा, बिल्कुल बजाया जाएगा।
1: और अपना सुनाइए, आप नाश्ता वास्ता कर लिए, भोजन कर लिए?
2: हाँ हाँ, बिल्कुल कर लिए हैं।
1: चलिए ठीक है जी। और ये स्कूटर है ना, उसका भी वही हमको दिया था नंबर सिकंदरपुर का, तो मैं कहा कि थोड़ा सेव कर दो और लगा कर बात करेंगे। तो पहले साल दो साल पहले बात करते थे, कितना बार लगाए, पान का दुकान भी है। अभी तो अच्छा समय है, मौसम भी अच्छा है, तो इसलिए मैं कहा कि थोड़ा लगाता हूँ नंबर।
2: जी
1: जी, तो कितने बजे मैं इंतजार करूँगा?
2: जी, आज तो मतलब जो पहले का रिकॉर्डिंग है वो बजेगा
1: जी।
2: आपको ये गाना कल या परसों मिल जाएगा सुनने को, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक।
1: जी जी, तो हम तो अपना दुकानदारी में लगा रहता है, गाना बजा कर सुनते रहेंगे
2: जी। और सुबह में 9 बजे से 11 बजे तक बजता है।
1: ठीक है, थैंक यू।
2: ओके, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके, थैंक्स।

0: हेलो।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगभूमि के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: हाँ, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
0: मैम, हाई गाना बजाने के लिए फोन किए थे।
1: जी, गाना बजा देंगे, नाम बता दें।
0: मेरा नाम है सुनीता कुमारी।
1: कहाँ से?
0: हरियापुर से है। गुरुदेव प्रणाम आपको चरणों में, चारों तीर्थ धाम आपको चरणों में।
1: अच्छा, ओके, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ।
0: थैंक यू।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
10: Now pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: सलामुअलैकुम।
14: वालेकुम अस्सलाम।
15: क्या कर रहे हो सर?
14: कुछ ना, बस आपसे बात कर रहे हैं।
15: हाँ।
14: सब हाल चाल बताएं, अपन कैसे?
15: हाँ, सब हाल चाल ठीक है सर। आप बज कर रेडियो बजा रहे हैं?
14: अच्छा। बढ़िया है।
15: हाँ।
14: तबीयत ठीक बनो?
15: तबीयत ठीक है, करीब करीब ठीक है। आज तो बहुत पहले लग गया हमारा
14: जी आपका फर्स्ट कॉल है आपका।
15: हाँ फर्स्ट कॉल है। ठीक है सर, शाम को गाना सुना दीजिए।
14: बताइए।
15: फिल्म पालकी का है, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, अब सर तरह रहे थे लेकिन बात को
14: जी।
15: हाँ उसको सुना दीजिए।
14: और ये गाना किसी को सुनाना भी है?
15: हाँ पहले तो आपको, उसके बाद पूरे टीम जहाँ तक है वहाँ सबको। ये गाना तो सबको पसंद नहीं आएगी
14: लेकिन जरूर आएगी, बहुत सारे
15: पुराना, बहुत पुराना गाना है।
14: नहीं नहीं इसमें पुराने लिसनर भी हैं, बहुत सारे पुराने गाने भी सुनते हैं।
15: ठीक है सर।
14: ठीक है गाना फिर करते हैं, सुनते रहिए रिमझिम 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: आपको हम सुनील बोल रहे हैं?
1: नहीं।
0: अच्छा, भारतीय रेडियो।
1: हाँ,
0: क्या हाल है?
1: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
0: आज मालूम पड़ा कि मेरे पहला कॉल है,
1: आपका दूसरा कॉल है। हाल चाल बताइए, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल बढ़िया है, बिंजा विकास बेटर, बहुत बढ़िया, चंगा विकास। आप कैसे?
1: हम भी बढ़िया है।
0: भारतीय जी, और सब सुनाइए। ठीक है, आपका आवाज बहुत मधुर।
1: बताइए, आज क्या फरमाइश है आपकी?
0: आपका खाना पीना हो गया?
1: मेरा खाना हो गया, आपका हो गया?
0: अभी हम भी खाए थे,
1: तो
0: खाते हैं, गर्मी का दिन है, खाए नहीं जाए, है कि नहीं? चलिए, तो आप बढ़िया से रहिए, आपका आवाज सुनने के लिए हम आप रहते हैं। पहचान लीजिए क्या?
1: जी जी, तो गाना भी बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: जी,
1: गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: सुना दीजिए रोमांटिक गाना कोई। एक गाना है, मैं तुझे पागल कर दूंगा तेरे प्यार में।
1: अच्छा, हाँ,
0: गाना है ना, अच्छा सा गाना है। यही गीत सुनना है और आपको सुनाना है, और जितने भी हमारे स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं सारे को सुनाना है।
1: और सब आप ठीक हैं?
0: हम तो ठीक ही हैं। ठीक है, फिर बात करते रहिएगा।
1: ओके
0: जी,
1: फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
14: हाँ जी मैम, नमस्कार।
15: नमस्कार,
14: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गोना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ा बोल रहा हूँ मैम।
15: जी क्या हाल है आपका?
14: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
15: मैं भी हूँ। मौसम कैसा है उधर का?
14: हमारा गुना MP का अच्छा मौसम है अभी, तो अच्छा है।
15: अच्छा जी, बढ़िया है। फिर इधर तो मौसम अभी गर्मी पड़ रही है।
14: जी मैम, इतने भी पड़ रही है गर्मी, तो अभी जब भी बारिश हो गई थी 2-4 दिन पहले।
15: तो खाना पीना हो गया है?
14: जी मैम।
15: बढ़िया, बताइए क्या फरमाइश है आपकी।
14: आज मुझे वो उसका गीत सुनना चाहता हूँ मैं, खुदा गवाह का।
15: कौन सा सॉन्ग?
14: खुदा गवाह प्लम का।
15: हाँ उसी में का कौन सा सॉन्ग?
14: उसमें एक गीत है रब को याद करूं, एक पद याद करूं, पिछड़ा याद मिला दी ओ रब्बा।
15: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
14: जी हम ही सुनना चाहते हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे।
15: अच्छा जी,
14: गोपाल ओझा जी हैं और सुनील साहू जी हैं, गजराज सिंह लोधी हैं, अमर सिंह भील हैं।
15: और सब बढ़िया है ना?
14: जी जी बढ़िया है मैम।
15: ओके चलिए गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
14: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। वालेकुम अस्सलाम
1: जी, मुझे गाना
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: नाम हुसैन वस्तु मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या हाल है आपका?
1: मेरा हाल सही, आप बताइए। आप
0: मैं भी ठीक हूँ
1: जी। मैम मुझे गाना
0: बताइए आपका। ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: सुनाना चाहते हैं सबसे आप कौशल इमरान भाई, जगती भाई, बरसा भाई, कांति जी, रोशनी जी, सबीना जी, सबनम जी, गुड़िया जी, क्या जी, सभी को सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ गाने। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
3: और 90971602।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
12: कॉल करें 87894 18744।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
14: Now pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो,
19: सलाम अलैकुम।
18: वालेकुम अस्सलाम।
19: मैं हूँ किस्मत बोल रहा हूँ
18: जी, क्या हाल है आपका?
19: ठीक बाबू, तुम लोग ठीक बढ़ो ना?
18: हाँ, हम तब भी ठीक बानी।
19: घर में सब लोग ठीक बनो?
18: हाँ, सब कुछ ठीक बा। आपके यहाँ सब कुछ ठीक बनो?
19: हाँ, सब ठीक हो।
18: भोजन कर लो नी?
19: हाँ अभी मेरा एक बजे नमाज पढ़ के खा है।
18: अच्छा चले ठीक बात ठीक बानो।
19: हाँ सब ठीक है। सुना दियो कव्वाली पढ़ी है।
18: बताए कौन सा कव्वाली सुने?
19: कौन कुरान अपना मन से सुना दियो।
18: आपन पसंद ना बता दो।
19: हमारे पसंद कोई बात ऐसे बात निकाह फिल्म के सुना दियो।
18: निकाह अच्छा चलिए ठीक बा। और गाना क्यों के सुना हो
19: केकरा के लाखों आदमी सुने ले।
18: अच्छा जी हाँ
19: सुने खातिर तो सब सुने ला।
18: चलिए फिर ठीक बा गाना प्ले कर सुनत रही रेडियो रंजन।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: अस्सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: वालेकुम।
1: जी मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
0: हाँ जी ठीक है।
1: तो क्या हो रहा है अभी? अच्छा,
0: कुछ नहीं, मैम गेहूं का सारे वही बैठे हैं, फोन लगा रहे हैं,
1: धूप नहीं लग रहा है? अच्छा
0: साइड में बैठे हुए हैं। क्या आएगा,
1: जी।
0: धूप तो उग रहा है बहुत, दिन बहुत खराब हो रहा है।
1: भोजन
0: आपका हो
1: भी?
0: गया मैम?
1: हाँ, मेरा हो गया। आपका?
0: हम लोग भी हो गया।
1: बढ़िया। तो सब कुछ कैसा है? सब कुछ ठीक है ना?
0: सब कुछ ठीक है, अपना बताइए। गाना
1: जी, हम सब भी ठीक है। बता
0: सुना दीजिए।
1: दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
0: हिंदी गाना नहीं, अभिषेक बच्चन का हम मैंने भी प्यार किए हैं, वही वाला बजा दीजिएगा।
1: ओके। और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है? अच्छा
0: नहीं जी, हम लोग है देहाती, सब वही लोग सुनते हैं, अभी तो बाज ही रहे हैं रेडियो।
1: जी, चलिए।
0: आप सुन लीजिएगा।
1: बिल्कुल, चलिए फिर, ठीक है। गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59 536 या 9656 57 902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 06 575।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हाँ जी नमस्कार, मैं लाल बाबू सिंह बात कर रहा हूँ।
16: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: जी, गीत सुनना चाहते हैं।
16: जी बताइए कौन सा गीत।
15: का नाम है बेटी ससुरा में रही है तू चांद बन के, आवे कतनो अनहरी तूफान बन के।
16: अच्छा
15: जी, पुराना सॉन्ग है।
16: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
15: जी, सभी रेडियो रिमझिम के श्रोतागण को।
16: ओके, तो और सब बताइए क्या हाल है आपका?
15: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजे में कट रहा है।
16: अच्छा जी, उधर का मौसम कैसा है?
15: मौसम भी ठीक ठाक है, वही धूप टाइट कर रखा है। हम अभी आंध्र प्रदेश में है, गाँव में नहीं है। जी, तो मौसम टाइट है, धूप खिला हुआ है बहुत ज्यादा।
16: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ।
15: जी,
16: रिमझिम कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
15: धन्यवाद।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: गोपाल ओझा बोल रहा हूँ ग्राम कठवासा जिला गुना से।
0: जी, क्या हाल है आपका?
1: गाना सुनना है।
0: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: दिल फिल्म का सुनना है, मुझे नींद ना आए, मुझे सियान ना आए, कोई जाए जरा रूल के लाए, ना जाने कहाँ दिल को आए।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: डेडिकेट है ना मैडम जी।
0: बता दीजिए।
1: हमें मांगीलाल धाकड़ जी हैं, मांगीलाल चंदेल हैं, सुनील साहू जी हैं, ज्योति साहू जी हैं, इनके लिए।
0: अच्छा, तो और सब बताइए क्या हाल है?
1: बढ़िया है, अभी तो धूप पड़ रही है तो घर पर ही हैं अभी तो।
0: चलिए ठीक है, तब धूप से बच के रहिए,
1: घर पर ही हैं अभी तो।
0: ओके, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक

0: की द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22567 या 97-7-14-86-164।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। नमस्ते।
10: हेलो, मैं बोला सोनू मोड से।
9: क्या हाल है आपका?
10: ठीक है, अपना बताइए।
9: मेरा भी बढ़िया है। तो खाना हो गया आपका?
10: हाँ, खाना खा लिया, खा लिया।
9: और सब ठीक है ना?
10: हाँ, सब ठीक है।
9: बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
10: अगर नहीं है कोई गाना सुना है।
9: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहती हैं?
10: आपको और सारे लिटिल लव को, अभी मेरे घर वाला है उनको।
9: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: बहुत देर से लगा रहे हैं जी, नंबर लग ही नहीं रहा है, बिजी जा रहा
0: है। अच्छा जी, हाँ आज कॉल बहुत ज्यादा ही है।
1: सोमवार को भी लगाए थे। तो गाना सुनना है हमको।
0: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
1: तो गाना हमको सुनना है गोलू राजा का गाना, कोई भी
0: आप अपने पसंद बता दीजिए।
1: नहीं, अपने गोलू राजा का ही बता सुना दीजिए।
0: उनका कोई भी सॉन्ग?
1: हाँ जी,
0: उनका कोई भी सॉन्ग।
1: हाँ जी, अच्छा होकर गाना।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रह सबके साथ रेडियो। कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
2: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
11: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
12: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
11: तो देर मत कीजिए,
12: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: धन्यवाद मैडम।
14: तो प्रीति जी।
15: हाँ मैडम, क्या दृष्टि ने कहा? क्या होता?
14: कुछ ना, बस आपसे बात होता। बताएं क्या हाल चल बा?
15: ठीक है।
14: और ये सब ठीक बा?
15: हाँ।
14: कौन सा गाना सुने बता दी?
15: हमारा उरावजे सुन के खुश हो गए। अपना मन से बजा दे हमको ना। अच्छा,
14: अपन पसंद बताए ना।
15: भोजपुरी गाना बजा दे।
14: ठीक भाई, गाने को सुना हो के बा?
15: रोगा के सोनी में डब्बे।
14: ठीक, बगाना प्ले करते नहीं सुना कहीं सबके साथ। रेडियो रूम जी में कॉल करे और बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: मैं
1: नमस्कार
0: सुबीर कॉल बोल रहा हूँ, कोरिजमा जिला देवघर झारखंड से। मैम
1: जी जी क्या हाल है आपका?
0: आजकल ठीक है मैम, बहुत बहुत काफी तेज गर्मी है मैम। आपके यहाँ?
1: मेरे यहाँ भी वही हाल है
0: जी, लगभग 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान।
1: अच्छा जी, तो गर्मी में पानी पीते रहिए, धूप से बच के रहिए।
0: जी, वो तो पानी पीते रहते हैं।
1: और सब बढ़िया है ना?
0: हाँ सब ठीक है मैम। आप लोग कैसे हैं मैम? आप कैसे हैं?
1: हम सब भी ठीक हैं। तो बताइए क्या फरमाइश है आज?
0: आज गाना सुना दीजिए मैम, शिल्पी राज की आवाज में भोजपुरी गाना।
1: गाने
0: दिलवा ले गीत के बोल हैं, दिलवा ले गई राजा बोतल वहाँ भर के।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: सबसे पहले मैम आपको मैं सुनूंगा, आप सुनेंगे, और जितने भी रेडियो रंजीम के प्यारे प्यारे श्रोतागण हैं देश विदेश में, सब सबको सुनेंगे।
1: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजीम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
9: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
10: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
11: Now pick your phone up.
12: Hello?
11: Pick it up.
12: Hello?
11: Now pick your phone up.
12: Hello?
13: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
16: भारती जी?
15: हाँ,
16: भारती बोल रहे हैं
15: जी। क्या हाल है? तो क्या हो रहा है अभी?
16: वही एक हफ्ते फोन लगा रहा है, व्यस्त है, व्यस्त है, कर रहा है।
15: अच्छा जी,
16: बहुत स्ट्रेस किया तब लगा अभी।
15: तो बताइए, भोजन हो गया? बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है? कौन सा सॉन्ग उनका?
16: कमल सिंह का कोई भी काम का गाना सुना देंगे।
15: अच्छा, ओके। और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
16: देखिए, पूरा अपना फैमिली सब है, भाई आप है, पूरा रेडियो सुनता
15: है सब। ओके, और सब बढ़िया है ना?
16: हाँ जी, सब बढ़िया
15: है। चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रमजिम 90.4 FM।
16: ओके।

0: हेलो मैडम
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: जी आपको भी साथ में स्वागत है। 11 बज के कितना मिनट हो गया?
1: 13 मिनट।
0: 13 मिनट 11:01 से लगा रहे थे।
1: हाँ,
0: अभी 12 मिनट मेरा लॉस हो गया, बताइए। चलिए, मैं मनान बोल रहा हूँ कपरपुरा से।
1: कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और आप कैसे हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
0: चलिए, उम्मीद है ऊपर वाले से दुआ रहे कि आप भी बढ़िया रहे। तो आप इसी बढ़िया बढ़िया पे जो है एक गाना हमको सुना दीजिए। कौन सा गाना? जो गाना है ना, तुम बंसी बजाते हो।
1: हाँ हाँ,
0: तो ऐसा एक गाना वो सुना दीजिएगा।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: मेरा ये शादी पोता है मेरा, है ना?
1: हाँ,
0: अब शादी पोते को सुनवाना। देखिए, मेरे कुर्सी के बाजू में चुप के कर्म से चुप गया है। मैं इधर परमाई कर रहा हूँ, उधर चुप कर सुन रहा है। सुनवाना दीजिएगा मैडम, नतीजे हमको परेशान करेगा ये।
1: जी जी बिल्कुल, गाना प्ले करते हो, सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ओके, थैंक यू मैडम।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: नमस्ते मैडम जी।
11: नमस्ते,
12: कैसे हैं मैडम जी?
11: मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
12: अच्छा है, बहुत गर्म पड़ता है।
11: हाँ, मौसम तो गर्म है, अभी बहुत धूप निकला हुआ है।
12: जी, नेहा बोल रहे हैं भोरे।
11: हाँ जी, तो और बताइए क्या हाल है?
12: हाल ठीक है।
11: क्या हो रहा है अभी?
12: अभी आपके पास फोन लगा रहे, कवर लगाए दीजिए, बताते हैं तब फिर रख दिया। फिर लास्ट में लगाए थे।
11: और सब बताइए क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है?
12: अब सब काम रोक कर आपको पास फोन लगा रहे हैं, तो लग जाए फोन तब उसके बाद से काम करेंगे।
11: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए अपनी फरमाइश आज।
12: फरमाइश बेटा फिल्म का।
11: कौन सा सॉन्ग?
12: कोयल से तेरे बोले।
11: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहती है?
12: आपको, जितना रेडियो रेडियो RJ सब दोस्त सुनते हैं, सोता सबके साथ।
11: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
12: जी। मैडम जी नमस्ते।
11: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी मैडम सुनील साहू बोल रहा हूँ।
0: जी क्या हाल है आपका?
1: बस आपके सुन रहे हैं।
0: अच्छा तो क्या हो रहा है अभी?
1: जी दीदी अभी तो धूप पड़ रही है बहुत सारी।
0: हेलो
1: गर्मी से बेहाल है मैम जी।
0: अच्छा जी
1: जी
0: गर्मी तो सबको बेहाल कर ही रही है। भोजन हो गया आपका?
1: हाँ जी हो गया है ना।
0: हाँ हाँ मेरा भी हो गया है। बता दीजिए क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: अम्मी बहन जी पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं है, शायद एल्बम का गाना है। सोनू निगम जी की आवाज में मोहम्मद ये दुनिया को कुछ नहीं देने वाली मोहम्मद के दर पे चला जा सवाल।
0: ओके और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: जी सबसे पहले तो मैडम जी आप सुनाना है और हमारे मित्र हैं मांगीलाल पड़ा गाँव से, मांगीलाल सनोतिया है और गोपाल ओझा है ककवासा से और गजराज सिंह लोधी है रेलाई से।
0: अच्छा जी रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा, मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 917।

0: सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
2: एपिसोड 27 27।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे, उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
12: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
13: एपिसोड 28 2-8।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो।
2: प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भारत के साथ साथ बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। बेगूसराय जिले के पखट्टा स्थित एनएच 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत। 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम, 2 लोगों की गिरफ्तारी, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुरू हो जाएगी मॉनसून की बारिश। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है, जो जनता के विश्वास का प्रमाण है। श्री चौधरी मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पटना में आयोजित मीडिया संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: आज लगभग 12 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हुए हैं साथियों, और 12 साल के इतिहास में मैं सर्वप्रथम उनको बधाई भी देता हूं कि आज इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में जब से आजादी मिली और लोकतंत्र स्थापित हुआ 1952 में, तब से सबसे लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री के पद पर रहे हो, इसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं।
2: श्री चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त करना भाजपा की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा किया गया। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना भी पूरा हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। राज्य को विभिन्न मदों में 12,90,000 करोड़ रुपए की सहायता और आवंटन मिला। श्री चौधरी ने बताया कि राजगीर और मुंगेर में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की योजना है, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक वर्ष में 5,00,000 करोड़ रुपए निजी निवेश का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में लगातार प्रगति हो रही है।
3: बिहार में उद्योग लग रहे हैं और आगे के दिनों में लक्ष्य है कि हर हालत में 20 नवंबर को जब एनडीए सरकार का 1 साल पूरा होगा तो लगभग 5,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारने का काम, इसकी व्यवस्था पर हम लोग चिंता कर।
2: राज्य के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मुद्दे पर श्री चौधरी ने कहा कि वित्तीय स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार नियोजित तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक विक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। केंद्र सरकार ने प्याज के खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में देर रात चार पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने के चलते हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि मधेपुरा जिले के अरार थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, बेलारी थानाध्यक्ष नीरज कुमार तथा रतवारा थानाध्यक्ष राजन कुमार और कार चालक की मौत हो गई। सभी पुलिसकर्मी पटना से वापस लौट रहे थे।
1: देर रात ये एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें 3 पुलिस ऑफिसर्स मधेपुरा पुलिस के सर्विंग SHOs और एक जो ड्राइवर थे इस गाड़ी से लौट रहे थे, उसका एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत हाईवे पे। उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। गाड़ी पटना से होते ही मतलब मधेपुरा की तरफ जा रही।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में 3 थानाध्यक्षों समेत 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ है। बेगूसराय में 14 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश नाकाम हुई है। तकनीकी शाखा और पकड़ी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए परीक्षा में सेटिंग कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि छापेमारी कर आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश रोशन और दुलार चंद यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ डिवाइस लगा चप्पल, मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, चार्जर तथा कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र समेत अन्य उपकरण जब्त किए हैं। इससे पहले बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में भी धांधली और अवैध लाभ पहुंचाने के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में मुंगेर और अरवल से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय थाना की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनु कुमारी ने बताया कि धांधली और साइबर गैंग की संलिप्तता की जांच की जा रही है।
2: कुल 10 अभ्यर्थी को अरवल एवं मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें उपस्थापित किया जा रहा है। अभी तक इस कांड में कुल 88 अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ जो है वो स्कॉलर है, कुछ जो है वो अभ्यर्थी है, उन सबका सत्यापन किया जा रहा है।
0: मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में पिछले दिनों हुए भीषण अग्निकांड मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में कई अनियमितता सामने आई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजा है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। दुनिया भर में बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है बाल मजदूरी को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बाल श्रम मुक्त बिहार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू हो जाएगी। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार जिले में भारी बारिश हुई है। जिले के प्राणपुर में सबसे अधिक 82.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
3: राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के जिलों एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
0: राजधानी पटना में बिहार इंटरवेंशनल काउंसिल का चौथा वार्षिक अधिवेशन कल से शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय इस अधिवेशन में देश विदेश के कई जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। भोजपुर जिले के धनगाई थाना क्षेत्र अंतर्गत महोरही ओवरब्रिज के पास से उत्पाद विभाग और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने एक ट्रक से 1,35,00,000 रूपये मूल्य की शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भारत के साथ साथ बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। बेगूसराय जिले के बखड्डा स्थित NH 31 पर सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के 3 थाना प्रभारियों समेत 4 लोगों की मौत। 14 जून को होने वाली मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। 2 लोगों की गिरफ्तारी, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में शुरू हो जाएगी मॉनसून की बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
13: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
14: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
13: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
14: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
11: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
14: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
11: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
14: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
11: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
15: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
16: रेडियो रमजम,
15: सुनो दिल से।
17: लैला लैला लैला लैला लैला लैला जा तेरा फैला फैला फैला फैला

आकर्षित गया मैं प्लास्टिक फैंटास्टिक बम्बास्टिक बनावट लगा मत धक्के में धक्के दिखा मत मार्केट में वैसे ही भारी गिरावट निकले लड़ा मत पुरानी कहावत जो करता मोहब्बत नहीं रहता सलामत।

0: प्रश्नों की भीड़ में फंस गई लैला।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-30-92 या 90765-65750।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमन।

0: 4605714 मीरगंज ब्रांच में 9693101611
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602 भोरे ब्रांच में 8207856404
0: सिवान ब्रांच में 9942071405 मेरवा ब्रांच में 8207856403।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160602।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10।

0: बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करे 94512-11001।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
4: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
3: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
4: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
4: कॉल करें 85070-32042 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99393-65930।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। आज 11 जुलाई हम मना रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस, एक दिन जो हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को अपने भविष्य, अपने परिवार और अपने शरीर के बारे में सूचित और सम्मान अधिकारों के साथ निर्णय लेने का हक है। इस वर्ष की थीम है युवाओं को सशक्त बनाना, ताकि वो एक न्यायपूर्ण और आशावान दुनिया में अपनी पसंद के परिवार बना सके। इस थीम के माध्यम से हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आज के युवा, जो हमारे देश के भविष्य हैं, अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आर्थिक असुरक्षा, लैंगिक असमानता, स्वास्थ्य समस्याएं, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक संघर्षों की स्थितियां। ऐसे समय में जरूरी है कि हम युवाओं को सही जानकारी, स्वास्थ्य सेवाएं और समान अवसर दें, ताकि वो अपने परिवार को समझदारी से एक दिशा दे सके। तो आइए आज के इस विशेष दिन पर हम मिलकर ये संकल्प लें कि हम न सिर्फ अपनी बल्कि अपने समुदाय की भलाई के लिए भी सोचेंगे। अब प्रस्तुत है परिवार नियोजन पर आधारित आज का विशेष एपिसोड, एक और कदम समझदारी की ओर।
12: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त RJ। जब घर में नन्ना मेहमान आता है तो खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आ जाती है, बच्चे की सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है। आजकल विज्ञापन बहुत आगे बढ़ गया है, अब नवजात शिशु की जांच यानी नवजात स्क्रीनिंग के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं है। ये टेस्ट बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर किया जाता है। अगर कोई बीमारी समय रहते पकड़ ली जाए तो उसका इलाज शुरू हो सकता है और बच्चे को आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाया जा सकता है। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 28 जून को अंतर्राष्ट्रीय नवजात स्क्रीनिंग दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर शुरुआत सही हो तो आगे जिंदगी आसान हो जाती है। तो चलिए आज इसी जरूरी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे अपने सेहतिया भैया और टिकन भाभी।
13: देखो भाई, जब बीज अच्छा बोओगे तभी तो पेड़ मजबूत निकलेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बीमारियां छुपी हो सकती हैं। अगर बीमारियों को उसी वक्त पकड़ लिया जाए तो इलाज आसान हो जाता है।
14: और नवजात स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत छोटा होता है, आसानी से हो जाता है, मगर इसके फायदे जीवन भर मिलते हैं।
13: हाँ, लेकिन कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इसका असर बाद में दिखता है।
15: बिल्कुल, देखिए पड़ोस के गांव की बात है। फूलमती की बहू को बेटा हुआ, सब खुश थे, पर बच्चा दूध ठीक से नहीं पी पा रहा था, बार बार कपकपी हो रही थी। लोग बोले कि ठंड लग गई है, नज़र लग गई है, लेकिन बाद में पता चला कि बच्चे को जन्म से ही थायराइड की बीमारी थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर शिशु की जन्म के समय जांच करवाई होती तो बीमारी का पता चल जाता और इलाज समय पर शुरू हो जाता। अब बच्चा ठीक तो है, लेकिन दवाइयों पर चल रहा है। सोचिए, अगर पहले ही नवजात स्क्रीनिंग हो जाती तो जिंदगी आसान हो जाती।
16: सेहतिया भैया, आखिरकार बच्चे को पैदा होते ही नवजात स्क्रीनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है?
13: जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में कई बीमारियां पता नहीं चलती। स्क्रीनिंग में डॉक्टर उसके खून की जांच करते हैं, कानों की सुनने की क्षमता देखते हैं और दिल की धड़कन जांचते हैं। अगर कोई समस्या जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज आसान हो जाता है। इस टेस्ट से बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है।
16: टीकन भाभी, नवजात शिशु की जांच कब करवानी चाहिए?
15: बच्चे के जन्म के बाद जब वो एक दो दिन का होता है तब नवजात स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि बच्चा एकदम ठीक है या नहीं।
16: अगर कोई बच्चा अस्पताल में पैदा ना हुआ हो तो भी ये जांच करवानी चाहिए?
15: बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर से बात करके जांच करवानी चाहिए। इससे परेशानी जल्दी पकड़ में आ जाती है और सही इलाज हो सकता है। पर सही प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों में जन्म देकर बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
16: सेहतिया भैया, नवजात शिशु की जांच कैसे होती है?
13: आरजी, नवजात स्क्रीनिंग तीन तरीके से होती है। सबसे पहले बच्चे की एड़ी से कुछ बूंद खून लेकर लैब में भेजा जाता है ताकि किसी गंभीर बीमारी का जल्दी पता चल सके। फिर सुनने की जांच होती है। इसके लिए कानों में छोटे ईयरफोन लगाए जाते हैं और देखा जाता है कि बच्चा आवाज पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। और एक तीसरा तरीका है दिल की जांच, जिसमें एक खास मशीन से बच्चे के खून में ऑक्सीजन की मात्रा देखी जाती है। इससे दिल की कोई समस्या हो तो जल्दी पकड़ में आ जाती है।
16: टिकन भाभी, अगर किसी नवजात शिशु की जांच के नतीजे सामान्य ना हो तो क्या किया जाता है?
15: यदि किसी नवजात शिशु के जांच के नतीजे सामान्य ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं। ज्यादातर मामलों में इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि बच्चे की और जांच करनी होगी ताकि डॉक्टर को पूरी जानकारी मिल सके। पहला टेस्ट सिर्फ शुरुआती जांच होती है, जिससे डॉक्टर को संकेत मिलते हैं कि आगे क्या करना चाहिए।
16: तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बीमार है?
15: बिल्कुल सही, कई बार शुरुआती जांच में कोई गड़बड़ परिणाम आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को कोई बीमारी है। इसीलिए डॉक्टर आगे एक और टेस्ट करने की सलाह देते हैं, जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। यह ज्यादा सटीक होता है और इसमें पता चलता है कि वास्तव में कोई समस्या है या नहीं। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट के नतीजे सामान्य आते हैं तो आगे किसी और जांच की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ी दिखती है तो डॉक्टर अगला कदम बताते हैं। वो आपको सही इलाज और बच्चे की सेहत को बेहतर रखने के लिए जरूरी सलाह देते हैं।
16: सेहतिया भैया, अगर परिवार में एक बच्चे को कोई बीमारी हो तो क्या दूसरे बच्चे को ये बीमारी हो सकती है?
13: देखिए, कई बीमारियां वंशानुगत होती हैं, यानी माता पिता से बच्चों में जीन के जरिए आती हैं। अगर किसी परिवार में एक बच्चे को कोई वंशानुगत बीमारी है तो उसके भाई बहन को भी वही समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन हर बीमारी ऐसी नहीं होती, कुछ बीमारियां सिर्फ उसी बच्चे में हो सकती है जबकि उसके भाई बहन बिल्कुल ठीक रह सकते हैं।
16: अगर किसी बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो और माता पिता दूसरा बच्चा चाहते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए?
13: अगर ऐसा हो तो माता पिता को किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर समझाते हैं कि बीमारी परिवार में कैसे आती है और अगला बच्चा इससे प्रभावित होगा या नहीं। डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा तरीका होता है ताकि परिवार सही फैसला ले सके।
16: तो क्या हर स्वास्थ्य समस्या वंशानुगत होती है?
13: नहीं आरजी, कुछ बीमारियां वंशानुगत नहीं होती, जैसे सुनने की समस्या जो कभी कभी गर्भावस्था के दौरान किसी संक्रमण से हो सकती है। ऐसे स्थिति में दूसरी गर्भावस्था में यह समस्या होने की संभावना कम होती है। इसलिए हर बीमारी को समझना जरूरी होता है ताकि सही इलाज और सावधानी बरती जा सके।
16: तो मतलब डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए?
13: डॉक्टर सही जानकारी और सुझाव देते हैं, इससे माता पिता को बच्चे की सेहत को लेकर बेहतर फैसला लेने में मदद मिलता है।
16: टिकन भाभी, आपने बताया था कि नवजात स्क्रीनिंग बहुत जरूरी होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे की स्क्रीनिंग से कोई बीमारी पकड़ी गई हो और फिर वो ठीक हो गया?
15: हाँ, मेरे पड़ोस की सुनीता के बेटे के साथ ऐसा ही हुआ था। जब बच्चा पैदा हुआ तो अस्पताल में उसकी स्क्रीनिंग हुई। जांच से पता चला कि बच्चे के शरीर में कार्बनिक अम्ल ज्यादा जमा हो रहा है। ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर खाने को ठीक से पचा नहीं पाता। अगर इसे जल्दी नहीं पकड़ा जाता तो बच्चे की सेहत बिगड़ सकती थी।
16: फिर क्या किया गया?
15: जैसे ही ये बीमारी पता चली, डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज शुरू किया। उन्होंने सुनीता को बताया कि बच्चे की डाइट में खास ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ दवाएं भी दी। धीरे धीरे सही इलाज और देखभाल से बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया।
16: तो मतलब अगर स्क्रीनिंग ना हुई होती, बीमारी पकड़ में ही नहीं आती।
15: बिल्कुल सही कहा। अगर ये टेस्ट नहीं हुआ होता तो बीमारी का पता ही नहीं चलता और बच्चा बहुत परेशानी में आ सकता था। इसीलिए स्क्रीनिंग हर नवजात के लिए बहुत जरूरी होती है।
16: सेहतिया भैया, आपकी जानकारी में कभी ऐसा हुआ है किसी बच्चे की बीमारी स्क्रीनिंग से पता चली हो और फिर वो ठीक हो गया हो?
13: हाँ जी, मेरे दोस्त विजय की बेटी के साथ ऐसा ही हुआ था। जब वो पैदा हुई तो अस्पताल में उसकी नवजात स्क्रीनिंग हुई। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जांच के नतीजे आए तो डॉक्टरों ने बताया उसे फैटी एसिड की बीमारी है।
16: ये कौन सी बीमारी होती है?
13: देखिए, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, इसे हम खाने पीने की चीजों से लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ये बीमारी होती है उनका शरीर वसा को ठीक से पचा नहीं पाता, इससे बच्चों को जरूरी ऊर्जा नहीं मिलती और उन्हें कमजोरी महसूस होती है।
16: तो फिर विजय ने क्या किया?
13: रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब ने विजय को समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, सही इलाज से बच्ची बिल्कुल ठीक हो सकती है। उन्होंने कुछ दवाएं और खास डाइट सुझाई। विजय ने पूरी सावधानी बरती और धीरे धीरे बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो गई।
16: टिकन भाभी, मैंने सुना है कि कुछ बच्चों को अमीनो एसिड से जुड़ी कोई समस्या होती है, ये क्या है?
15: अरे, ये एक खास तरह की बीमारी होती है जिसमें बच्चे का शरीर अमीनो एसिड को ठीक से नहीं पचा पाता। ये एसिड हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जब शरीर इसे सही तरीके से नहीं प्रोसेस कर पाता तो इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं।
16: तो ये बीमारी कैसे पता चलती है?
15: जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नवजात स्क्रीनिंग की जाती है। इस टेस्ट से अगर कोई दिक्कत हो तो पता चल जाता है, फिर डॉक्टर सही इलाज शुरू कर सकते हैं जिससे बच्चा स्वस्थ रह सके।
16: सेहतिया भैया, ये हार्मोन संबंधी परेशानी क्या होता है? क्या इससे छोटे बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं?
13: देखिए, ये समस्या शरीर में हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को प्रभावित करती है। हार्मोन वो रसायन होते हैं जो शरीर में कई जरूरी काम करते हैं, जैसे वजन बढ़ाना, शरीर का विकास होना, अलग अलग अंगों का ठीक से काम करना। अगर किसी बच्चे में हार्मोन सही तरीके से ना बने तो उसे कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं।
16: ये बीमारी कैसे पता चलता है? अगर बच्चे को ये समस्या हो तो इलाज कैसे होता है?
13: जब बच्चा पैदा होता है तो नवजात स्क्रीनिंग से इस बीमारी का पता चल जाता है। डॉक्टर खास तरह की दवाएं और देखभाल बताते हैं। कभी कभी हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को खास ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इलाज समय पर शुरू कर दिया जाए तो बच्चा सामान्य तरीके से बढ़ सकता है और उसे कोई परेशानी नहीं होती है।
16: भाभी, मेरे दोस्त के बच्चे में एनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे हीमोग्लोबिन की समस्या है। ये क्या होता है और क्या इसे पहले से पहचाना जा सकता है?
15: हीमोग्लोबिन की समस्या खून से जुड़ी बीमारी है, मतलब शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। लेकिन नवजात स्क्रीनिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा इस बीमारी से प्रभावित है या नहीं। अंश का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने डॉक्टर की सलाह पर नवजात स्क्रीनिंग कराई। टेस्ट में पता चला कि उसे हीमोग्लोबिन की बीमारी है। बीमारी पकड़ में आते ही डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। अगर ये बीमारी समय रहते पकड़ में ना आती तो बाद में अंश को गंभीर परेशानी हो सकती थी।
16: भैया, जरा एक बात बताइए, मेरे पड़ोसी के नवजात बच्चे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर बोले कि उसे गंभीर जन्मजात हृदय रोग है, ये क्या होता है?
13: कुछ बच्चों में हृदय रोग जन्म से ही होता है। इसमें दिल की बनावट में गड़बड़ी होती है जिससे खून शरीर में सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है।
16: मतलब बच्चा दिखने में ठीक होता है पर अंदर से बीमार होता है।
13: बिल्कुल, शुरू शुरू में बच्चा एकदम ठीक लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में सांस लेने में दिक्कत, दूध पीने में परेशानी जैसी चीजें दिखने लगती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर नवजात स्क्रीनिंग समय पर हो जाए तो इस बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है।
16: और क्या इसका इलाज है?
13: हाँ है, लेकिन जल्दी पकड़ में आना जरूरी है। चलो तुम्हें छोटे फैजान की आप बीती सुनाता हूँ। शहर के अस्पताल में फैजान पैदा हुआ था। नवजात स्क्रीनिंग के तहत उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट में पता चला फैजान के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम है। तुरंत और टेस्ट किए गए और पता चला कि उसे हृदय रोग है। फिर सर्जरी की गई और फैजान एकदम ठीक है, बिल्कुल किसी आम बच्चे की तरह।
16: मेरे मौसी का पोता अभी कुछ महीने का है पर आवाज पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। माँ कुछ भी बोले बच्चा पलटकर नहीं देखता। डॉक्टर बोले कि सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। ये नवजात बच्चों में भी होता है क्या?
15: हाँ भैया, होता है। कुछ बच्चे जन्म से ही ठीक से सुन नहीं पाते, लेकिन बाहर से देखने पर वो तो बिल्कुल आम बच्चों जैसे ही लगते हैं।
16: पर भाभी, अगर बच्चा कुछ बोले ही नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि उसे सुनाई देता है या नहीं?
15: बस यही गलती होती है। अगर हम बच्चे के बोलने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। नवजात स्क्रीनिंग में अब सुनने की जांच भी होती है। बच्चा जब पैदा होता है तब अस्पताल में एक छोटा सा मशीन कान में लगाते हैं। मशीन खुद पता लगा लेती है कि बच्चे के कान ठीक से आवाज पकड़ रहे हैं या नहीं। न बच्चा रोता है न कोई तकलीफ होती है। हर नवजात बच्चे का हियरिंग टेस्ट जरूरी है। इससे बच्चे को समय पर इलाज मिल सकता है और वो बाकी बच्चों की तरह बोल सुन सकते हैं।
16: भैया भाभी, आज तो आप दोनों से बड़े काम की बात जानने को मिली। सच में नवजात स्क्रीनिंग हर बच्चे के लिए जरूरी होता है।
15: बच्चा जब दुनिया में आता है तब उसकी कुछ जरूरी जांच करवा लेने से आगे चलकर बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है।
13: बिल्कुल, जैसे कि दिल का रोग, थायराइड की गड़बड़ी, सुनाई न देना और अन्य कई छिपी बीमारियां नवजात स्क्रीनिंग से जल्दी पकड़ में आ जाती है। इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो बच्चा पूरी तरह ठीक हो सकता है।
16: मतलब ये हुआ कि बच्चा चाहे बिल्कुल ठीक दिखे फिर भी उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए।
15: हाँ भैया, बीमारी बाहर से थोड़ी ही दिखती है, अंदर ही अंदर नुकसान कर जाती है, यही तो हम सबको समझना है।
13: और ये जांच ज्यादा महंगी भी नहीं होती। सरकार कई अस्पतालों में ये सुविधा फ्री में दे रही है, बस जागरूक रहना जरूरी है।
16: तो दोस्तों, आज से ही तय कीजिए कि अगर घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नवजात स्क्रीनिंग जरूर करवाए, ताकि वो बच्चा आगे चलकर हंसता खेलता सेहतमंद जीवन को जी सके। तो दोस्तों, आज के सेहत सही लाभ कई में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
17: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
18: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
17: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
19: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
20: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
19: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
20: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
19: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
21: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
22: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
21: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
22: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
23: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
24: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंडिया एग्जिम बैंक सीधी भर्ती अभियान के तहत आमंत्रित कर रहा है। इन पदों के लिए आवेदन, उप प्रबंधक सूचना सुरक्षा 4 पद, प्रबंधन प्रशिक्षु मानव संसाधन प्रबंधन 3 पद, प्रबंधन प्रशिक्षु प्रशासन 2 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.eximbankindia.in/careers। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक शैक्षणिक 1 पद, उपनिदेशक शैक्षणिक 1 पद, कार्यकारी शैक्षणिक 3 पद। तीनों पदों का नियुक्ति स्थान मुंबई रहेगा। अधिक जानकारी जैसे योग्यता, अनुभव, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आदि के लिए देखिए वेबसाइट www.icsi.edu/careers। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 19 जून 2026। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित रेजिडेंसी योजना के अंतर्गत कॉलेज के विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नियुक्ति के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in वेबसाइट पर जाकर क्लिक कीजिए वर्क विद डीयू। उसके बाद जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज पर जब आप क्लिक करेंगे तो साथ ही कॉलेज की वेबसाइट www.ucms.ac.in पर करियर्स का अनुभाग देखें, इसमें आपको तमाम जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये विज्ञापन रोजगार समाचार के 6 से 12 जून 2026 के अंक में प्रकाशित हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर हैदराबाद आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधीक्षक, वित्तीय सलाहकार, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता विद्युत, नर्सिंग अधीक्षक, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यकारी सहायक, निजी सहायक, तकनीशियन प्रयोगशाला और अपर श्रेणी लिपिक। तकनीशियन प्रयोगशाला के लिए 5 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जबकि अपर श्रेणी लिपिक के लिए 3 तथा सहायक लेखा अधिकारी और नर्सिंग अधीक्षक के लिए 2-2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। अन्य सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति ही उपलब्ध है। शैक्षिक योग्यता, आयु और पात्रता मानदंड आदि सभी शर्तों और नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर की वेबसाइट aimsbbnagar.edu.in। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में अध्यक्ष के पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन फॉर्मेट, योग्यता शर्तें, अपेक्षित अर्हताएं, सेवा के लिए निबंधन और शर्तों जैसे अन्य ब्यौरों के लिए देखिए मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in अथवा www.ibbi.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आमंत्रित कर रहा है एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों के लिए आवेदन। पद संबंधी विवरण और आवेदन का निर्धारित प्रारूप देखने के लिए देखिए वेबसाइट nidm.gov.in। आवेदन की अंतिम तिथि है 13 जुलाई 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: प्रसाद क्लिनिक।
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
25: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
26: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
25: तो देर मत कीजिए,
26: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
27: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज।
10: और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
11: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
12: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
11: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
13: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
10: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
14: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
10: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया अपेंडिस वंध्याकरण प्रोस्टेट पीत की थैली किडनी की पथरी पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल
12: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
12: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
12: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
12: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
15: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
15: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
15: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
17: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
16: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
17: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
18: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में।
19: क्यों, क्या हुआ है?
18: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
19: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
18: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
19: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
20: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
21: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
22: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, बैकुंठपुर के थाना अध्यक्ष को SP ने किया निलंबित, बाल श्रम रोकने को ली गई शपथ, क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक का सख्त फरमान जारी, हत्या के प्रयास में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और गैस सिलेंडर को लेकर जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बैकुंठपुर के थाना अध्यक्ष को कार्यों में लापरवाही, थिथिलता और नेतृत्व क्षमता के अभाव को देखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार पासवान को अनुशासनहीनता और कार्यों में लापरवाही, वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना सहित तमाम मामलों में शिकायतें मिली थी और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद अब इन्हें जीविकोपार्जन के लिए कुछ वेतन भत्ता मिलेगा। इनके जगह पर बैकुंठपुर के थाना अध्यक्ष अंकित कुमार को बनाया गया। अंकित कुमार वर्तमान में SC/ST के थाना अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने इन्हें अब बैकुंठपुर का थाना अध्यक्ष बना दिया। आज अंकित कुमार ने बैकुंठपुर थाने में पहुंचकर अपना चार्ज भी ले लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों को क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश भी दिया है और क्राइम मीटिंग में ही सुभाष कुमार पासवान के विरुद्ध कई मामले सामने आए और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्राइम मीटिंग के दौरान ही पुलिस अधीक्षक

रवाना किया। जिला पदाधिकारी ने संबोधन में कहा कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस पर उन्होंने बाल श्रम को एक सामाजिक अभिशाप बताया तथा उससे उन्मूलन के लिए सभी के सहभागिता पर विशेष बल दिया। साथ ही श्रम अधीक्षक की अध्यक्षता में बिहार कौशल विकास मिशन सभागार में बाल श्रम उन्मूलन विषय पर समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य गणों तथा सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं प्रत्येक प्रखंड से 2 मजदूर प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बाल श्रम से संबंधित विषयों पर व्यापक चर्चा किया गया। साथ ही सभी अभिभावकों, शिक्षकों, उद्योग, सामाजिक संगठनों, नियोजकों से अपील किया गया कि वे बाल श्रम उन्मूलन अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं और बच्चों को शिक्षा एवं बेहतर भविष्य से जोड़ने में सहयोग करें। नियोजकों से भी बाल श्रमिक से कार्य नहीं करवाने के लिए अनुरोध किया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी एवं पुलिस सभा का आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि इस बैठक में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष एवं शाखा प्रभारी शामिल हुए। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन, गश्ती, वाहन जाँच और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गयी। पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सभी लोग सक्रियता से काम करें। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जेल से छूटे हुए अपराधियों और संगठित गिरोह पर कड़ी निगरानी रखें, भू माफिया, शराब तस्कर और एनडीपीएस मामलों में कार्रवाई तेज करें, लूट और चोरी में शामिल अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखें, लंबित वारंट, कुर्की और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में भी तेजी लाएं, साइबर अपराध मामलों के त्वरित निष्पादन का भी आदेश दिया गया, अवैध संपत्तियों की पहचान कर उसके जब्तीकरण की कार्रवाई पर भी पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया। साथ ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता के साथ काम करने का पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गोपालपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली गांव में छापेमारी की और वहां हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त बाड़ू अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसे पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के तरफ से गैस की उपलब्धता को लेकर जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 3 एजेंसियों के माध्यम से गैस की सप्लाई होती है, जिसमें HPCL, BPCL और IOCL के प्रबंधकों द्वारा उपलब्ध कराए गए गैस उठाव एवं वितरण से संबंधित जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सिलेंडर पूर्ण मात्रा में जिले में उपलब्ध है। IOCL के इस जिले में 26 विक्रेता हैं और इनके स्टॉक में 18,605 सिलेंडर हैं। BPCL के कुल 8 थोक विक्रेता हैं और इनके पास 4,568 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं, तो वही HPCL के कुल 12 विक्रेता हैं और इनके पास 6,005 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। इस प्रकार जिले में IOCL, BPCL और HPCL विक्रेताओं के पास मिलाकर कुल 29,178 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। जिला पदाधिकारी ने आम जन से भी कहा है कि अगर गैस से संबंधित किसी भी तरह का कोई शिकायत है तो उसके निस्तारण के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, पालीवार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 0-6156-27007 बताया जा रहा है। इसके अलावा 22-7507-22708-22709 और 22-7510 नंबर में भी आप 0156 कोड लगाकर डायल कर सकते हैं। समस्या के निदान को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज और हथुआ के द्वारा अपनी अहम भूमिका निभाई जा रही है। जिले में गैस की किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए सभी एजेंसियों द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत पटना के लोदीपुर गांव के पंचायत रघुरामपुर में किसानों के लिए जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य किसानों के बीच संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती, समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन तथा टिकाऊ कृषि तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान

0: वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण की अनुशंसाओं के अनुसार करें तथा रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को अपनाएं। किसानों को जैव उर्वरकों, कंपोस्ट और गोबर की खाद तथा अन्य जैविक संसाधनों को अपनाने के लिए भी सलाह दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जन शिकायतों की सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय कुमार मिश्रा और पुलिस उपाधीक्षक यातायात सोमेश मिश्रा के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना गया और उसे निष्पादित करने का प्रयास भी किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान दूर दूर से आए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष रखते हुए सहायता की गुहार लगाई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो रिमझिम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ दुनिया के किसी भी शहर से उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बैकुंठपुर के थाना अध्यक्ष को SP ने किया निलंबित। बाल श्रम रोकने को ली गई शपथ। क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक का सख्त फरमान जारी। हत्या के प्रयास में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और गैस सिलेंडर को लेकर जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ठक ठक
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97907065575।
10: सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
10: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
10: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
14: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे और समय हो रहे हैं 9:19 और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप गाने की फरमाइश करें और नए गाने की फरमाइश करें तो आपकी फरमाइश तो हम प्ले नहीं कर पाएंगे, और यदि आप पुराने गाने की फरमाइश करेंगे तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर नमस्कार, राधे राधे सर जी। तो बिल्कुल नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुजीत कुमार बस्तारा राजा लालगंज मिर्जापुर से और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है, जीता था जिसके लिए मरता था, आज मेरा गाना सुना दीजिएगा। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर नमस्कार, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सनम भैया कैसे हैं, मैं नैना शर्मा वृंदावन से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने का फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, और कल तो कह रही थी कि आज मेरा गाना नहीं बजेगा तो रेडियो फोड़ दूंगी। इतनी गुस्सा नहीं करनी चाहिए, हमारे पास समय होंगे तो बिल्कुल फरमाइश पूरा करते हैं। अब क्या ही किया जाए, हमारे पास जितना समय मिलता है उतना ही हमें आदेश है, उतना ही में कुछ करना है। और आप लोग ऐसे उल्टे पुल्टे बोलते हैं लोग, तो थोड़ा सा समझदारी करनी है कि जब गाने के फरमाइश हमारे पास पहुँचाई है तो समय रहेगा तो बिल्कुल पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सनम भैया, मैं पल्लवी कुमारी भिड़िया से और गाना सुनना है, सावन का महीना पवन करे सूर। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, हो जाए मोहब्बत तो फिर सूरत नहीं देखी जाती, पसंद हो जाए कोई चीज़ तो फिर कीमत नहीं देखी जाती, मुझे गाना सुनना है। लेकिन इसी पे एक लाइन हमें भी थोड़ा सा याद है कि पहले प्यार अंधी हुआ करती थी, फिर उसने इलाज कराया और उसके बाद से धन दौलत सकल सूरत सब कुछ देखती है। तो पहले वाले प्यार अब रहा नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसके बाद से प्यार किया जा रहा है देखने सुनने के बाद। और आप अभी उसी उम्मीद पे हैं तो थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है, और आपने भी थोड़ा सा अपने में बदलाव करें फिर इस रास्ते पे चले तो आप सफल हो पाएंगे। गुलाम हुसैन जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आप कौन है अपना परिचय दें, फिर आपकी फरमाइश तो हम बिल्कुल पूरी करेंगे। और गाने की भी फरमाइश अभी आपके द्वारा नहीं किया गया है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सोनू भाई, मेरी भी आज भी हाजिरी लगा दीजिए। और परवेज जी नवादा से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन गाने के फरमाइश से तो ओ कहते हैं कि मेरी फरमाइश का गाना बजाने के लिए थैंक्स। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं कमलेश कुमार विलेज सबिया फील्ड, मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है, अब बढ़ते आगे। और पहले गाने के फरमाइश हम सुजीत जी की पूरी करते हैं, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिससे प्यार में करता था। सुना जाए, एंजॉय किया जाए रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

कमल के शौक रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। और आगे कई मैसेज पहुंचे हुए हैं, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, मैं अली अख्तर सिरीपुर से और हमको गाना सुना दीजिए। बिल्कुल, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमशम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर जी आज भर मेरा रिचार्ज है, सुना दीजिएगा। तो बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम प्ले कर ही देते हैं और इस गाने के फरमाइश करती हैं निशा डुमरिया से, और गाने की फरमाइश करती हैं खेसारी लाल जी की आवाज़ में, और गाने का बोल है जैसन सोच ले रही ओशा ने बर पा गई नहीं। तो चलिए, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, अरे तुम खूबसूरत चांद जैसी लगती हो, तुम नदान लेकिन प्यारी बेहिसाब लगती हो, ये कांच का टुकड़ा आईना क्या बताएगा तुम्हारी खूबसूरती का राज, जरा मेरी आंखों में पूछो, आंखों से पूछो तुम कितनी लाजवाब लगती हो। सुनो भाई नमस्कार, और कैसे हैं आप? मैं रोहित देहरादून से तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। जुड़े हुए हैं तो बने रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप सभी दोस्तों का, मैं साजिया नवादा से और सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल, आपकी भी फरमाइश पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि आज तुम्हारी याद ने मुझे रुला दिया, क्या करूँ तुमने जो मुझे भुला दिया, ना करते वफा ना मिलती ये सजा, मेरी वफा ने तुझे बेवफा बना दिया। सुनो भाई नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे गाने की फरमाइश को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं, सुनते हैं हम सभी रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे खेसारी लाल जी की आवाज़ों में निशा जी की फरमाइश जैसन सोच ले रही ओशा ने बर पा गई नहीं।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आज मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा गाना बजा दीजिएगा, मैं कल का एसएमएस की हूँ। उजाला कुमारी और इसी गाने की फरमाइश कल की थी और आज यही गाने बज रहे हैं और फिर भी इनकी तरफ से भी मैसेज पहुँची है, तो चलिए आप भी इंजॉय करें इस गाने के साथ। आपके द्वारा भी तो इसी गाने की फरमाइश की गई थी, तो हम सभी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी बन रहे हैं हमारे साथ।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और आगे कई मैसेज भी पहुंचे हुए हैं और मैसेज शामिल करने से पहले हर रोज की तरह आज भी मैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक छोटा सा सुझाव साझा करेंगे आप सभी के बीच। और आज हम जानेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग एक ऐसी बीमारी है जो दूषित बासी या संक्रमित भोजन और पानी के सेवन से होती है। यह गर्मियों के मौसम में अधिक होती है क्योंकि गर्म तापमान में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवी तेजी से बढ़ते हैं। तो कारण इसका हो सकता है बासी या खराब भोजन खाना, दूषित पानी पीना, भोजन को साफ सफाई से ना बनाना, संक्रमित बैक्टीरिया, वायरल या परजीवियों का भोजन में होना, जैसे खुले में रखे खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेना, ये सारे कारण हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग की। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं भी तो समोसा और चाट चाउमीन गोलगप्पे, जो अधिकतर समोसे हम लोग खाते हैं जो बाहर ऐसे ही थालिया में सजाई जाती है और हम लोग धड़ल्ले से उसको खाते हैं, बहुत खाने में मज़ा भी आता है। और ठेले पे पकौड़ी, ब्रेड, ये सारे जो भी चीज़ें हैं जो ढके हुए बर्तन में नहीं रहते हैं, खुले में बेची जाती है, तो ऐसे अधिकतर फूड पॉइजनिंग होने की संभावना रहती है। आगे इसके लक्षण हैं पेट में दर्द आना, मड़ोड़ आना, उल्टी होना, दस्त आना, बुखार आना, कमजोरी और थकान, सिर दर्द, चक्कर आना, ये सारे इसके लक्षण हो सकते हैं यदि आपको फूड पॉइजनिंग का थोड़ा सा भी असर हुआ तो। ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। और बुखार तो हमेशा यदि आपके शरीर में कोई भी गतिविधियाँ हो जाती है तो बुखार आ जाता है। बुखार मतलब आपकी शरीर में कोई बाहरी व्यक्ति मतलब बीमारी प्रवेश कर रहा है। जब ही प्रवेश करता है तो बुखार नाम का एक हमारे शरीर में भी व्यक्ति है जो लड़ता है उससे, और लड़ने के बाद से जब दोनों में लड़ाई होती है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो लोग कहते हैं कि बुखार लग गया है। तो कई लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से दवा भी खा लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना है। यदि आपको हमेशा ऐसा होता है तो मेडिकल स्टोर से दवा नहीं खाना है, उसको डॉक्टर से सलाह लेकर दवा खाना है और जांच कराना है कि हमें हमेशा बुखार क्यों आ जाता है, क्या कारण है। तो यदि हम जांच कराते हैं तो पता चलता है कि हमारे शरीर में और कोई प्रवेश कर रहा था जिसके कारण हमें बुखार लग गई है। इसके उपचार हो सकते हैं अधिक मात्रा में साफ सफाई, अधिक मात्रा में साफ पानी पिए, ORS का घोल लें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में आराम करें, गंभीर स्थिति में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, ऐसा ना हो कि उसको हम दबाएं। यदि आप के शरीर में बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से जाकर संपर्क करें और उसके निर्देशानुसार आप दवा लें और इसके बचाव हो सकते हैं। हमेशा ताज़ा और स्वच्छ भोजन करें, भोजन को ढक कर रखें, साफ पानी का उपयोग करें, खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं, बासी और खुले में रखे भोजन से बचें। जैसे कि अभी हम सभी को बता रहे थे कि धड़ल्ले से जो बेची जा रही है ठेले पे चाट चाउमीन गोलगप्पे तो खैर शीशे में बंद रहते हैं, लेकिन पकौड़ी हो गए, ब्रेड हो गए, समोसे हो गए, ये तीन चीज़ें जहाँ भी देखे वो खुले में ही थाली में सजाई जाती है और हम लोग खूब चाव से खाते हैं। तो इससे थोड़ा सा परहेज करना है और घर के खाने पे थोड़ा ध्यान देना है। जो घर के खाने होते हैं वो थोड़े से नहीं, बहुत अच्छे होते हैं, जो हमेशा साफ सफाई से बनाई जाती हैं। तो कोशिश करें कि घर के खाने अधिकतर सेवन करें
और अपने को स्वस्थ रखें। ये हर रोज़ आप सभी के बीच छोटी छोटी जानकारी साझा किया जा रहा है रेडियो रिमझिम के माध्यम से सेहत से ही लाभ कई के अंतर्गत। तो अब हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप इसको अपने जीवन में थोड़ा सा उतारें और कोशिश करें कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी अपनी जानकारी को साझा करें और मदद करें। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो भी मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं और फिर उनकी फरमाइश को हम पूरा करते हैं और सुनते इंजॉय करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू जी मैं भी जुड़ गई हूं और मुझे भी गाना सुनना है, गाने का बोल है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हमारे पास पहुंची और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। रेखा जी बन रहे हमारे साथ और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि फिल्म फकीरा सॉन्ग हम तो झुककर सलाम करते हैं, नाम शगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर असम से डेडिकेट दिलीप राम आज़ाद अंसारी और बर्जू और कमरान को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा नंबर आएगा कि नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, कल भी आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची थी, आज आपकी फरमाइश हम पूरी कर देते हैं। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश किया गया है सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कमलेश जी हैं विलेज सबिया फिल्म सबिया फील्ड गोपालगंज से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपके गाने के साथ अब हम सभी इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

अभी प्यारे संग रेडियो 94.4 FM पे सुन रहे आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी। तो चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमछम सुनने के लिए कमलेश जी। और ऐसा नहीं है कि आप लोग जब मैसेज कर दे तो हम आप सभी की फरमाइश हम पूरा ना कर पाए। यदि हमारे पास समय रहता है तो बिल्कुल पूरा करने की कोशिश रहता है मेरा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, गुड इवनिंग सोनू सर क्या हाल है। तो बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में अनिल जी और बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप। और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। रोशनी कुमारी मानिकपुर से नाइस सॉन्ग कहती हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो जी मैं जुड़ गई हूँ और मुझे गाना सुनना है। गाने का बोल है जीने ना देगी ये जुदाई। मेरा नाम रेखा पांडे है और मैं सरिया वार्ड नंबर 5 से हूँ और मैं कल से लाइन में लगी हूँ। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा नंबर, तो बिल्कुल आपका भी नंबर आएगा। एक एक करके सबकी फरमाइश तो पूरी कर ही रहे हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और फिलहाल हम रेखा जी के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

आप सब। और अभी रेखा जी की फरमाइश अभी हम सभी सुन रहे थे, जीने ना देगी ये जुदाई, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि काफ़ी सैड सॉन्ग, और मैसेज करती है रोशनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है नाइश, गाना निशा पांडे, और कहती हैं कि हेलो सर, मुझे भी गाना सुनना है, स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर आज भी मेरा सॉन्ग नहीं बजेगा क्या? बिल्कुल, आज आपकी गाने बजेंगे, और अभी हम आप ही के गाने प्ले करने के लिए आपकी मैसेज को और गाने को ढूंढ कर रखे हुए थे। तो नैना शर्मा, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, कुछ मैसेज है मैसेज शामिल कर लें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कुछ, और लिखा गया है कि जब आंसू आए तो रो जाते हैं, जब आंसू आए तो रो जाते हैं, जब ख्वाब आए तो खो जाते हैं, नींद आँखों में आती नहीं, बस आप ख्वाबों में आओगे यही सोचकर हम सो जाते हैं। शुभ रात्रि सोनू भाई, रेखा जी की सुपर सॉन्ग। दिलीप राम मैसेज करते हैं, बिल्कुल सुपर सॉन्ग थी। और आगे मैसेज, आगे अनिल जी जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप बन रहे हैं हमारे साथ। और आगे मैसेज लिखा गया है कि सर मेरा सॉन्ग तो बिल्कुल लेके करके फरमाइश तो पूरी हो ही रही है, लेकिन आज आपकी फरमाइश तो नहीं पहुंची है। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले हैं अनीस यादव, स्टूडेंट ऑफ KGS इंस्टीट्यूट पटना से। तो फिलहाल आप बन रहे हमारे साथ और गाने के फरमाइश बता दें, कोशिश रहेगा कि आपकी फरमाइश हम पूरी कर दें। फिलहाल गाने को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश। रेडियो रेमछिम 94.4 FM पे गाने का बोल, दाग द फायर मूवी से परदेसिया, इतना बता सजना कि तेरी कौन हूँ मैं।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमशेम 90.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए थे, कई तो नहीं सुना सकते हैं, लेकिन अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और अंतिम गाने के फरमाइश कल से ही मैसेज पहुँचे हुए, और वो श्रोतागढ़ आज भी अपनी हाजिरी दे चुके हैं और आगे गाने के फरमाइश करते हैं। गाने का बोल देते हैं, अनदेखी सी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। तो बिल्कुल अच्छी होगी, इसमें क्या सोचना। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, आज तो नहीं बज पा रहा है, और कोशिश रहेगा अगले सप्ताह अब गाने की फरमाइश आप सभी की जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं उनकी पूरा करने की। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर हम भी अपने गाने को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र करें, आज नहीं हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी समय निकल चुके हैं। और यहाँ पर इस गाने को डेडिकेट करते हैं अनीस जी, और इसमें नाम दिए हुए हैं डेडिकेट मनीष यादव, सतीश यादव, नीतीश यादव, पूजा राजपूत, अंकिता यादव, अंजलि यादव, नंदनी यादव, मिष्टी यादव, मिल्की यादव एंड आपको थैंक यू। चलिए आपको धन्यवाद है इस कार्यक्रम को सुनने के लिए रेडियो रेमशिम को, और आप फिर अगले सप्ताह गाने के फरमाइश कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते आप सभी से कहेंगे कि आप सप्ताह में एक ही बार गाने के फरमाइश करें, क्योंकि हमारे पास समय तो उतना ही मिला है और आप लोगों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, तो गाने के फरमाइश हम बहुत सारे लोगों की पूरी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग से ये आग्रह किया गया है कि सप्ताह में एक ही बार आप लोग अपना गाना का फरमाइश करें और बाकी दिन दूसरों को भी मौका दें। तो फिलहाल ऐसा ही करना है और हम इस कार्यक्रम से निकलते हैं, मिलते हैं अगले सप्ताह। तो सुनते रहें आप सब रेडियो एम छम 90.4 FM, जो हमें सुनो दिल से। नमस्कार।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: सर्जन?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
2: खूबसूरत बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realising the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jaid Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jaid Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to join

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री
1: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: रोती हुई आंखों में भी इंतजार होता है, रोती हुई आंखों में भी इंतजार होता है, न चाहते हुए भी किसी से प्यार होता है। क्यों देखते हैं हम बहुत सपने जिनके टूटने पर भी उनके सच होने का इंतजार।

0: डीजे राहुल मानिकपुर।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी, हम सुनना चाहते हैं गाना।
2: जी, गाना सुनाएंगे, नाम बता दे अपना।
1: शिवधारी माझी, ग्राम चाणी, पोस्ट सिकंदरपुर, थाना जीवी नगर, तरवारा।
2: अच्छा, और सब बताइए, क्या हाल है आपका?
1: बहुत अच्छा है जी।
2: तो मौसम उधर का कैसा है?
1: मौसम तो थोड़ा मतलब खास नहीं है, फिर भी ठीक है
2: जी। भोजन हो गया है आपका?
1: जी, हम तो अभी थोड़ा मजदूर आदमी है तो कोटा वोटा जो कर आते हैं, और फिर यहाँ से दुकानदारी में लगेंगे, ब्रेड पकौड़ा, आलू चप, अंडा चप का, तो भोजन करके आए हैं। अभी यहाँ जो है थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं
2: जी।
1: तो हम कहे कि थोड़ा आप लोग मतलब जो है इतना रिक्वेस्ट है कि गाना सुना दीजिए आती का, गंगा किनारे मोरा गांव का। कहे के तो सब केहू अपन अपन कहावे वाला के बा, तो बहुत मेहरबानी होगी आपका।
2: जी जी, गाना आपका बजाया जाएगा, बिल्कुल बजाया जाएगा।
1: और अपना सुनाइए, आप नाश्ता वास्ता कर लिए, भोजन कर लिए?
2: हाँ हाँ, बिल्कुल कर लिए हैं।
1: चलिए ठीक है जी। और ये स्कूटर है ना, उसका भी वही हमको दिया था।

0: सिकंदरपुर का। तो मैं कहा कि थोड़ा सेक कर दो और लगा कर बात करेंगे। तो पहले साल दो साल पहले बात करते थे, कितना बार लगाए। पान का दुकान भी है, अभी तो अच्छा समय है, मौसम भी अच्छा है, तो इसलिए मैं कहा कि थोड़ा लगाता हूँ नंबर
1: जी
0: जी। तो कितने बजे मैं इंतजार करूंगा
1: जी आज तो मतलब जो पहले का रिकॉर्डिंग है वो बजेगा
0: जी?
1: आपको, ये गाना कल या परसों मिल जाएगा सुनने को, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक।
0: जी। तो हम तो अपना दुकानदारी में लगा रहता है, गाना बजा कर सुनते रहेंगे।
1: जी, और सुबह में 9 बजे से 11 बजे तक बजता है।
0: ठीक है, थैंक यू।
1: ओके, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजीम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, थैंक्स।

0: हेलो।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगभूमि
0: हाँ, नमस्कार मैम।
1: कार्यक्रम
0: मैम हाई गाना बजाने के लिए फोन किए थे। मेरा
1: हेलो माय चॉइस में। नमस्कार जी, गाना बजा देंगे,
0: नाम है सुनीता कुमारी,
1: नाम बता दें
0: हाजियापुर से। हे गुरुदेव प्रणाम आपको चरणों में, चारों तीर्थ धाम आपको चरणों में।
1: कहाँ से। अच्छा ओके, गाना प्ले करती हूँ।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ, 80 29 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
7: सलामुअलैकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
7: क्या कर रहे हो सर?
6: कुछ ना, बस आपसे बात कर रहे हैं। सब हाल चाल बताएं, अपन कैसे?
7: हाँ, सब हाल चाल ठीक है सर। आप बच कर रेडियो बजा रहे हैं।
6: अच्छा बढ़िया है। तबीयत ठीक बनो?
7: तबीयत ठीक है, करीब करीब ठीक है। आज तो बहुत पहले लग गया हमारा।
6: जी आपका फर्स्ट कॉल है आपका?
7: फर्स्ट कॉल है। ठीक है सर, शाम को गाना सुना दीजिए।
6: बताइए।
7: फिल्म पालकी का है, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। अब सर थरा रहे थे लेकिन बात को।
6: जी
7: हाँ, उसको सुना दीजिए।
6: और ये गाना किसी को सुनाना भी है?
7: हाँ, पहले तो आपको, उसके बाद पूरे टीम जहाँ तक है वहाँ सबको। ये गाना तो सबको पसंद नहीं आएगी,
6: लेकिन जरूर आएगी। बहुत सारे
7: पुराना, बहुत पुराना गाना है।
6: नहीं नहीं, इसमें पुराने लिसनर भी हैं, बहुत सारे पुराने गाने भी सुनते हैं।
7: ठीक है सर।
6: ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रिमझिम 90.4।

0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: आपको हम सोने भी बोल रहे हैं?
0: नहीं।
1: अच्छा, भारतीय रेडियो।
0: हाँ,
1: क्या हाल है?
0: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
1: आज मालूम पड़ा कि मेरे पहला कॉल है,
0: आपका दूसरा कॉल है। हाल चाल बताइए, कैसे हैं आप?
1: हम बिल्कुल बढ़िया है, विकास बेटर, बहुत बढ़िया, चंगा विकास। आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया है।
1: भारतीय जी, और सब सुनाइए। ठीक है, आपका आवाज बहुत मधुर।
0: तो बताइए, आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: आपका खाना पीना हो गया?
0: मेरा खाना हो गया, आपका हो गया?
1: जी, हम भी खाए थे। हल्का तो खाते हैं, गर्मी का दिन है, खाया नहीं जाए, है कि नहीं? चलिए, तो आप बढ़िया से रहिए, आपका आवाज सुनने के लिए हम बताते रहते हैं। पहचान लिए क्या?
0: जी जी, तो गाना भी बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: जी,
0: गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: सुना दीजिए, रोमांटिक गाना कोई। एक गाना है, मैं तुझे पागल कर दूंगा तेरे प्यार में।
0: अच्छा, हाँ हाँ,
1: गाना है ना, अच्छा सा गाना है। एक गीत सुनना है और आपको सुनाना है, और जितने भी हमारे स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं सारे को सुनाना है।
0: और सब आप ठीक हैं?
1: हम तो ठीक ही हैं। ठीक है, फिर बात करते रहिएगा।
0: ओके
1: जी,
0: फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone gende bajte hai to kehte hai
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: हाँ जी मैम, नमस्कार।
6: नमस्कार,
5: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गोना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ मैम।
6: जी क्या हाल है आपका?
5: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
6: मैं भी हूँ। मौसम कैसा है उधर का?
5: हमारा गुना MP का अच्छा मौसम है अभी तो। अच्छा है?
6: अच्छा जी, बढ़िया है। फिर इधर तो मौसम अभी गर्मी पड़ रही है।
5: जी मैम, ये भी पड़ रही है गर्मी तो। अभी जब भी बारिश हो गई थी 2-4 दिन पहले।
6: तो खाना पीना हो गया है?
5: जी मैम।
6: बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
5: आज मुझे वो क्या गीत सुनना चाहता हूँ मैं, खुदा गवाह का।
6: कौन सा सॉन्ग?
5: खुदा गवाह प्लम का।
6: हाँ, उसी में का कौन सा सॉन्ग?
5: उसमें एक गीत है, रब को याद करूं, एक पद याद करूं, पिछड़ा यार मिला दी ओ रब्बा।
6: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
5: जी हम ही सुनना चाहते हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे।
6: अच्छा जी,
5: गोपाल ओझा जी हैं और सुनील साहु जी हैं, गजराज सिंह लोधी हैं, अमर सिंह भील हैं।
6: और सब बढ़िया है ना?
5: जी जी बढ़िया है मैम।
6: ओके चलिए, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। वालेकुम अस्सलाम
1: जी, मुझे गाना सुनना।
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: नाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या हाल है आपका?
1: मेरा हाल सही, आप बताइए आपका।
0: मैं भी ठीक हूँ
1: जी मैम, मुझे गाना सुनना।
0: बताइए
1: आपका।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: सुनाना चाहते हैं सबसे आप कौशल इमरान भाई, भाई लक्की भाई, बरसा भाई, कांति जी, रोशनी जी, सबीना जी, सबनम जी, गुड़िया जी, क्या जी, सभी को सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ गाने। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: वालेकुम
5: अस्सलाम।
6: मैं किस्मत बोल रहा हूँ
5: जी, क्या हाल है आपका?
6: ठीक बाबू, तुम लोग ठीक बढ़ो ना?
5: हाँ, हम सब भी ठीक बानी।
6: घर बैठा भी लोग ठीक बनो?
5: हाँ, सब कुछ ठीक बा। आपके यहाँ सब कुछ ठीक बनो?
6: हाँ, सब ठीक हो।
5: भोजन कर लो नी?
6: हाँ, अभी मेरा 1 बजे नमाज पढ़ के खा है।
5: अच्छा
6: अच्छा, मेरे घर हो गई।
5: चलिए ठीक बाबा, ठीक बनो?
6: हाँ सब ठीक। सुना दियो कव्वाली पढ़ी है?
5: बताएं कौन सा कव्वाली सुने?
6: कौन कुरान अपना मन से सुना दियो?
5: आपन पसंद ना बताएं दो।
6: ना हमरा पसंद कोई बार इसे बार कोनो निकाह फिल्म के सुना दियो।
5: निकाह? अच्छा चले ठीक बा। और गाना क्यों के सुना हो के बा?
6: केकरा के लाखों आदमी सुने ले।
5: अच्छा जी, हाँ
6: सुने खातिर तो सब सुने ला।
5: चले फिर ठीक बा, गाना प्ले कर सुनत रहे रेडियो रंजन।
7: किस

0: हेलो
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: अस्सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: वालेकुम। ठीक
1: जी मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
0: हाँ भी ठीक है।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: कुछ नहीं, मैम गेहूँ पका रहे, वो बैठे हैं फोन लगा रहे हैं।
1: अच्छा, धूप नहीं लग रहा है?
0: साइड में बैठे हुए हैं, अच्छे है इधर।
1: अच्छा जी।
0: धूप तो उग रहा है बहुत, दिन बहुत खराब हो रहा है।
1: भोजन
0: आपका हो गया मैम?
1: हाँ हाँ मेरा हो गया। आपका?
0: हम लोग भी हो गया।
1: बढ़िया। तो सब कुछ कैसा है? सब कुछ ठीक है ना?
0: हाँ सब कुछ ठीक है, अपना बताइए।
1: जी हम सब भी ठीक है।
0: गाना सुनवा दीजिए।
1: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
0: हिंदी गाना नहीं, अभिषेक बच्चन का हम मैंने भी प्यार किए है, वही वाला बजा दीजिएगा।
1: ओके। और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है? अच्छा
0: नहीं जी, हम लोग है दियादी सब वही लोग सुनते हैं, अभी तो बाज ही रहे हैं रेडियो।
1: जी, चलिए।
0: आप सुन लीजिएगा।
1: बिल्कुल, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हाँ जी नमस्कार, मैं लाल बाबू सिंह बात कर रहा हूँ।
6: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: जी, गीत सुनना चाहते हैं।
6: जी बताइए कौन सा गीत।
5: का नाम है बेटी ससुरा में रहेगा तू चांद बने के, आवे कतनो अनहरिया तूफान बने के।
6: अच्छा
5: जी, पुराना सॉन्ग है।
6: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
5: जी, सभी रेडियो रिमझिम के श्रोतागण को।
6: ओके, तो और सब बताइए क्या हाल है आपका?
5: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजे में कट रहा है।
6: अच्छा जी, उधर का मौसम कैसा है?
5: मौसम भी ठीक ठाक है, वही धूप टाइट करके रखा है। हम अभी आंध्र प्रदेश में है, गाँव में नहीं है। जी, तो मौसम टाइट है, धूप खिला हुआ है बहुत ज्यादा।
6: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ।
5: जी,
6: रिमझिम कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: भोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम कठवासा जिला गुना से।
0: जी क्या हाल है आपका?
1: गाना सुनना है।
0: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: दिल फिल्म का सुनना है। मुझे नींद ना आए, मुझे सियान ना आए, कोई जाए जरा रूल के लाए, ना जाने कहाँ दिल को आए।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: डेडिकेट है ना मैडम जी।
0: बता दीजिए।
1: हमें मांगी लाल धाकड़ जी है, मांगी लाल चंदेल ने, सुनील साहू जी है, ज्योति साहू जी है, इनके लिए।
0: अच्छा तो और सब बताइए क्या हाल है?
1: बढ़िया है, अभी तो धूप पड़ रही है तो घर पर ही है अभी तो।
0: चलिए ठीक है, तब धूप से बच के रहिए,
1: घर पर ही है अभी तो।
0: ओके फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone ring, they match the head to get it.
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। नमस्ते। हेलो, क्या हाल है आपका?
4: ठीक है, अपना बताइए।
5: मेरा भी बढ़िया है। तो खाना हो गया आपका?
4: हाँ, खाना खा लिया। आप खा लिया?
5: और सब ठीक है ना?
4: हाँ, सब ठीक है।
5: बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
4: अगर नहीं है मैंने लाके नहीं चुका कौन सुन गया वो।
5: हाँ
4: हाँ, गाना सुना।
5: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहती हैं?
4: आपको? सारे लिसनर को। अभी मेरा घर वाला है उनको।
5: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: बहुत देर से लगा रहे हैं जी, नंबर लग ही नहीं रहा है, बिजी बिजी जा रहा है।
0: अच्छा जी, हाँ आज कॉल बहुत ज्यादा ही है।
1: सोमवार को भी लगाए थे। तो गाना सुनना है हमको,
0: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
1: तो गाना वो सुनना है, गोलू राजा का गाना, कोई भी
0: आप अपने पसंद बता दीजिए।
1: नहीं, अपने गोलू राजा का ही बता सुना दीजिए।
0: उनका कोई भी सॉन्ग?
1: हाँ जी,
0: उनका कोई भी सॉन्ग।
1: हाँ जी, अच्छा होकर गाना।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रह सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ring, de bajti hai to kehte hain hello.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: धन्यवाद मैडम।
5: तो प्रीति जी।
6: हाँ मैडम, क्या सुरक्षावाणी का क्या होता?
5: कुछ ना, बस आपसे बात होता। बताई कहाँ हाल चल बा?
6: ठीक बा।
5: और ये सब ठीक बा?
6: हाँ।
5: कौन सा गाना सुने बता दी?
6: हमरा उरा वजह सुन के खुश हो गए। अपना मन से बजा दे हम कोनो। अच्छा,
5: अपन पसंद बताई ना।
6: भोजपुरी गाना बजा दे।
5: ठीक भाई, गाना सुना हो क्या बा?
6: रउआ के सोनी में डब्बे।
5: ठीक बा, गाना प्ले करते नहीं सुनत कहीं सबके साथ रेडियो रूम जी में कॉल करे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: मैम।
1: नमस्कार
0: सुबीर को बोल रहा हूँ, कोरिजमा जिला देवघर झारखंड से मैम।
1: जी जी क्या हाल है आपका?
0: आजकल ठीक है मैम, बहुत बहुत काफी तेज गर्मी है मैम इधर। आपके यहाँ?
1: मेरे यहाँ भी वही हाल है
0: जी, लगभग 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान।
1: अच्छा जी, तो गर्मी में पानी पीते रहिए, धूप से बच के रहिए।
0: जी, वो तो पानी पीते रहते हैं।
1: और सब बढ़िया है ना?
0: हाँ सब ठीक है मैम। आप लोग कैसे हैं मैम? आप कैसे हैं?
1: हम सब भी ठीक हैं। तो बताइए क्या फरमाइश है आज?
0: आज गाना सुना दिए मैम, शिल्पी राज की आवाज में भोजपुरी गाना,
1: गाने
0: दिलवा ले गीत के बोल हैं, दिलवा ले गई राजा बोतल में भर के।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: सबसे पहले मैम आपको मैं सुनूंगा, आप सुनेंगे, और जितने भी रेडियो रिमझिम के प्यारे प्यारे श्रोतागण हैं देश विदेश में, सब सबको सुनेंगे।
1: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो,
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: भारती जी?
5: हाँ,
6: भारती बोल रहे हैं
5: जी। क्या हाल है? तो क्या हो रहा है अभी?
6: बस एक अब से फोन लगा रहा है, व्यस्त है, व्यस्त है, कर रहा है।
5: अच्छा जी,
6: बहुत स्ट्रेस किया तब लगा है अभी।
5: तो बताइए, भोजन हो गया?
6: सुना दीजिए,
5: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है। कौन सा सॉन्ग उनका?
6: कमल सिंह का कोई भी काम का गाना सुना देंगे।
5: अच्छा, ओके। और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: पूरा अपना फैमिली सब है, पूरा रेडियो चलता है सब है।
5: ओके, और सब बढ़िया है ना?
6: हाँ जी, सब बढ़िया है।
5: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो मैडम
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: जी, आपको भी साथ में स्वागत है। 11 बज के कितना मिनट हो गया?
1: 13 मिनट
0: 13 मिनट 11 बज के 1 मिनट का लगा रहे थे। हाँ,
1: हाँ।
0: अभी 12 मिनट मेरा लॉस हो गया, बताइए। चलिए, मैं मनान बोल रहा हूँ कपरपुरा से।
1: कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं। और आप कैसे हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
0: चलिए, उम्मीद है ऊपर वाले से दुआ रहे कि आप भी बढ़िया रहे। तो आप इसी बढ़िया बढ़िया पे जो है एक गाना हमको सुना दीजिए। कौन सा गाना? वो गाना है ना, तुम बंसी बजाते हो,
1: हाँ।
0: तो ऐसा एक गाना वो सुना दीजिएगा।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: मेरा ये शादी पोता है मेरा, है ना?
1: हाँ
0: हाँ, शादी पोते को सुनवाना। देखिए, मेरे कुर्सी के बाजू में चुप के कर्म से चुप गया है। मैं इधर परमाइश कर रहा हूँ, उधर चुप के सुन रहा है। हाँ, सुनवा दीजिएगा मैडम, नहीं तो हमको परेशान करेगा
1: जी जी बिल्कुल।
0: ये।
1: गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ओके, थैंक यू मैडम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494011। जी हाँ, 80029494011। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
7: नमस्ते मैडम जी।
6: नमस्ते,
7: कैसे हैं मैडम जी?
6: मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
7: अच्छा है, बहुत गर्म पड़ता है।
6: हाँ।

0: हाँ, मौसम तो गर्म है, अभी बहुत धूप निकला हुआ है। हाँ
1: नेहा बोल रहे हैं भोरे से।
0: जी, तो और बताइए क्या हाल है,
1: हाल ठीक है? अभी
0: क्या हो रहा है अभी।
1: आपके पास फोन लगा रहे हैं, कॉलर लगाए, बिजी बताते हैं तो फिर रख दिया, फिर लास्ट में लगाए तो
0: और सब बताइए क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है।
1: अब काम रोक कर आपको पास फोन लगा रहे हैं, लग जाए फोन तब ओकरे बाद से काम करेंगे।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए अपनी फरमाइश आज।
1: फरमाइश से बेटा फिल्म का
0: कौन सा सॉन्ग?
1: कोयल से तेरे बोले, आपको
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहती हैं?
1: जितना रेडियो रेडियो में आरजे है सब दोस्त सुनते हैं, सोता है सबके साथ।
0: ओके चलिए फिर, ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी मैडम, मैं सुनील साहू बोल रहा हूँ।
0: जी क्या हाल है आपका?
1: बस आपके रूम चल रहे हैं।
0: अच्छा, तो क्या हो रहा है अभी?
1: जी दीदी, अभी तो धूप पड़ रही है बहुत सारी।
0: हेलो,
1: गर्मी से बेहाल है मैम जी।
0: अच्छा जी,
1: जी जी
0: गर्मी तो सबको बेहाल कर ही रही है। भोजन हो गया आपका?
1: हाँ जी, होगा है ना आपके?
0: हाँ हाँ मेरा भी हो गया है। बता दीजिए क्या फरमाइश से आया आज आपकी?
1: जी बहन जी, पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं है, शायद एल्बम का गाना है। सोनू निगम जी की आवाज में मोहम्मद, ये दुनिया को कुछ नहीं देने वाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाल।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: जी जी, सबसे पहले तो मैडम क्या सुनाना है, और हमारे मित्र हैं मांगीलाल पड़ा गाँव से, मांगीलाल सनोतिया है, और गोपाल ओझा है ककवासा से, और गजराज सिंह लोधी है रेलाई से।
0: अच्छा जी, रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: हेलो।
2: हाँ हेलो।
1: हाँ सोना।
2: हाँ कौन?
1: आवाना तनी कोना।
2: अरे कौन बोल रहे हो?
1: अरे हम तार पूछू बेबी, नंबर भी डिलीट कर दियो क्या?
2: अरे नहीं नहीं,
1: आवाना डीजे बजाता बस तारे आवाज सुनाते नहीं के।
2: बस दो मिनट रुक जाना।
1: हाँ हेलो।
2: हाँ हेलो
1: हेलो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: अरे कहाँ
2: हम तो मलिया के बिया सेट हो गई।
1: इतना कहाँ तेरे भोरे भोरे रे।

0: चक्रवर्ती इसको अगुआ फेर दे नहीं देता था।
1: बुलाती है मगर जाने का नहीं।
2: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
3: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: बाय

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
2: ऑलराइट।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दिनांक 13 जून 2026 दिन शनिवार के इस पावन प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय प्रातः 5:13 तथा सूर्यास्त 6:47 के आसपास होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। ईमानदारी और मेहनत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो श्रोताओं, हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5 बज चुके हैं, तो एक नई आशा, नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आइए शुरू करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा इस मधुर और भक्तिमय गीत के साथ। आप सुनते रहिए 90.4 FM रेडियो रिमझिम, आपकी अपनी आवाज जो कहता है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।